0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दांत आज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,000,000 रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहां बुनियादी सुविधाएं पहुंची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहां कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
5: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
4: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
6: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
4: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों।
9: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
10: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार, त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह न मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, NEET JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास AI ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

वेलकम बैक है जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम, कैसे हालचाल हैं आप सभी को एक प्यारी सी सुबह की ताजगी भरी वाली सुबह में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन कर लिया है आपका अपना रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ये तो हमारा आपको पता ही है टैगलाइन है ही। जो लोग जस्ट अभी जुड़े हैं हमारे रेडियो स्टेशन से, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम बैक है। एक नई सुबह वेंसडे की मॉर्निंग है, ये बुधवार का दिन है और आज के दिन की आपको आरजे आनंद देता है ढेरों ढेरों मंगल बधाइयां। गुड मॉर्निंग जी। आज की तारीख की बात अगर करें तो आज 14 अक्टूबर हो गई है, यानी कि 14 अक्टूबर 2026 चल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, समय की बात कर लेते हैं, 8:22 हो गए हैं। आनंद स्टूडियो में आ गया है, आपसे लेके 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे करेंगे आपसे ढेर सारी बात और बहुत सारा फन एंड एक्टिविटीज यहाँ पर हम करने वाले हैं आज की सुबह। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। बस आज का विचार इतना ही कहता है कि जो जैसा होता है वो वैसा देखता है, जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी दिखाई देगी, अगर आपके अंदर थोड़ी भी नेगेटिविटी है तो आपको सारी चीज़ें वैसे ही लगने लगेंगी। मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब आपका नज़रिया अच्छा होता है ना तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, जब आप थोड़ा सा नेगेटिविटी की नज़र से चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको वही दिखाने लगती है, मतलब वही चीज़ आपको नज़र आने लगती है बेसिकली। सो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपने देखनी है ना तो अपने नज़रिए को थोड़ा सा पॉजिटिव करो। जब आप नजरिए को पॉजिटिव करोगे ना तो अपने आप चीजें आपकी बेटर हो जाएंगी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ और इसी स्टेशन पे मेरा और आपका साथ बना रहेगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं यार, जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बस जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना तो थोड़ा सा अलग तो चलना पड़ेगा ना यार। जब हम थोड़ा सा अलग चलेंगे, कुछ अलग करेंगे, तभी तो एक अलग पहचान बनेगी। हर दिन की सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, आप सभी जानते हैं हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ स्पेशल होना है तो भाई देखो लाइफ में जो है हर दिन हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब हम स्ट्रगल करते हैं ना तो यकीन मानिए चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे धीरे धीरे सेट हो जाती है। एक दिन में नहीं बट एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जुड़ चुके हैं आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर जहाँ आप हैं, मैं हूँ और ढेर सारी बातें हैं। तो बस ऐसे ही ट्यून इन रहिए मेरे साथ। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें छोटा सा मैसेज करना होगा 9837896896। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, उदित नारायण साहब की आवाज़ के साथ करेंगे आज के सफर का आगाज़। आप बस ऐसे ही ट्यून इन रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
4: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

भाई लवेरिया तो नहीं कहूंगा, मलेरिया भी नहीं कहूंगा, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम जरूर हुआ है और बहुत ही भयंकर वाला हुआ है। हाय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? सुन रहे हैं आरजे आनंद को, एक और नई सुबह है, बुधवार का दिन, आपने ट्यून इन कर लिया है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। हमारे पास कुछ नए श्रोता जुड़ चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? माय नेम इज तारूफ। अरे वाह, क्या नाम है यार आपका, तो गजब का नाम है। लिखते हैं, सुबह सुबह आपके गाने सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आरजे, और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अरे वाह, थैंक यू सो मच यार, आपको हमारी आवाज़ अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश मेरे पास पहुँचा है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, और जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़ा करने की भी हिम्मत अपने आप आ जाती है। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और लाइफ में ना हर चीज़ के लिए रफ्तार पकड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के साथ, है ना। अगर आप बहुत तेज़ी से भागोगे तो कहीं ना कहीं चोट खा जाओगे, इसलिए आराम से धीरे धीरे चलोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे यार, है ना। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है आपको आराम के साथ करनी है, बड़ी सरलता के साथ करनी है, और एक बात को ध्यान में रखना है कि जब आप घर से बाहर कुछ काम करने निकलोगे ना, तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे जो आपको पसंद करेंगे और कुछ ऐसे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो आपको किसी की वजह से खुद को निराश नहीं करना है, खुद को हताश नहीं करना है, बस अपनी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाना है और आगे काम करते चले जाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जब आप कुछ अच्छा सोच के निकलते हो तो सिर्फ आपको पता होता है, हर किसी को थोड़ी पता होता है आप क्या करने वाले हो। तो इसलिए हर किसी की बातों को फॉलो ना तो हमें फॉलो करना है, और ना ही हर किसी की बात को अपने जहन में रखना है। बस अपनी ज़िंदगी में हमें जो करना है, जिस पे हमें बिलीव है, वही करना है। आप जिस चीज़ के लिए निकल चुके हो ना घर से बाहर, बस उस पर फोकस करो यार, उसी पर कॉन्सन्ट्रेट करो। लाइफ बहुत ही गजब की है, इस लाइफ में मैं तो इतना मानता हूँ, आप जो सोचते हो ना, ये ज़िंदगी आपको वैसा देती है। तो अच्छा बोलना शुरू करो, पॉजिटिव बोलना शुरू करो, अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, आप मेरे से रिटर्न में ले लो, आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होगा। फोकस ऑन इंप्रूविंग, नॉट पॉरिंग, मतलब कि भैया मुझे ये नहीं आना, वो नहीं आना, अपने ऊपर ना कमियां मत निकालो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। जिस दिन आपने काम करना शुरू कर दिया ना बॉस, उस दिन आप समझ लो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, ठा करके लाइफ सेट हो जानी है। मतलब माइंड सेट इज एवरी थिंग चेंज। अपने दिमाग को जो है ना सही जगह लगाओ, अपना जो कंट्रोल है उस पर थोड़ा सा फोकस और बढ़ाओ, अच्छी चीज़ों में जाओ, अच्छी चीज़ें करो, लाइफ बहुत ही कमाल किए। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा ज्ञान हो गया यार आज की सुबह। एंड एक मैसेज मेरे पास पहुंचा, हाय आनंद, हाउ यू, कैसे हो यार, आपकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच, आपको जुकाम में भी मतलब आवाज़ अच्छी लग रही है, भाई मुझे मारो। एक मैसेज और आया, गुड मॉर्निंग आनंद, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए ना भाई पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, एंड डिलीट योर डेस्टिनेशन, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे होंगे आप डेफिनेटली यार। सो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को डिलीट करो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को डिलीट करो, एंड फोकस ऑन योर गोल। अपना एक गोल बनाओ, छोटे छोटे करके स्टेप बनाओ, उस पर काम करना शुरू करो, एंड डेफिनेटली आप देखना कितना बढ़िया हो जाएगा आपका काम, मतलब मज़ा ही आ जाएगा यार। सुबह सुबह काम पे लग जाओ यार। एक और मेरे पास व्हाट्सएप पहुंचा है, हाय मेरा नाम शिखा है आनंद, हाउ यू डूइंग, आई एम वेरी वेरी गुड। ये लिख रही है, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि अभी आपका जुकाम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई बात नहीं यार, कभी कभी ना हर एक चीज़ का आनंद लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है शिखा जी। अब देखिए सर्दी आ रही है, थोड़ा सा वो जुकाम आ गया तो फील आ रही है कि हाँ यार ठंड शुरू हो गई है, अब अपना ख्याल रखना है मैंने अच्छे तरीके से। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अच्छा से गाना निकाल दिया है आपके लिए, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई अच्छी थॉट है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी 9837896896, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। और लौट के आता हूँ, कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया सी, और आज का दिन क्यों खास है इस पे बात करेंगे अभी जरा सी देर में। तो बस आप ऐसे ही ट्यून इन रहो हमारे साथ और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: You're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: क्या सुनाने वाले हो मुरादाबाद की जनता को, तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे
1: हैं। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट भजन है, ये सभी ने सुना होगा, अच्युतम केशवम, बहुत ही प्यारा भजन,
0: बहुत ही प्यारा।
1: तो मैं इसे करता हूँ शुरुआत,
0: प्लीज यार, श्योर। सो मोस्ट वेलकम, और गाइस आप भी में जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है यार, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, इसलिए डेली सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के परफ्यूम मार के स्टूडियो चला आता हूँ आपसे ढेर सारी बात करने। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है जी आप सभी को। एक प्यारी सी सुपर डुपर वाली गुड मॉर्निंग है, अच्छी गाने चल रहे हैं और मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है यार। जिंदगी में सब कुछ छूट जाता है लेकिन ये जुकाम से ऐसी दुश्मनी हो जाती है ना, एक बार अगर पकड़ लेना बॉस छोड़ ही नहीं पाता यार। मैं काम करता हूँ एसी बंद कर देता हूँ तो डॉक्टर साहब फिर से डांटेंगे मुझे। हाय वेलकम बैक, एक नई सुबह है वेंसडे की मॉर्निंग।

चलिए दोस्तों आज के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है आज की तारीख में, इस पे हम एक नजर डालेंगे। देखिए हर दिन बहुत ही खास होता है, हर दिन का इतिहास, और उसी पर हम चर्चा करते हैं आपके साथ। आपको बता दें, सन 1882 में शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कोलकाता, मुंबई और मद्रास के बाद भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। श्रोताओं, आपको बता दें, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समूह बाहर होने की घोषणा की थी। इसके अलावा जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा की थी 1943 में, आज ही के दिन। और आपको बताते चले एक और खास चीज, होनेसी मुबारक मिस्र के चौथे राष्ट्रपति बने थे आज ही के दिन 1991 में। ये आज के दिन से जुड़ी कुछ बातें कर रहे हैं हम आपके साथ। और वही बात करें आज के दिन जन्मे एक बहुत ही खास, एक ऐसे नाम की जिसके बारे में बात करना तो बनता है, लेकिन उससे पहले एक और खास चीज जो आज ही के दिन हुई उस पर भी एक नजर डालेंगे। साथियों, आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और भाई आजकल तो ऐसा लग रहा है कि मैं गले से कम और नाक से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा। जुकाम में मेरी आवाज़ बदलती है, आपकी बदल जाती है, ज़रूर बताना मुझे व्हाट्सएप करके। 1948 में आपको बताते चले एक और जो है ख़ास चीज़ हुई जिसके बारे में मैं बात करूँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इजराइल और मिस्र के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई थी 1948 में आज ही के दिन। और भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव आया 1953 में आज ही के दिन। और इसके अलावा और क्या खास चीज दिख रही है मुझे यहाँ पर, मैं फटाफट से चेक करके आपको बताता हूँ। कतार में मिलने वाले वाहिद के साथ 14वें एशिया खेलों का जो है वो बुसान में रंगारंग जो है इसका संपन्न हुआ श्रोताओं। और सन 2010 में राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रीय मंडल खेलों का

समापन हुआ था आज के दिन श्रोताओं, और बात कर लेते हैं आज के दिन जन्म में कुछ खास लोगों की। तो बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के भारत के मुगल बादशाह, सन 1643 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और इसके अलावा हरजिंदर कौर भारत की महिला जो वेट लिफ्टर है, 1996 में इनका भी जन्म हुआ था। निखिल रंजन बैनर्जी संगीतकार है, 1931 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो ये आज के दिन से जुड़े कुछ विशेष नाम जो हमने आपके साथ साझा किया। आज के दिन क्या स्पेशल मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस आज मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस सप्ताह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खास दिवस है जो हम आज के दिन ही मनाते हैं, थोड़ी देर में उस पर हम ज़रूर बात करेंगे आपके साथ। और अभी आपकी सेहत की भी बात करेंगे कि सुबह सुबह आप अपनी हेल्थ को कैसे चकाचक रख सकते हैं। जनाब बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, मौसम परिवर्तन कर रहा है, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, हम धीरे धीरे सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए रात में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जा रहा है, दिन में थोड़ी गर्मी भी लग रही है, और ये मौसम जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आजकल वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, सर्दी जुकाम बहुत कॉमन हो गया है, जैसे मैं भी उसका शिकार बन चुका हूँ। तो आप ना बने, उसके लिए आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत नगमा जो आपके रेडियो पर मैंने निकाल दिया है आज की सुबह, और मैसेज करता हूँ मैं आपको यहाँ पर किस चीज़ के लिए करूँगा अभी बताता हूँ। गाना सुनिए, आगे बढ़ेंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम गोविंदा पाजी के गाने की बात ही अलग होती है यार, बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड गाने लगते हैं मुझे गोविंदा जी के। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आनंद राज आनंद आय हाय, म्यूजिक है आनंद राज आनंद का, उदित साहब, साधना सरगम और पूर्णिमा की आवाज। हाय क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, पिक्चर का नाम है यार।

0: सजन रे हो, अरे हाय क्या बात है। सजन रे झूठ मत बोल, ओए होए सजन जी झूठ मत बोल, सुनो जी झूठ मत बोल।
1: मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, घड़ी उठा के देख लो भाई, सुबह के 9:02 हो रहे हैं।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: हाँ मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय,
5: बिंदास मॉर्निंग
2: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
8: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
9: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
10: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

हाय मुरादाबाद, मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हाल चाल है? आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप आपकी फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, जहां ढेर सारी बातें होती हैं। हाँ जी, कैसे हाल चाल है? देखो, रामलीला ग्राउंड के अंदर जो मेला चल रहा है ना, भव्य मेला, इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। 5 अक्टूबर से रामलीला भी चल रही है, बहुत ही अच्छी। और इनफैक्ट मुरादाबाद में रामलीला लाजपत नगर में हो रही है, आपके नवीन नगर में भी रामलीला शुरू हो गई है, और शायद एक और जगह है जहां रामलीला होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन मुरादाबाद के अंदर जो इस टाइम पे माहौल चल रहा है ना, चाहे वो गरबा, डांडिया या फिर मैं बात करूँ रामलीला की, मेलों की, तो मतलब बहुत ही अच्छा सा माहौल हो रखा है चारों तरफ। और मैं सच बताऊँ, लाइफ का जो है ना मजा तभी है जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। और अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा सोचना शुरू कर दो भाई। जब दिन आपने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन आपके दिन जो है वो चेंज होने लग जाएंगे। दोनों बातें बहुत अंतर होता है कि मैं कर नहीं सकता और मैं जरूर कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने अपनी लाइफ में कभी झूठ बोला है? मतलब बहुत तगड़ा वाला झूठ, अगर आपको लगता है कि हाँ यार आनंद, मैंने ना एक बार बहुत ही ये वाला झूठ बोला था भाई, जिस पे सबको यकीन हो गया था, उस झूठ के बारे में जरा मुझे बताओ। व्हाट्सएप करके 9837896896 पे आपके झूठों की जरा आज मैं बारिश देखना चाहता हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में बड़े झूठ बोले हैं, हाय बड़े स्यापे किए मैंने भी, मतलब झूठ बोल बोल के ना खूब मजे लिए मैंने। वैसे आपने कभी अपनी लाइफ में झूठ बोला है, मतलब कोई इंटरेस्टिंग झूठ, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको एक बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा यार आज की सुबह। अगर आप बढ़िया से गिफ्ट जीतना चाहते हो, तो एक काम करो, मेरे को फटाफट व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ अपना एक वो वाला झूठ जो अक्सर आपने बोला है और वो झूठ सच में सबको यकीन हो गया है कि हाँ यार ये वाला झूठ तो मतलब जो है सच में तब्दील हो गया, मतलब किसी को यकीन ही नहीं हुआ यार। बादशाह जी, आपने कभी झूठ बोला है क्या? नहीं, ये बादशाह थोड़ी बताएंगे, तो आप मुझे बताओगे यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका झूठ लगा मुझे फैंटास्टिक, आपका झूठ मुझे लगा बढ़िया, तो मैं आपको दूंगा एक अच्छा सा हैम्पर। आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप करके 9837896896 पे। आप मुझे बताओ आपने अपनी लाइफ में तगड़ा झूठ कौन सा बोला है, कौन सा वो झूठ था जिसपे सबको यकीन हो गया था, मतलब कि हाँ सच में आप ये बात तो सच्ची बोल रहे हो लेकिन वो झूठ था। हुआ है कभी ऐसा? किया है आपने कभी कोई ऐसा तगड़ा झूठ बोला है? मैंने भी एक झूठ बोला था बहुत तगड़ा वाला, जिसमें सबको यकीन हो गया था। कौन सा झूठ है उसके बारे में बात करूंगा अभी जरा सी देर में। लेकिन जरा सी देर में गाना आएगा बादशाह का, निकिता गांधी जी के साथ। आप कहाँ जा रहे हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि जाम वाम लगा है पाजी, तो भी मुझे मैसेज करो 9837896896 पे मैसेज कर सकते हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896। ठीक है, स्टूडियो का नंबर मैं अभी लौट कर आता हूँ एंड आपकी हेल्थ के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। आज के स्पेशल डेज में क्या कुछ खास चल रहा है बात करते हैं इस पे। डोंट गो एनीवेयर, ऐसी ट्यून इन हो, आई विल बी राइट बैक, जल्दी से लौट कर आता हूँ। बंदे का नाम आनंद है, गुड मॉर्निंग।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक, ब्यूटीफुल वाइब, आप निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे। ऑल द बेस्ट, आई रियली होप आप जहां भी जा रहे हो और जिस भी काम से जा रहे हो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा बॉस। बस मन में पॉजिटिविटी रख के जाओ। हाय, गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी बंदे का नाम आनंद है। जुखाम में आवाज थोड़ी चेंज होगी, मजा लो यार इस वॉइस का भी। मुझे लगता है ना हर एक आवाज का अपना एक अलग फ्लेवर होता है मेरे दोस्त। लेकिन फिलहाल यार सच बता रहा हूँ, जुखाम से बड़ा इरिटेट हो गया यार। कल रात को मेरा शो था, मुझे होस्ट करने जाना था, बट गले ने इतनी बैंड बजा दी कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया। आज भी मेरा एक कॉन्सर्ट होने वाला है गरबा, जिसमें मुझे होस्ट करना है, बट समझ नहीं आ रहा है जुखाम को कहाँ छोड़ के जाऊँ। क्या ऐसा उपाय करूँ थोड़ी सी तो एटलीस्ट राहत मिल जाए यार। बट कोई बात नहीं यार, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बाबू मोशाय, अभी एक काम करते हैं, जरा कुछ एड ब्रेक सुनते हैं, जल्दी से वापस आते हैं।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ, मेरी को सुन।
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय।
1: बिंदास मॉर्निंग सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां।

0: एक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पर मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: वेलकम बैक है जी, मैं स्टूडियो में आ गया हूँ एक बार फिर से। मैं कह रहा हूँ पाजी, जब आप नहा धो के एकदम से ना ऊपर वाले के नाम लेके एक अच्छी हैपनिंग वाइब के साथ निकलते हो, एक पॉजिटिव वाइब के साथ निकलते हो, उस दिन का और ही कुछ और होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ यार। एक्चुअली ना मैं ये कहना चाह रहा था कि आज ना मैं आपसे कह रहा था, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा झूठ बोला है जो सच में सबको यकीन हो गया हो कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सच है? हाँ भाई, वो बाद में पता चला हो कि आपने तो यार वो झूठ बोला था। मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई तगड़ा सा ऐसा झूठ बोला? मेरे पास शिखा का मैसेज आया, हाय गुड मॉर्निंग यार, एक बार मैंने अपने स्कूल में बोला था मेरी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी चाहिए, इस दिन मुझे अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाना था, लेकिन बाद में वो डिटेल मेरे फादर को पता लगी थी तो मेरी डांट पिट गई थी घर पर। ओहो, ये तो बहुत बड़ा झूठ था, है ना? इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। शिखा, कुछ और बताओ मेरे को। एक और भी व्हाट्सएप आया, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हो यार आप, कैसे कैसे सवाल पूछते हो, मतलब कभी कभी तो लगता है सबका सच उगलवाने के लिए बैठे हो। यार ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो एकदम ना इंस्टेंट दिमाग में आ जाता है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ आजकल तगड़ा हो रहा है ना मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए तो। आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपने लाइफ में कभी कोई इंटरेस्टिंग झूठ बोला है अपनी जिंदगी में? ये तालियां आप सभी के लिए। और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आप कर रहे हो, मैं आपको क्या ही बताऊं यार, मतलब दिल जीत लेते हो आप लोग, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना, कभी कभी तो मेरे को लगता है यार आपकी जगह पे मैं और आप मेरी जगह पे आके बैठ जाओ यार। सच में इतनी बेहतरीन बातें होती है आपकी, कभी कभी सच में यार दिल जीत लेते हो। एक और व्हाट्सएप पहुंचा है, हाय आनंद हाउ आर यू, आप कैसे हो? यार मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, और सुबह सुबह आपके गाने सुन के सच में बहुत ही अच्छा लगता है, और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछते हो, आपकी आवाज़ भी अच्छी लगती है, और आप अपना ध्यान रखा करो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आप अपना ध्यान रखो, लेकिन अपना नाम बताना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। अगर आप अगली बार मैसेज करें तो जरा अपना नाम भी लिख दें यार, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए कि हमें जो व्हाट्सएप कर रहे हैं, हमें जो मैसेज कर रहे हैं, वो आखिर है कौन, है ना? तो मैसेज जरूर करिएगा। एक व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचा है, हाय आनंद कैसे हो, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, आपके प्रोग्राम में काफी अच्छे लगते हैं, बट क्या ये तो बताओ यार, काफी अच्छे तो बहुत कुछ लगते हैं, गाने भी अच्छे होते हैं, बातें भी अच्छी होती हैं, कभी कभी हम भी अच्छी बातें कर ही लेते हैं, है ना? नहीं, मैं तो रोज ही अच्छी बातें करता हूँ यार, ऐसे कह सकते हैं कि मैं अच्छी बातें नहीं करता हूँ? चलो एक अच्छा सा गाना आपके लिए निकाल दिया मैंने आपके रेडियो पर, इसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बाकी अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई झूठ आपने बोला अपनी जिंदगी में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो। और आपको बता दें अपने मुरादाबाद में आज 14 से 16 अक्टूबर के बीच जो है एक स्पेशल कैंप लगने वाला है, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक का क्या है पाजी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये इतने रुपये का लोन मिलेगा, इतने रुपये की सब्सिडी मिलेगी, ये मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, ये पूरी डिटेल क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ जी, बिना गारंटी ब्याज जो है, मतलब ब्याज मुक्त लोन आप कैसे ले सकते हो, एंड इसमें आपको क्या सब्सिडी मिलने वाली है, क्या है ये योजना, किसके विषय में बात कर रहा हूँ, कैसे कैंप होने वाला है, सारी सारी डिटेल आपको पता लगेंगी, एंड कितने तक का लोन आप ले सकते हैं, कितने से कितने तक का, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजों पर अभी बात होगी थोड़ी सी देर में। लेकिन अभी थोड़ी देर में आने वाला गाना जो आप एंजॉय करेंगे, एक तेलंगाना के अंकल का बहुत वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिन्होंने बहुत सारे अपने सिक्के जमा किए, कॉइन जमा करके फिर वो एक स्कूटी शोरूम में पहुंचे स्कूटी लेने के लिए, जिसके बाद जो है उनकी काफी चर्चा हो रही

चलो जरा से दिन में आप तक पहुंचेगा इस स्टेशन पे, आप ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मुरादाबाद से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, अभी लौट के आ रहा हूं उसके बाद बता रहा हूं। बट आप मुझे बताओ वो कौन सा झूठ था जो आपने लास्ट टाइम अपनी लाइफ में कभी बोला हो, बहुत बड़ा झूठ हो या बड़ा भी नहीं हो बट सबको यकीन हो गया हो, कोई झूठ बोला है ऐसा, बताओ जल्दी से।

भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

आप मुरादाबाद कहीं ट्रैफिक में तो नहीं हो ना? अगर कहीं ट्रैफिक लगा है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरा नंबर बहुत आसान है 9837896896। मेरे पास अभी मैसेज पहुंचा है शुभम का। इन्होंने लिखा है स्टेशन की तरफ हल्की सी भसड़ है यार। देखो स्टेशन की तरफ तो रहती है यार भाई शुभम। वेल थैंक यू सो मच आपने मुझे बताया। और एक मैसेज और है, हाय गुड मॉर्निंग सर, इस वक्त मैं गागन पर हूँ और अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, बट आपको सुन रहा हूँ। क्या बात है यार, थैंक यू।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। खुशी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ी है, ये बताना चाहती है इन्होंने अपनी स्कूल टाइम में अपनी लाइफ में कब कौन सा झूठ बोला था, इनसे बात करते हैं। हाय गुड मॉर्निंग खुशी।
1: गुड मॉर्निंग सर,
0: कैसे हो आप? हाउ आर यू?
1: मैं बहुत अच्छी हूं, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत ही बढ़िया हूं। खुशी कहां से हैं इस वक्त आप हमारे साथ फोन लाइन पे, ये बताओ जरा।
1: हेलो
0: खुशी, कहां रहते हो मुरादाबाद में? हेलो हेलो हेलो हेलो खुशी, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो खुशी, आपकी हाँ आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आप कहाँ रहते हो मुरादाबाद में?
1: मुरादाबाद में मंडी चौक में।
0: मंडी चौक, ऑल राइट ऑल राइट। तो खुशी क्या करते हो अभी? राइट right, ये बताओ मुझे, स्टडी कर रहे हो? जॉब अभी क्या करते हो? जॉब करते हो, स्टडी करते हो? ओके, आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक खुशी की जो है भाई साहब कुछ नेटवर्क इशू हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं। अगर आप जब भी कॉल करें प्लीज़ नेटवर्क एरिया में आके डेफिनेटली कॉल करो यार, क्योंकि नेटवर्क जब तक सही नहीं होगा आपकी आवाज़ हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे ना, तो इसीलिए आप जब भी कॉल करें थोड़ा नेटवर्क में आके फ़ोन करो यार, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वॉइस की वो मुझे अच्छे से मिल पाए, है ना। फिलहाल के लिए अभी एक अच्छा सा गाना आप तक पहुँचाते हैं, जो वक्त मिलाओ 9:29 हो गए हैं, कुछ खास बातें हैं जो आप तक पहुँचानी है मुझे फटाफट से स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो, आपने अपनी जिंदगी में कोई इंटरेस्टिंग झूठ बोला है तो डेफिनेटली बताओ ना यार। सुजीत भंडारी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग सुपर शो, मैंने झूठ बोलकर अपने एक स्टाफ की जॉब बचाई थी, ऑल राइट उसमें कुछ गलत कर दिया था, बट ये वो मेंशन नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आई अग्री विद यू सुजीत भाई, लेकिन अगर आपने सच में किसी की जॉब बचाई है तो ये तो सच में बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट मेरे उस झूठ से उसकी जॉब और रिस्पेक्ट दोनों बच गई थी। 2017 की बात है सुजीत भंडारी, क्या बात है, मतलब मजा आ गया सुन के यार। ये तो इसी बात में हाय हाय सुजीत भाई, चलो यार एक अच्छा सा तोहफा मैं तुम्हें देता हूँ आज की सुबह। ये झूठ मतलब झूठ तो नहीं था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आइटा झूठ अच्छा था यार। मॉनी टॉय का गाना जरा सी देर में पहुंचेगा, लेकिन सुजीत भाई ने कसम से यार आपने ये जो किया ना ये तो बहुत ही मतलब अनक्रेडिबल था यार। चलो भाई कंग्रेचुलेशन सुजीत जी, मैं आपको एक दे रहा हूँ पूजा शाला की तरफ से अच्छा तोहफा, कंग्रेचुलेशन भाई। आप लोग भी मुझे मैसेज करके बताओ यार आपने कोई लाइफ में इंटरेस्टिंग झूठ बोला है तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पे और जीत सकते हो एक बढ़िया तोहफा थोड़ी सी देर में। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, कुछ खास बातें भी बताता हूँ लौट कर आ रहा हूँ फटाफट।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
6: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसी 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज, तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
7: कोई मिल गया,
8: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा, मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन. यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6. आप सुन रहे हैं आनंद के साथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, ढेर सारे मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो गए हैं और अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे राइट नाउ जुड़े हैं. नाम इनका रंजीत है. क्या करते हैं, बात करते हैं. हाय नमस्ते रंजीत भाई.
1: आप
0: जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर. सर हम बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया है. कहाँ से हैं सर आप, ये बताइए. मुरादाबाद के डियर पार्क में रहते हैं. अच्छा, क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं आप?
1: मैं चलाता हूँ.
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया. तो क्या, ओके, तो ये कैसा चल रहा है आपका अभी काम सर?
1: अभी बढ़िया चल रहा है.
0: अच्छा, नंबर थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ मैं, ऐसा आप कह रहे हैं राइट?
1: मेरे को समझ नहीं आता था 896 समझ में जाता था और लास्ट जो शुरू का अंक है वो नहीं समझ में आता था.
0: चलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं और शुद्ध हिंदी में बोलूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और थोड़ा स्पीड हल्की रखूं मैं. रंजीत भाई, बिहार में कहाँ से हैं आप?
1: मैं छपरा जिला से हूँ.
0: छपरा जिला से हो, बहुत बढ़िया यार. तो अब तो छठ पूजा आने वाला है भैया, जाओगे कि ना ही घर?
1: जाऊंगा, टिकट भी करा लिया है भैया.
0: बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लगा ये जान के. अच्छा तो भैया आपको आपको क्या अच्छा लगता है, तनिक हमको ये बताओ भैया जरा. हमारे रेडियो पर आप सुनते हो तो
1: भैया आप तो मैं वो जो आप जो ऐसी मनों के जो लोगों के भावना को जो आप छीन लेते हैं ना जो
0: आइयो जी
1: वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है. जो क्वेश्चन आप ऐसी करते हैं लोगों के मन की भावना को पूरा तरह मतलब दिलों से नहीं जीत लिया जाता है.
0: अच्छा जी, मतलब आपको लग रहा है कि हम जो भी सवाल करते हैं वो ऐसा होता है.

0: कि वो बिल्कुल मन में चल रहा होता है लोगों के।
1: हाँ, मतलब तीनों के कोई बात नहीं छीना जाती है, वो ऐसे हो जाती है।
0: अच्छा जी, सुबह सुबह मतलब हम ये वाला काम भी करते हैं क्या? मेरी मम्मी ने सुन लिया तो बहुत पिटाई होगी मेरी, बता रहे रंजीत भाई। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। तो आपका अभी जो है क्या कहना है, आपने कभी कोई झूठ बोला है ऐसे रंजीत भाई?
1: हाँ मैंने ऐसे के हार दिख लिया कि झूठ बहुत बड़ी होती है, तो कैसे भी रहे और घर के लोग फोन करें तो फिर घर के बोलते हैं कि खाना खा ले, वैसे भी रहे बोलते हैं खाली ठीक है हम। चाहे मरते थे कुछ भी दर्द में हो या बुखार सुखार जो भी हो, ये नहीं बोलते कि मैं तबीयत में खराब हूँ, तकलीफ से बोलते हैं मैं ठीक हूँ माँ खाना खा लिया।
0: ओके, मतलब आप जब भी कभी बीमार होते हैं या आप जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो आप अपने घर पे ये चीज जाहिर नहीं होने देते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा ना?
1: मैं घर में मम्मी पापा बहन है, मैं अकेला हूँ।
0: ओहो
1: अच्छा, मैं ही जब हिम्मत तोड़ दूंगा तो घर वाले क्या करेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल रंजीत जी, आप बिल्कुल अकेले नहीं है, हम रेडियो वाले दोस्त आपके साथ हैं, जब भी आपको ऐसा लगे आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है? रेडियो पे हम अच्छे गाने और अच्छी बातें चलाते हैं, कोई मतलब जो है टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो वेल, आपने जो भी बोला है मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा रंजीत भाई, और कभी आइए आप हमारे ऑफिस मिलने, चाय पे चर्चा करेंगे ढेर सारी। तो आपकी गाड़ी में आप जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या कैसे, मतलब आप अभी गाड़ी में सुन रहे हैं घर पे सुन रहे हैं?
1: नहीं गाड़ी चला रहा हूँ मैं तो, एक चैन वाली है ना वो।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया मैं।
1: बहुत गाड़ी चला भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, आपका भी बात सुनाई दे रही है, मैं बस स्पीकर को कम कर दिया है।
0: अरे वाह, बहुत किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया रंजीत भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ कहना चाहते हो चलते चलते? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पर।
1: भाइयों बहनों से, मेरे भैया चाचा चाची से बस यही, जो भी मेरे बात से सुना है उसको मैं नवरात्र की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ
0: जी। बहुत बढ़िया, आपको भी नवरात्रों की शुभकामनाएं रंजीत भाई, जय माता दी, फिर जल्दी आपसे मिलते हैं, ठीक है भाई? नमस्कार भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमको इनसे बतिया के भैया। वेल गाइज, आप भी मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं अगर आपकी लाइफ में आपने कोई तगड़ा झूठ बोला है तो। डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी 9837896896, स्टूडियो का नंबर बहुत आसान है। अच्छा चलो आराम से बोल देता हूँ एक बार फिर से, 9837896896 ये नंबर है मेरे स्टूडियो का, इस पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज की सुबह कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ढेर सारे मैसेज पहुंचे। लेकिन उससे पहले कुछ काम की बातें बतानी है मुझे फटाफट से, अभी लौट कर आता हूं, लेकिन उससे पहले एक अच्छा गाना आपके लिए बजाता हूं जिसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे आज की सुबह मैं और आप एक साथ, है ना? बाकी आपके पास कॉल लगाने का टाइम नहीं है ना बाजी, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मेरे को मैसेज कर दो, बहुत ही सिंपल नंबर है अपना 9837896896, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है जी? मैसेज करोगे तो आप सीधा मुझ तक पहुंच ही जाओगे। भाभी जी व्हाट्सएप नहीं कर रहे हो आप? हाँ देखो, आपके लिए वरुण भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चलो इसी के सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है.
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने.
5: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है.
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में. ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की. और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है.
5: अच्छा.
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद.
8: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा. 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद. कॉल 7055011681.
9: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया.
1: अरे आनंद इज

क्या बात है, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, ये मतलब पहले भी हमने सुना है अब, बट गाना अच्छा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा गाया है विशाल भारद्वाज का, जो एक कंपोजर अगर हम कहते हैं विशाल भारद्वाज ने गाना जो सुखविंदर सिंह एंड रेखा भारद्वाज ने गाया है, बहुत ही अच्छा ट्रैक है। एंड सच बताऊँ, किसी भी गाने को जब तैयार किया जाता है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, बहुत टाइम की। हम एक शो बनाते हैं, उसमें ढेर सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं यार, तो कोई भी चीज़ इतनी आसान तो नहीं होती है जितनी आसान मुझे और आपको लगने लगती है ना। हर काम के पीछे बहुत मेहनत होती है, जो आप करते हैं उसकी मेहनत आपको पता है, जो अपन करते हैं उसकी मेहनत अपन को पता है, राइट? बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एंड अभी मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले मुझे आपके बारे में बात करनी है, आपको काम की बात बतानी। देखो, 15 अक्टूबर से यूपी में मिठाइयों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट। ये थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों की दुकान के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब दुकानदारों को बिक्री के लिए जो है ट्री में रखी जो खुली मिठाइयाँ हैं, यानी कि उसके ऊपर अभी इनको डेट देनी होगी, यूज बाय डेट है ना, यानी इस्तेमाल की आखिरी तारीख भी लिखनी होगी कि ये जो तारीख है इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो डेफिनेटली इनको दिखानी होगी। तो 15 अक्टूबर से ये हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंड आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज मुझे लगता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं हमें पता तो होनी चाहिए यार कि हम मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, अपने शरीर के साथ कुछ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पता करनी, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे, एंड आई रियली टच वुड, आई रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं, और इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, जब फेस्टिव सीज़न आता है तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा मिलावट की जो संख्या वो बढ़ जाती है ना, और हम अपनी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते बॉस, इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ आपको बता देते हैं भाई साहब। अभी एक नई रिसर्च में, स्टडी में पता लगा है कि कॉफ़ी लवर्स के लिए खुशखबरी है कि लीवर ही नहीं बल्कि कैंसर से भी आपको बचाने का दावा करती है कॉफ़ी। अभी कितनी सच है इस पर बात लेते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको बताता चलूं कि भैया प्रकाशित में एक बड़ी 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को करीब 13 साल तक ट्रैक किया गया है। इस रिसर्च में कॉफी पीने वालों को जो है उसमें ऐड किया गया है, और उनकी एक रिसर्च की गई जिसमें पता लगा है कि जो लीवर कैंसर और लीवर से जुड़ी मतलब जो है डेथ हुई है उसमें काफी रिस्क पाया गया है। लेकिन जो लोग कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, वो कॉफी कैफीन वाली नहीं बल्कि कॉफी में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है। तो अगर आप मतलब दिन में 2 या 3 कप कॉफ़ी लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, आई थिंक सफिशियंट है। तो कॉफ़ी अभी एक रिसर्च में बता रही है कि जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए कॉफ़ी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वेरी गुड यार, बट बहुत ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा करोगे तो देखो इसका नुकसान तो डेफिनेटली आपको भरना ही पड़ेगा ना। अगर आप उसको लिमिट में ले रहे हो तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मतलब 2-3 तो आई थिंक चलता है। इस टाइम तो मुझे भी बड़ी नीड है चाय की, मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, ऐसा लग रहा है बस कोई एक कप कड़क वाली चाय पिला दें, वो भी अदरक वाली। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, तो सुबह सुबह चाय वाय पी के आते नहीं है यार अपन, क्योंकि मुझे आपका ख्याल रखना होता है ना। अभी जाके 10 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा थोड़ा सा, और आज तो इवन हो सकता है थोड़ा मुझे ज्यादा शो करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे गानों के साथ मेरा पेट भर जाता है। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में क्या चीज को ले सकते हैं जो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा हाई कर सकता है, इस पे बात करूंगा। अभी 9:51 हो रहे स्टेशन क्लॉक में। विराट भाई की बात कर लेते हैं। भाई विराट कोहली का जो है लिंक्डइन पर डेब्यू हो गया है, और इसको लेकर हर सोशल मीडिया पर बात कर रहा है हर कोई। हाँ जी, मतलब इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े क्रिकेटर जिनको हर कोई जानता है, भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर जो डेब्यू कर चुके हैं, एंड सुबह

जिसको लेकर बात कर रहे थे कि भैया ये 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से चार्ज लगेगा, चार्ज उसके लिए भी एक अच्छी खबर है मेरे पास, बताता हूँ। और अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे आप लोन लेकर अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं, कैसे बताऊंगा ना। मुरादाबाद में आज 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा कैंप लगने वाला है। अगर आप लोन लेने के लिए इच्छुक हैं, आपको कुछ अपना बिजनेस करना है, तो कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी योजना आपके लिए चल रही है एंड कैसे आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हो, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप मेरे साथ ऐसे बने रहो, जुड़े रहो, ठीक है, रहो सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6। I'll be right back।

Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: डोप शोप यो हनी सिंह को भी आपने एंजॉय किया दोस्तों, आपको बताते चले। देखिए हर दिन की सुबह बहुत ही खास होती है और आज की सुबह भी बहुत खास है। सुबह के 10 बजने को है, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने ट्यूनिंग किया है बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6, ये है ना आपकी फ्रीक्वेंसी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बस ऐसी फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन रखा करो यार आप, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अभी बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन जो है बहुत ही खास है, आप सभी को पता है नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में जो है आज के दिन के बारे में बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए एक बार आज के दिन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज का सिग्निफिकेशन क्या है, मतलब आई मीन आज का कलर, आज का ये सब कुछ जो भी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले जय माता दी दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हम बात करेंगे माँ के चौथे स्वरूप की। मान्यता है कि आज के दिन जो है माता रानी की पूजा अर्चना करने से बहुत प्रकार के भय जो है जीवन से दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं, नई शुरुआत की एक प्रेरणा देता है आज का दिन। और आज ही के दिन विशेष महत्व होता है रंग का, वो है नारंगी कलर। अगर आप इसको आज के दिन पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, और कहते हैं आज के दिन अगर आप ये इस कलर के कपड़े पहन के माँ का आशीर्वाद लेते हो तो माँ आपको सकारात्मक सोच आपकी जो है बनाती है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करती है और आपको एक सही डायरेक्शन भी देती है आज की देवी। तो आज के दिन की आप सभी को ढीरो मंगल शुभकामनाएं। आज जो है अगर आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं, नवरात्रि का चौथा दिन, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, अगर आज के दिन आप इन देवी की पूजा करते हैं तो आपको सुख स्वास्थ्य ऊर्जा समृद्धि की कामना जो है सब कुछ मिलती है। माँ को पूजा में आप फल फूल दीप जो भी आपको अच्छा लगता है भोग आप अर्पित कर सकते हैं माँ को। और देखिए ऊपर वाले हमेशा जो है ना आपके भाव के भूखे होते हैं, तो अपने मन से आप करें जो भी करें ना, अपने मन से करें। आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एफएम मुरादाबाद 89.6 के जितने भी लिसनर्स हैं सबके जीवन से सारे दुखों का नाश हो, सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, आप पर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। और अभी आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ होने वाला है, अगर आप देंगे मुझे इसका जवाब तो आपको फिर बढ़िया सी कुछ ना कुछ चीज तो मैं देने वाला हूँ यार आज की मॉर्निंग। तो बस आप ऐसे ही ट्यून इन रहा करो आनंद के साथ, और स्पेशल चीजें आपसे पूछते रहते हैं। और आज माँ का चौथा नवरात्रा है, 10:01 हो गए, आप सुन रहे हैं आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद। थोड़ी सी देर में, जरा सी देर में पहुंचेगा आप तक बहुत ही खूबसूरत देवी गीत, लेकिन उससे पहले आज का एक सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं मैं।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
0: हाँ जी, अगर आपने मेरे इस सवाल का आंसर किया तो आप आज की सुबह क्या जीत सकते हैं बताता हूँ ना अभी आपको, लेकिन पहले एड ब्रेक।
2: मुरादाबाद अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ, दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: आज का कड़ा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप इसका सवाल का जवाब दोगे तो हम आपको एक अच्छा तोहफा देंगे। ठीक है जी, वैसे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था पिछले घंटे में उन सभी के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। विकी सागर मेरे साथ जुड़े रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हुए आज की सुबह, बहुत अच्छा लगा विकी भाई आप जुड़े। एंड हमारे साथ उमेश जी जुड़े, ये लोधीपुर से हमारे साथ कनेक्ट हुए आज की सुबह, और भी ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ कनेक्ट हैं। बट अभी आज का सवाल सुनो, आज मैंने बहुत सारी बातें बताई आज के दिन के बारे में, आज का दिन क्यों खास है, एंड आज जो है माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो कौन कौन से जीवन से विघ्न दूर होते हैं, माँ कैसे आपको आशीर्वाद प्रदान करती है, कौन सा कलर है जो माँ को बहुत पसंद है, उस पर भी हमने बात करी है। लेकिन आज की देवी का नाम क्या है, नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा हम करते हैं, ये आपको मुझे बताना है। आज चौथा नवरात्र है और आज हम कौन सी देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम जरा मुझे फटाफट से बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपके नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाए। और जो आज को जिसको हम कहते हैं ना जेंजी, दैट इज अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड, उनसे भी पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू जेंजी, बताओ मुझे व्हाट्सएप करके आज की देवी को क्या कहते हैं, आज की देवी का नाम क्या है। प्लीज गूगल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ अपना जवाब, आज नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपको पता है राइट आंसर तो दो राइट वाला जवाब और जीतो एक्साइटिंग हैम्पर। वेरी गुड मॉर्निंग, जय माता दी।

0: सेम ही कॉलिक है।
1: क्योंकि I'm sorry.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे पूछा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एंड लास्ट मौका है आपके पास। अगर आप ये जवाब दोगे तो मैं आपको एक बहुत ही हैपनिंग डांडिया नाइट हो रही जिसके कॉन्सर्ट पासेस मैं आपको देने वाला हूँ। एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा हम करते हैं, ये आपको मुझे बताना है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, कल हमने चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की है, आज नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा होती है। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट कि आप इसका आंसर डेफिनेटली कर दोगे। अगर आपको पता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, विच सिटी कहां से हो आप, ये जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है आज की सुबह। एंड आपको लिखना है अपना राइट आंसर कि नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा हम करते हैं, इन माता की पूजा हम करते हैं और इनका ये नाम है, अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ अपना राइट आंसर, ठीक है जी। नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा अर्चना होती है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, इससे इजी क्या ही हो सकता है। आज की सुबह प्लीज मैसेज करके बताओ यार। एंड अगर आप इसका जवाब देते हो तो आपको भी बताया, आपको एक बढ़िया सा तोहफा मिलने वाला है यार आज की सुबह। इतनी अच्छी चीजें सिर्फ आपको मुरादाबाद एफएम पे मिलती है, सो डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही कनेक्टेड रहो मेरे साथ। एंड मुझे फटाफट व्हाट्सएप करो 9837896896 पे मैसेज करके बता दो फटाफट से, नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा हम करते हैं। यार बहुत इजी है यार, बता दूंगे आप, मुझे पता है, लिटरली बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, सीरियसली बस अभी लौट कर आ रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ कौन है आज की सुबह हमारे शो का लकी विनर और कौन जीत रहा है आज की मॉर्निंग पासेस। सो कहीं मत जाओ, और मैं आपको बता रहा था अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आज 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक एक बहुत ही अच्छा जो है कैंप लग रहा है अपने मुरादाबाद में। अगर आप इसमें जाकर के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अपने सपनों की तरफ उड़ान भरना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो कैसे आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, सारी डिटेल्स के लिए बस अभी थोड़ी देर में किसी को खास को अपने साथ लाइन पे लूंगा। आप कनेक्टेड रहो, 10:15 हो रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, सुन रहे हैं आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: देखो, देखो वहाँ क्या। अरे आनंद इज बैक।

क्या बात है निकम्मा किया 2.0 एक अच्छा गाना भी आपने सुना। शिल्पा शेट्टी का कमाल की लग रही थी यार। शिल्पा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो आज भी वैसे इतनी यंग लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, सो ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं इनकी तारीफ में, आप सभी का वेलकम अभिनंदन है। अब 10:22 मेरा जाने का समय हो गया है गाइस। जाना तो नहीं चाहता लेकिन जाना तो पड़ेगा ना यार, बहुत जोरों की भूख लगी अभी। लेकिन जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था एक छोटा सा सवाल, मैंने कहा था मुझे व्हाट्सएप करके बताओ नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा अर्चना करते हैं हम। और मैं आपको क्या बताऊं यार, इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज आप लोगों ने करे हैं ना यार, मतलब दिल जीत लिया है। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं इतने सारे व्हाट्सएप आए हैं। मैं आपको दिल से थैंक यू करना चाहता हूं इतने अच्छे मैसेज करने के लिए और इतने बढ़िया मैसेज करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमेशा पार्टिसिपेट करते रहिए एफएम मुरादाबाद के इन छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके लिए विगुल बजाएंगे, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबॉडी। और सबसे पहले किसने सही जवाब दिया था आज की सुबह, ये आपको बता दूं मैं फटाफट से। आर यू श्योर कि आपको हमें नाम बता देना चाहिए? अरे बिल्कुल यार, इतना क्यों परेशान करना। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मैसेज आया था निधि महेश्वरी का, क्या बात है निधि, कंग्रेचुलेशन। आज की सुबह हम दे रहे हैं आपको एक जाने नाइट के अमेजिंग पासेस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड इसी बीच मेरे पास एक और मैसेज आया था, हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? नमस्ते, कैसे हालचाल है जी? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बढ़िया। यशपाल जी आपने भी सही जवाब दिया था, लेकिन आप मुरादाबाद में नहीं है तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। वेल थैंक यू सो मच निधि जी, आपने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह, आप जीती अमेजिंग कॉन्सर्ट जाने नाइट के पासेस। अभी अगले घंटे भी मैं आपके साथ हूँ, खुशी अभी थोड़ा सा बिजी है बट मैं आपके साथ रहने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड अभी के लिए बिंदास मॉर्निंग से लेता हूं इजाजत, लौट कर आऊंगा थोड़ी देर में, कुछ खा पी के आता हूं ब्रेकफास्ट करके। एंड आज की सुबह की विनर बनती है हमारी निधि। निधि बहुत बहुत बधाइयां एक बार फिर से आपके लिए, ये बजा देता हूं। और एक बार गाना चला दो यार इनके लिए, एग्जैक्टली नंबर के 4 digits 2181। कंग्रेचुलेशन। एंड बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था आज की सुबह, जिन लोगों ने हमारे साथ शो में जुड़े उनके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय गुड मॉर्निंग, रिहाना मेरे साथ जुड़ी थी, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम श्वेता है, हाय श्वेता गुड मॉर्निंग। सहारनपुर से जुड़े थे जून, रोजी पलविलीस लिखते हैं जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करते रहो। एग्जैक्टली यार, बहुत ही खूबसूरत है जिंदगी। और आगे लिखते हैं करम वो फसल है जो हर इंसान को काटनी पड़ती है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोया करो। आए हाय हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? वही गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, हाय कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली गुड यार। गुड मॉर्निंग सर, निखत फातिमा बात कर रही हूँ, हाय निखत गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ चुके हैं।

0: दोस्तों ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं, आपका मैसेज और आपके नाम डेफिनेटली शामिल होंगे। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद का अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देखिए हर किसी इंसान का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ अपना बड़ा करे, कुछ बढ़िया करे, अपना खुद का स्टार्टअप करे, अपना खुद का एक बिजनेस हो। और अगर आप भी अपने बिजनेस में जो है चार चांद लगाना चाहते हो या आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, बट हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, आई टोटली एग्री विद यू। बट अभी आपके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है। 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एक कैंप चल रहा है। कौन सा कैंप है, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको हेल्प मिलने वाली है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कोई फोन लाइन पर आज की सुबह मौजूद है। उनसे बात करेंगे, पूरी डिटेल उनसे जानेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये हेल्प कर दे आपको आपके सपनों की उड़ान भरने में। तो आइए बात करते हैं, कौन जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। कैसे है सर आप?
1: कुछ अपना बड़ा करेंगे
0: जी। और बाकी अगर रेडियो चल रहा है तो कम कर लीजिए। सर आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम योगेश कामेश्वर है।
0: योगेश कामेश्वर जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में और तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं आज की सुबह। तो सर सबसे पहले मैं इस कैंपियन के बारे में जानना चाहूंगा, ये किस तरीके से क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को आप बताएं।
2: देखिए ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी योजना, महत्वाकांक्षी योजना है
0: जी,
2: पीएम युवा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
0: जी,
2: जिसके अंतर्गत हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा जो अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, 21 से 40 साल के युवा जो 8वीं पास हैं और भी ऊपर पढ़ाई किया हुआ हो उन्होंने
0: जी।
2: उनको भी अगर 8वीं पास भी हैं तो उनके लिए सरकार एक योजना बहुत अच्छी लेके आई है, जिसमें हम लोग 5 लाख रुपए तक का उनको लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे
0: जी।
2: और ये लोन ब्याज मुक्त होगा।
0: ओके,
2: गारंटी युक्त और ब्याज मुक्त।
0: ओके,
2: ठीक है
0: जी।
2: इसमें है जो, और 10% की जब पूरा अच्छी तरह से चुका देंगे लोन को, जो भी अमाउंट 5 लाख रुपए तक का कुछ भी हो सकता है
0: जी,
2: उसको चुका देंगे सक्सेसफुली तो 4 साल के बाद इसमें 10% की सब्सिडी भी मिलेगी।
0: जैसे
2: फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का लोन है तो 4 साल के उपरांत उसको 50,000 रुपए सब्सिडी भी मिलेगी।
0: वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है,
2: ये बहुत अच्छी स्कीम है।
0: हाँ। जी जी,
2: तो हम लोगों ने जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय के निर्देशानुसार इस समय ब्लॉक में 14, 15 और 16 में ब्लॉक्स में और नगर पंचायतों में 10 से 4 बजे तक रोज 14, 15, 16 अक्टूबर 2026 को कैंप आयोजित किए जा रहे हैं सभी ब्लॉक्स में और नगर पंचायतों में, जहां पर हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी लोग बैठेंगे और वहां पर जो उद्यम, जो युवा आएंगे अपना अपने जिज्ञासा को लेके और अपने फार्म को लेके, तो पेपर्स लेके उनको वहां पर ही हम ऑनलाइन कराएंगे और बैंकों में भिजवाने का काम करेंगे और उन लोगों को लोन भी दिलाएंगे।
0: बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर। इस स्कीम का नाम क्या है, जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से।
2: स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, पीएम युवा, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीएम युवा, जैसे कि नाम से जाना जाता है युवा,
0: युवा मतलब युवा, आज की युवा पीढ़ी के लिए।
2: यस, आज की युवा पीढ़ी के लिए युवा मतलब युवा उद्यमी विकास अभियान, युवा।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत
2: से, हाँ
0: जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक और चीज मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा सकें, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उसने पहले कभी लोन लिया होगा, यानी मतलब कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन इजिबल होगा इस लोन के लिए?
2: देखिए इसमें 8वीं पास
0: जी,
2: 8वीं पास ऐसे युवा जो 21 से 40 वर्ष के मध्य हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा।
0: ओके,
2: और पहले से अगर छोटा मोटा काम कर रहे हैं
0: जी,
2: तो ऐसा नहीं है कि पहले से काम कर रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल नए लोगों के लिए है, लेकिन अगर छोटा मोटा कोई पहले से काम कर रहा है, अपना काम बढ़ाना भी चाहता है
0: जी,
2: अच्छे स्किल पर करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये योजना है।
0: ओके ओके, तो इसमें क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो लेकर के आ सकते हैं और अप्लाई करने के लिए, और नियर बाय कहाँ पर ये कैंप है अपने मुरादाबाद की अगर बात करूँ तो?
2: हमारे मुरादाबाद में इसमें जैसे मुड़ा पांडे में मैं इस समय पर खुद भी बैठा हुआ हूँ।
0: ओके,
2: ब्लॉक की मीटिंग हॉल में, यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने फार्म भरवा रहे हैं
0: जी,
2: और विकास खंड जो भी है हमारे कुंदर की है, सजलेट है, और भी जो हमारे विकास खंड है, सभी विकास खंडों में ये कैंप आयोजित किए जा रहा है 10 से 4 बजे तक।
0: ओके,
2: नगर पंचायतों में भी अप्लाई ये किए जा रहे हैं फॉर्म, तो वहाँ पर हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप लोगों को जो जो लोग आएंगे, युवा आएंगे, उनको सभी को असिस्ट करेंगे। और जहाँ तक आपका इसका सवाल है कि क्या क्या इसमें प्रोवाइड हो सकते हैं, कौन कौन से उत्पाद हो सकते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग लोगों के एप्लीकेशंस लेंगे। जैसे कोई अपना खुद का प्लांट लगाना चाहता है
0: जी,
2: जैसे कोई ब्रिक बनाना चाहता है, कोई दूध से कुछ पनीर घी वगैरह इत्यादि बनाना चाहता है
0: जी,
2: या रेडीमेड गारमेंट का काम खोलना चाहता है
0: जी,
2: तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ सर्विस एक्टिविटी में भी हम लोग एप्लीकेशंस प्राप्त करेंगे। जैसे कोई लॉन्ड्री खोलना चाहता है, मोटरसाइकिल मरम्मत का काम करना चाहता है
0: जी, जी।
2: कोई ये जो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं तो उनके उनको भी हम लोग ये जो सर्विस एक्टिविटी देते हैं उनको भी हम लोग इस योजना में शामिल करेंगे।
0: ओके, बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतना कीमती समय निकाला। और इसके लिए कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो उनको डेफिनेटली लेकर आने हैं?
2: जरूरी डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो शैक्षिक योग्यता आपकी 8वीं की मार्कशीट कम से कम ये होनी चाहिए
0: जी।
2: और आपका जहाँ से आप मशीनें इत्यादि प्राप्त करेंगे वहाँ का एक कोटेशन और चाहिए होता है।
0: ओके,
2: तो कोटेशन वो मिल जाएगा। अगर जहाँ से आप मशीनों की बात कर रहे हैं, आपको मशीन तो लगानी पड़ेगी क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एप्लीकेबल नहीं है।
0: ऑल राइट,
2: तो हाँ, ट्रेडिंग एक्टिविटी एप्लीकेबल नहीं है, तो कम से कम जो मशीन लगाएंगे तो वो जिस वेंडर से लेंगे तो उसका एक कच्चा बिल यानी कोटेशन हमको चाहिए होगी, जो कि इस योजना में वेबसाइट पे अपलोड होगा। वेबसाइट का नाम भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। साथ साथ में इसके जैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनेगी, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम भी हम लोग यहाँ पर उनको मदद करेंगे जो भी लोग कैंप में आएंगे। और इसके अतिरिक्त 3 दिन के बाद में भी जिला उद्योग केंद्र में हमारा एक सेल बना हुआ है जिसमें 2 CM फेलोज बैठे हुए हैं। वो आपको कोई भी व्यक्ति जनपद मुरादाबाद का हमारे कार्यालय DIC जिला उद्योग केंद्र में आते हैं तो उनसे संपर्क करके अन्य दिवसों में भी वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के पश्चात एप्लीकेशन आपकी बैंक में हम लोग 1 दिन के अंदर भेज देंगे और बैंक आपको आपके जहां पर आपको प्लांट लगाना है वहां पर विजिट करके उसको नियमानुसार स्वीकृत करेगी और उसके बाद डिस्पर्स करेगी।
0: बहुत ही बढ़िया कामेश्वर जी, जैसे आपका नाम है वैसे आपका काम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारी मुरादाबाद की जनता के लिए। कुछ और कहना चाहते हैं? आपकी आवाज तमाम लोग सुन रहे हैं आज की सुबह रेडियो के माध्यम से। कोई जरूरी मैसेज आज के युवा को जो आप देना चाहते हो?
2: ये देखिए, सरकार की ये बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है
0: जी,
2: जिसका अधिक से अधिक युवा अपना लाभ उठाएं, अपने पैरों पे खड़े हों, अपना रोजगार स्वयं का स्थापित करें और 4 लोगों को तो और भी रोजगार दें। मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने साथ में रोजगार लोगों को और देंगे तो ये प्रदेश में जो रोजगार सृजन का वातावरण और भी बनेगा जैसा कि सरकार की मंशा है। तो ये एक बहुत अच्छा योजना है, इसका लाभ उठाएं सब लोग।
0: बहुत ही सही कहा सर आपने और मुझे भी लगता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है और जब आप बड़े इरादे के साथ बाहर निकलते हो तो हर कुछ आपके लिए आसान हो जाता है, राइट? जैसे अभी आपकी स्कीम है। थैंक यू योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ। FM मुरादाबाद की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और थैंक यू सो मच वंस अगेन सर।
2: थैंक यू,
0: नमस्कार सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ये जुड़े थे कामेश्वरम जी हमारे साथ और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गाइस फिलहाल के लिए अभी मैं लौट कर आता हूँ, थोड़ी सी देर में युवा उद्यमी योजना के बारे में बात कर रहे थे एंड स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे साथ, अभी लौट कर आता हूँ, वी कम बैक। आप ट्यून इन रहिए, कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर।
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
4: अरे आनंद इज बैक,
5: यू आर लिसनिंग टू दास बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
7: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
8: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
9: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
10: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
11: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
10: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
12: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
13: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
12: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
13: अरे नहीं,
14: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
13: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
12: अच्छा?
13: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

सच बताओ रो यार, आज तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं, वेलकम बैक है, थोड़ा भोकाल मचा रहे हैं आपके साथ। हाय, कैसे हालचाल है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शो दूसरा वाला स्टार्ट हो गया जिसका नाम है मॉर्निंग मसाला। अभी मॉर्निंग मसाला वाली वाइब आपको कब आएगी? जब ये इसका बीजीएम मैं सेट कर दूंगा, राइट? ऐसा कुछ है क्या पाजी? अगर है तो मुझे बता दो यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन कर लिया है FM मुरादाबाद 89.6, जहां ढेर सारी बातें होती हैं और यहां पे आपके पसंद के गाने भी होते हैं। अगर आप कुछ सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टेंट मैसेज कर सकते हो 9837896896। एक नया प्रोग्राम, एक नई एनर्जी, एक नया जोश, एक नया दिन।

हेलो हाय, कैसे हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। कर दिखाओ कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। वक्त हुआ है 10:39। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। कुछ भी आप सुनना चाहते हैं, किसी को कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। व्हाट्सएप नंबर नोट करो मेरा, बहुत आसान नंबर है 9837896896 9837896। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आज की सुबह ढेर सारी बातें आपके स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी कहीं मत जाइएगा, आप रेडियो की सुन बिल्कुल मत घुमाइएगा। नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माँ का चौथा दिन है आज। कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आज का कलर मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आज के दिन के बारे में मैंने बात करी, और अब जो है इस घंटे की शुरुआत हो रही है, और मैं बस आपकी मैसेजेस से ही मेरा पेट भरेगा आज की सुबह। एंड अब तो मैं सीधा ब्रंच ही करूंगा जाकर के, बट अभी राइट नाउ आपको सुनना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए अपने नाम के साथ अपना बढ़िया सा गाना, कुछ भी जो आपको सुनना है, जिससे सुन के आपकी मॉर्निंग थोड़ी फ्रेश हो सकती है। और मैं एक छोटा सा सवाल लेकर आऊंगा अभी, जिसमें आपके साथ ढेर सारी बातें होंगी। अभी मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पहुंचे हैं। हाय, माय नेम इज सोनिका, प्लीज प्ले माय पंजाबी ट्रैक। कोई भी एक पंजाबी गाना प्ले कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल राइट जी, पंजाबी गाने की बात हुई तो मैं एक अच्छा सा गाना डेफिनेटली आपके लिए प्ले करूंगा आज की सुबह। एक और व्हाट्सएप पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ वी डूइंग, आई एम एब्सोल्युटली गुड। आपने जो अभी योजना के बारे में सर से बात करी वो हमें बहुत अच्छी लगी, और हमें पता चला कि आज ऐसा भी कुछ हो रहा है शहर के अंदर। जी बिल्कुल, कोशिश होती है कि सुबह सुबह आपको रेडियो के माध्यम से सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं, और वो जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी जिसको डेफिनेटली आप तक पहुंचना चाहिए, वो सब पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आनंद, कैसे हो? मेरा नाम प्रीति है। गुड मॉर्निंग प्रीति, प्लीज प्ले माय ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट देवी भजन। ऑलराइट, थोड़ी देर में जरूर प्ले होगा प्रीति। अभी आने वाला गाना, आप में से किसी ने बोला ना पंजाबी प्ले कर दो, तो ये देखो जी, इतनी पंजाबी चल रही है तुम्हारे लिए, तुसी वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करो ये वाला गाना, और तुसी सुन रहे हो तुम्हारा फेवरेट रेडियो स्टेशन। क्या नाम है पाजी जड़ा स्टेशन था? अरे यार, अपने स्टेशन का नाम है एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं पंजाबी थोड़ी अच्छी नहीं बोल पाता, कोशिश शुरू कर लेता हूँ यार। कुछ कहना चाहते हो आज की सुबह तो जल्दी से मैसेज करो यार, मैं अभी लौट कर आता हूँ, मैं पानी पी के आता हूँ भाई।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: ध्वनि, तुझे पक्का है वो आएगा?

0: बहुत ही खूबसूरत ध्वनि भानुशाली की आवाज में अभी आप एंजॉय कर रहे थे एक अच्छा गाना। और सच में यार ये गाने इतने प्यारे होते हैं ना, इनके मतलब मजा आ जाता है। तो वाइब्रेशन इतनी अच्छी आ जाती है, पॉजिटिविटी एकदम आसपास मंडराने लगती है यार। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव टेलर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह और ये मुझे मैसेज करते हैं, चलिए एक बार इनका मैसेज पढ़ लेते हैं। आनंद भाई जय श्री राम, गौरव टेलर नवीन नगर से बात कर रहा हूँ, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रहे हैं आप, अच्छा जी, और जानकारियां भी बहुत ही अमेजिंग लेकर आते हैं आप है कोई सा भी, मतलब आप ही हैं जब आप कोई सा भी कार्यक्रम करते हो तो उसमें कार्यक्रम में चार चांद ही लग जाते हैं। जय माता दी, मुझे एक गाना सुनना है, यहाँ ये शहर है अमन का, यहाँ पर सब शांति शांति है। यार शांति तो नहीं है, खैर गौरव जी जहाँ देखो वहीं पे ट्रैफिक है मुरादाबाद के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इस गाने की तमन्ना की है तो ज़रूर आपकी इस तमन्ना को, इस ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी श्रोताओं आप भी कुछ सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर। व्हाट्सएप का नंबर बहुत आसान है, इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज के सुबह। यार जुकाम बहुत तेज है, लेकिन आज की सुबह मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दिस इज माय क्वेश्चन, आप लोगों से बहुत इजी सवाल है। आज की सुबह अगर आपको किसी को गाना डेडिकेट करना हो और वो आपके लिए बहुत स्पेशल हो तो वो कौन होगा? आपकी मम्मी हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपकी कोई अपनी पार्टनर हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड बीबी कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आरजे आनंद, आप कोई भी जिसको भी आपको डेडिकेट करना हो बस उनका नाम लिखो कि हाय आनंद गुड मॉर्निंग, आज वेंसडे की सुबह ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी दिल की चहेती उस दोस्त को या उस इंसान को जिसको भी एग्जैक्टली आप डेडिकेट करना चाहते हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी वॉट एवर जिसको भी आप डेडिकेट करना चाहो उनका नाम लिखो, अपना नाम लिखो और गाना पहुंचाओ।
1: यहाँ पे सब
0: शांति तो नहीं कह सकते यार,
1: यहाँ पे सब शांति शांति,
0: बहुत ही प्यारा गाना,
1: यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति।
0: आपको क्या सुनना है बताओ ना यार फटाफट। और अभी आगे बढ़ते हैं, जय माता दी, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। आज हमें गाना सुनवा दीजिएगा डांडिये के बहाने आ जाना कभी मिलने, अरे वाह बहुत प्यारा गाना है, जरूर

गुड मॉर्निंग प्यारी वाली, गुड मॉर्निंग ये भी पहुंचाते हैं। चलो भाई, आप लोग अपने नाम के साथ किसको गाना डेडिकेट करना चाहते हो उनका नाम फटाफट पहुंचाओ मुझे, व्हाट्सएप करो 9837896896 पर।

11 बज चुके हैं भाई, बस सिर्फ 2 मिनट बचे 11 बजने में। आप मॉर्निंग सुन रहे हैं आनंद के साथ, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। कोई गाना सुनना चाहते हो, किसी को डेडिकेट करना चाहते हो आज की सुबह, तो बस मुझे उनका नाम लिखो और वो गाना लिखो जिनको आप डेडिकेट करना चाहते हो। डेली अपने लिए सुनते हो ना, आज की सुबह किसी और को सुनवाना है आपने, मुझे सुनवाना चाहते हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो यार।

0: मेरे को कितना टाइम हो गया आपसे बात करते करते, आई थिंक 3 घंटे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं एंड मैं तो बिना कुछ खाए सर्वाइव करे जा रहा हूँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा है बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, जिस काम से आप बड़ा प्यार करते हो, जिस काम से आपको मोहब्बत होती है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस काम को करने में ना आपको पता ही नहीं चलता कितना टाइम आपने निकाल दिया। जब तो कहते हैं अपने काम को अपने काम से प्यार करो एंड जिस चीज़ से आप प्यार करते हो ना, जब आप उसको करने लग जाते हो ना तो अलग ही मजा होता है, उसमें अलग ही स्वैग होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कल रात को तो वैसे भी बहुत लेट सोए हैं क्योंकि कल रात मेरा शो था, इवेंट होस्ट करना था मुझे, आज भी हमारा प्रोग्राम है, इवेंट होस्ट करना है मुझे, तो उसकी भी तैयारी करनी है। दोपहर को रामलीला की पूरी टीम हमारे बीच में होगी, उनके साथ पॉडकास्ट भी है, तो इतनी सारी चीजें करनी होती है ना, बट बड़ा मजा आता है यार, बिकॉज वही है ना, जब आपका पैशन प्रोफेशन बनता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है यार। चलो आपके साथ एक दिमाग घुमाने वाली पहेली भी पूछ लेता हूँ, अगर इसका जवाब आपने दिया तो फिर आपको एक बढ़िया गिफ्ट दूंगा आज की सुबह। 11 बजने को है, आप मुझे मैसेज करके फटाफट बताइएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ आज की सुबह, ये आपको मुझे बताना है व्हाट्सएप करके, ठीक है जी। ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से ही टूट जाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से ही टूट जाती है, पता है इसका आंसर, मैसेज करो 9837896896। एक और मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर भी आप देंगे तो बड़ा मजा आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे करेंगे। देखिए किसी ने मुझे ये पहुंचाया था क्वेश्चन कि अगर अंधी की बीवी भाग गई तो गूंगा बताएगा कैसे। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे एंड आई डोंट नो, इन्होंने मेरे को बोला कि आप प्लीज़ इसको एक बार पूछ के देखो, मुझे भी नहीं पता इन्होंने क्यों मेरे को रिकमेंड किया है, बट सी अगर इन्होंने मुझे लिख के पहुंचाया तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। इन्होंने लिखा है अगर अंधी की बीबी भाग गई तो गूंगा बताएगा कैसे। अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बता सकते हो तो वेल एंड गुड यार, अदरवाइज तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप जरूर बता दीजिएगा भाई साहब, बहुत सिंपल सवाल पूछता है आनंद आपसे। ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से ही टूट जाती है, पता है इसका आंसर, बता दो मुझे। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:01 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को, यह है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। सारी कड़क अपडेट अगर आपको जानी तो इंस्टाग्राम फॉलो करो, हमारा इंस्टा हैंडल है मेरा रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, ऑफिशियल पेज है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, जल्दी से फॉलो करो।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.

0: मुरादाबाद अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

बहुत ही खूबसूरत। आज तो भैया गरबा डांडिया में मैं ये गाना डेफिनेटली प्ले कराने वाला हूँ। कमाल का इसका लिरिक्स है, मैं पढ़ रहा था अभी, डांडिये के बहाने आ जाना। बहुत अच्छा गाना लग रहा है सुनने में, तो म्यूजिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड शायद मैंने इंस्टाग्राम के शॉर्ट रील्स में इसको सुना होगा, बट मैं पहली बार इस गाने को सुनने वाला हूँ। एंड इतनी खूबसूरत आवाजें हैं, उदित नारायण साहब, साधना सरगम, तो यार ऑफकोर्स गाना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। मैं तो इसको सुनने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो ना। इस गाने की रिक्वेस्ट आई है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू जी की, डांडिये के बहाने आ जाना। आए हाय, वैसे आप डांडिया गरबा में आना चाहते हो तो मुझे इंस्टेंटली इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा है उसका जवाब आप मुझे दे सकते हो 9837896896 व्हाट्सएप करके भी, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी, और मेरे साथ एंजॉय करने आ सकते हो डांडिया यार। चलो फिलहाल इंजॉय करो। और आज की सुबह आप किसको कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हो, ये गोल्डन चांस आपके पास है। यस, आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9837896896 में। आप किसको गाना डेडिकेट करना चाहते हो आज की सुबह, अपनी मदर को, फादर को, सिस्टर को, ब्रदर को, फ्रेंड को, अपने पड़ोसी को, किसी को भी कर सकते हो। रोज अपने लिए सुनते हो, आज किसी और के लिए। ओके, तो किसको डेडिकेट करना चाहते हो, कौन सा गाना बताओ मुझे जरा।

वेलकम बैक। एक बार नहीं, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। सुबह सुबह 11:11 हो रहे हैं, दिस इज द मैनिफेस्टेशन टाइम। अगर आप इस टाइम पे कोई अच्छी विश मैनिफेस्ट करते हैं तो वो पूरी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो 11:11 हो रहे हैं, अपने मोबाइल में अपनी घड़ी में देखो यार, अगर आगे पीछे चल रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एग्जैक्टली आप अभी मोबाइल पे देखोगे या घड़ी में देखोगे तो 11:11 हो रहे हैं।

हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है आपका। आपने ट्यून इन किया है, इस वक्त मैं रेडियो पे भी लाइव हूँ ऑफ कोर्स, और अपने इंस्टाग्राम पे भी लाइव हूँ। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रेडियो वाला आनंद के नाम से। 11:12 हो चुके हैं, ये है 14 अक्टूबर की ब्रांड न्यू मॉर्निंग, वेंसडे की सुबह है, नवरात्रि का चौथा दिन है। जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन यार अभी आपसे एक बात डिस्कस करनी है। कल क्या मैं डेली ही रामलीला जाता हूँ, मैं रामलीला कवर करता हूँ, फीचर करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है कुछ चीज़ें, उस मूवमेंट को मैं शेयर करता हूँ अपने लिसनर्स तक, अपने फैंस तक, अपने व्यूवर्स तक। एंड मुरादाबाद में आप पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ रामलीला हो रही है। मुझे सिर्फ 2 या 3 का ही आइडिया है, एक तो अपने रामलीला ग्राउंड में रामलीला होती है, इसके अलावा आई थिंक एक नवीन नगर की रामलीला भी होती है, मैंने एक दो बारी में गया हूँ वहाँ पे भी, और इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली पता किया लाजपत नगर में भी रामलीला चल रही है मुरादाबाद में। तो आप मुझे बताओ मुरादाबाद के अंदर रामलीला कहाँ कहाँ हो रही है, और मुझे ये भी बताओ कि इतने लोग हैं जो अपने बच्चों को रामलीला में लेके जा रहे हो। मतलब मैंने ये देखिए यार कि गाड़ी में ना मैंने देखा, कल ही देखा मैंने एक फैमिली को, वो अपने बच्चों को भर के लेकर आ रहे गाड़ी में। अब आई डोंट नो उनके रिश्तेदार के बच्चे थे उनके थे, बट मतलब 4-5 बच्चे उसमें गाड़ी में बैठे थे और वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चों को रामलीला में लेकर। मेरे को इतना अच्छा लगा बहुत कि मतलब आज भी लोग अपने बच्चों के साथ रामलीला जाना पसंद करते हैं, आज भी लोग रामलीला दिखाते हैं अपने बच्चों को, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज की डेट में भी लोग रामलीला को इतना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी एक कल्चर है, जो हमारा एक रिचुअल्स हम चलता आ रहा है, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बट आप मुझे बताओ मैसेज करके या फिर कॉल करके भी बता सकते हो। अभी आप शो सुन रहे हो आनंद के साथ आज की वेंसडे की सुबह। रामलीला की बात कर रहा हूँ, कितने लोग हैं जो रामलीला में डेली जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू मुरादाबाद, क्या आप अपने बच्चों को रामलीला दिखाने लेकर जाते हो, या अभी तक आप एक भी बार नहीं गए हो? तो मुझे जरूर बताइएगा। कल मैं रामलीला में गया तो कल राम जी का जो मिलाव था वो हुआ केवटिया जी से। एक सेगमेंट है रामलीला के अंदर जो उनकी नाव से पार कराते हैं उनको नदी, कल वो मैंने सीन देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी आप देख सकते हो। एंड बाकी आप भी मुझे मैसेज करके बताओ, कोई गाना सुनना चाहते हो तो भी आप मुझे बताओ, मुरादाबाद में कहां कहां रामलीला हो रही है, ये भी मेरे को जानना है आपसे फटाफट से। अभी कुछ गाने, उसके बाद मैं लौट कर आ रहा हूं। कुछ कहना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो आप मुझे, रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिलूंगा। व्हाट्सएप नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा का हैंडल है मेरा रेडियो वाला आनंद के नाम से, आपको मिलता हूं, फटाफट से आओ, वहां पे ढेर सारी बात कर रहा हूं, लाइव हूं मैं इंस्टाग्राम पे भी, ज्वाइन करो। अभी के लिए गाना, ये गाना की रिक्वेस्ट मुझे पहुंचाई है सुनिधि ने। सुनिधि कहना चाहती है, इस गाने को डेडिकेट करना चाहती हूं अपने हस्बैंड को, इनके हस्बैंड का नाम मयूर है, तो बिल्कुल प्रीति जी मयूर भाई के लिए गाना प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाना है, आई रियली लव दिस सॉन्ग, बहुत टाइम के बाद मैं इस गाने को सुन रहा हूँ। गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, कुछ कहना चाहते हो तो मैसेज करो यार।

0: वेलकम बैक है सुनिधि चौहान एंड सुनो निगम साहब की आवाज में अभी आप एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा गाना। एंड इस गाने की रिक्वेस्ट अभी मैम ने मुझे डाली थी, मैम थैंक यू सो मच। ये गाना प्रीति जी मैंने आपने आपके आपने कहा था ना मेरे हस्बैंड के लिए प्ले कर दो, तो मैंने प्ले कर दिया। 11:19 हो रहे हैं और आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब ऐसे नॉन स्टॉप बैठा हुआ हूँ ना रेडियो पे, तो ऐसा लग रहा है यार मतलब आज ना सारे तोते उड़ गए मतलब। लेकिन कोई बात नहीं यार, कभी कभी ना मजा आता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना इनको करने में सच में दिल से खुशी मिलती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और इंस्टाग्राम लाइव मेरा अपने आप बंद हो गया है, कोई बात नहीं, फिर कभी लाइव जरूर आएंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप हमें वहां पे ज्वाइन कर लो यार। 9837896896 ये नंबर है और इंस्टा हैंडल है रेडियो वाला आनंद के नाम से। मिलता हूँ हो रहे हैं। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। दुर्गेश सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, और डॉक्टर शैयद शारिकली जी जुड़े हैं आजाद नगर करूला मुरादाबाद से, और साथ में इरशाद हुसैन अंसारी जी का नाम लिखते हैं। कोई गाना सुनना है, मरीज इश्क हूं मैं। व्हाट अ सॉन्ग यार डॉक्टर साहब, मतलब क्या गाना है ये, इसको तो मतलब मैं बहुत पसंद करता हूं। ये गाना मेरा भी बड़ा ओल्ड टाइम फेवरेट है, एंड सच में बहुत अच्छा गाना है। आज की सुबह आपने मतलब दिन बना दिया यार, इतना अच्छा गाना भेज के, थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन आज हम ये पूछ रहे हैं कि आप गाना किसको डेडिकेट करना चाहते हो। डेली अपने लिए सुनते हो, लेकिन आज की सुबह अगर आप ये गाना किसी को डेडिकेट करोगे तो वो कौन होगा, उसके बारे में बताओ यार मुझे जरा। वो आपकी बीबी हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आप नहीं बताना चाहते हो। फिलहाल के लिए गाना मैं डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट कर चुका हूँ अभी की सुबह अरिजीत सिंह की आवाज में। क्या बात है, एक तो मेरी स्टूडियो में गर्म चाय रखी हुई है अदरक वाली, ऊपर से अरिजीत सिंह का इतना हॉट गाना। लेकिन चलो इस गाने से पहले बाकी लोगों के मैसेज को जरा जल्दी जल्दी शामिल कर लेता हूँ मैं इसी प्रोग्राम में। नवीन नगर से गौरव टेलर जी का मैसेज आया है। आनंद भाई, जो बोलने से टूट जाती है उसका जवाब है डैश। एग्जैक्टली, मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल सी पहेली पूछी है, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है, या आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं जी। और ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं आज की सुबह। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। ये मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है, गुड मॉर्निंग सर, इस वक्त ये मुझे कहाँ सुन रहे हैं, किसी अलग कंट्री में सुन रहे हैं, आई थिंक ये पाकिस्तान से मेरे पास मैसेज पहुंचा है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आई एम एब्सोल्युटली गुड यार, और आप एक बार मुझे अपनी कंट्री का नाम क्लियर कर देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाय आनंद भैया, मैं कपिल कश्यप मुरादाबाद से हूँ, प्लीज मेरे गाने की एक रिक्वेस्ट है, लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, बहुत प्यारा गाना, अपनी मम्मा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। क्या बात है, डेफिनेटली प्ले होगा यार ये गाना, अगर ऐसी बात है तो। कपिल आप थोड़ा सा इंतजार करो, इस गाने को मैं अभी प्ले करने वाला हूँ। 11:23 हो रहे स्टेशन क्लॉक में, आप कुछ सुनना चाहते हो हाथ रख दे, मैसेज कर सकते हो। मोहम्मद कामिल जी आपका मैसेज अभी लौट कर आते हैं, उसके बाद जल्दी से शामिल करेंगे। खाली गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।

0: चोर।
1: भाई मेरा नाम आरजी आनंद है, आई एम नॉट चोर। ये पिक्चर मैंने, मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी बुआ जी के घर देखी थी मोहब्बतें मूवी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और दूसरी बार मैंने यहाँ मुरादाबाद में यूट्यूब पे जाके देखी है और ये पिक्चर अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म है, स्टारिंग बाय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और भी तमाम सारे स्टार कास्ट है, बहुत ही धाकड़ फिल्म है। वेलकम बैक है, वक्त मिलाओ पहले 11:34 हो रहे हैं, सही कह रहा हूँ जी? मुरादाबाद से जुड़ी एक लेटेस्ट खबर आपको फटाफट बताते हैं। देखिए क्या होता है ना, कई बारी जब हम किसी शॉप के आसपास से निकलते हैं, वहाँ पे ढेर सारा झुंड खड़ा होता है और कई बारी लड़कियाँ जा रही होती हैं, कुछ वुमेन्स जा रही होती हैं, फिर वो लोग कमेंट पास करते हैं ना, उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि बोल क्या रहे हैं। बट अब ऐसे लोग जो अश्लील कमेंट करेंगे ना भैया, अब उनको जो है ना टीम ने दबोचना शुरू कर दिया। मुरादाबाद की जो पुलिस है, जो एंटी रोमियो पुलिस है, वो अब पकड़ेगी, दबोचेगी और अगर ऐसा कुछ भी दिखा तो भैया फिर उनकी खैर नहीं। अगर आप जो है भाई वैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो जरा बता दीजिएगा कि अगर आप किसी शॉप वॉप पे खड़े होकर किसी को कमेंट पास करते हो तो भैया आपकी खैर नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं ऐसी बात करनी क्यों है यार। आपको बता दें, एक दुकान के बाहर खड़े होकर आती जाती महिलाओं को जो है अश्लील कमेंट कर रहे थे एक भाई साहब। अब जो है एक युवा थे, उनको पुलिस ने जो है उनकी पूरी टीम ने पकड़ लिया है एंड इनके खिलाफ अब केस भी दर्ज हो गया है। तो आपको बता दें अभी नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे में जो है मिशन शक्ति की टीम पूरी तरीके से काम कर रही है अपने मुरादाबाद में। आपको बताया मिशन शक्ति का 2.0 चल रहा था पहले और अभी भी हम लोग मिशन शक्ति की टीम से लगातार कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज या कल हम उनकी टीम को बुला करके पूरी इंटरव्यू करने वाले हैं, किस तरीके से काम कर रही है मिशन शक्ति और स्पेशली नवरात्रि के 9 दिनों में तो इसका क्रेज और भी बढ़ जाता है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब देखिए, कहीं पर भी आप कहीं भी खड़े हो, किसी भी शॉप पर हो, कहीं भी कोई भी आपको आता जाता दिख रहा है, प्लीज मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया पे भी हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। रियल लाइफ तो बहुत बड़ी बात है ना, क्यों ही कमेंट पास करना यार, स्पेशली गलत बात क्यों ही करनी है यार। देखिए सबके लिए अच्छी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ रेडियो के जरिए कि जितना हो सकता है ना अच्छी चीजें स्प्रेड करो, पॉजिटिव चीजें शेयर करो, अच्छी चीजें बोलो यार। अगर अच्छी नहीं बोल सकते तो बुरी काय को बोल ली दादा। अगर आपके घर पे ग्रीन मटर आती है ना, हरी मटर, पैकेट वाली मटर अगर आती है तो जरा संभल के इस्तेमाल कीजिए जनाब। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, चलिए आपको बताता हूँ। रिसेंटली अभी कुछ फैक्ट चेक किए गए हैं जिसमें जो पैकेट वाली हरी मटर होती है उसमें मिलावट का दावा किया गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, इसमें जो है एक भाई साहब है, उन्होंने मटर के दाने को लिया है एंड उसके बाद उन्होंने उसको हल्का सा जो है ऐसे मतलब तोड़ने की कोशिश की है हाथ से। जब उन्होंने रफ किया, उनको उन्होंने हाथ से रगड़ा तो उसमें ग्रीन कलर छूटा एंड वो मटर का दाना, मतलब जब उन्होंने रफ किया थोड़ी देर तक तो वो पता चल गया कि वो एक्चुअली दिस इज द कलर मटर, नॉट ओरिजिनल मटर, वो बिल्कुल अलग ही कलर छोड़ गई। उन्होंने पानी में डाला तो वो अलग हो गया। तो मतलब अब देखिए ना, आप खाने पीने की चीजों के साथ अगर ऐसे खिलवाड़ होगा तो ऑफकोर्स यार हमारा क्या ही होगा बादशाह। इसलिए जरा सोच समझ की चीजों का इस्तेमाल करो। आजकल हर चीज जो आपको ओरिजिनल दिखती है ना, इट्स नॉट ओरिजिनल, उसकी जांच जरूर करें, बहुत जरूरी है। अगली बार अगर आपके घर भी पैकेट वाली मटर आए तो जरा सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा, पहले एक बारी चेक कर लीजिएगा कि प्योर शुद्ध है भी या नहीं। और मैं तो कहता हूँ भाई मत ही लो यार, अब सीजन आने वाला है मटर वटर का, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, उसकी बात ही अलग होती है। सर्दियों से मुझे याद है दिवाली का जो फेस्टिवल होता है ना यार, वो मुझे नवंबर वाला बहुत पसंद है, बिकॉज अक्टूबर में जो दिवाली आती है ना उसमें वो ठंड वाली फील नहीं आती है और जब आप नवंबर वाली दिवाली में जाते हो तो उसकी वाइब ही अलग होती है। हल्की हल्की ठंड होती है, जल्दी शाम हो जाती है, जब आप दिए लेके अपने पड़ोसी के घर पहुंचते हो तो एक अलग ही ठंडी हवाएं चल रही होती है, एक अलग ही माहौल होता है, चारों तरफ रोशनी से नहाया शहर होता है। तो मुझे नवंबर की दिवाली बहुत पसंद है यार। आई डोंट नो आपको कौन सी वाली दिवाली पसंद है, आई मीन अक्टूबर की पसंद है या नवंबर की, ये मुझे नहीं पता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नवंबर में जब दिवाली आती है ना बहुत अच्छा लगता है। और आपके घर में काम शुरू हुआ है नहीं दिवाली का? वैसे मेरे पड़ोस में तो सफेदी होनी स्टार्ट हुई है और जब तक सफेदी ना होना घरों में लगता ही नहीं है यार हम दिवाली की तरफ आ गए हैं। तो अगर आपके घर में भी साफ सफाई वाला सीन शुरू हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आज भी याद है, हम जब छोटे होते थे मम्मी हमारी ना 4 दिन पहले ही काम

लगा देती बेटा, ये वाले कपड़े उतारो बेटा, यहाँ पे जाले साफ करो बेटा, हाथ में झाड़ू उठा के ये करो, मतलब इतना सारा काम दे दिया जाता था। इनफैक्ट स्कूल की भी छुट्टी हो जाती थी। आपकी वो मेमोरी है तो डेफिनेटली शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए। औरंगजेब हमारे साथ जुड़े हैं। औरंगजेब खान ये मुझे लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है, बहुत दिनों के बाद आनंद साहब आपसे बात हो रही है। सर हम भी आपको बहुत टाइम के बाद सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे मैसेज किया। कुछ टेक्स्ट मैसेज आए हैं, फटाफट से वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद सहारनपुर से हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं उनकी भी बात करेंगे। अमरोहा से मेरे पास एक मैसेज पहुंचा है, नेहा का लिखती है, हाय आनंद सर कैसे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। हाय नेहा, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच आपने मुझे मैसेज किया। और ये लिखती है, वेरी गुड मॉर्निंग, और एक सॉन्ग मुझे सुनना है, तेरे प्यार में मैं ऑल राइट मर जावा। इसको मतलब ये कौन सा गाना लिखा है आपने यार, मेरे को एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा, बट मैं ट्राई करूंगा इस गाने को प्ले करने की पूरी कोशिश होगी। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद भाई, प्लीज टेक द मेडिसिन, और आप बेस्ट आरजे हो, यू आर द बेस्ट आरजे। आपकी आवाज में वो खलक थोड़ी सी गायब है, बिकॉज आप जुखाम में बात कर रहे हो यार, आई रियली होप जल्दी से ठीक हो जाए। वेल थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। आगे लिखते हैं, प्लीज प्ले माई ट्रैक, इनको एक गाना सुनना है, चिट्ठी ना कोई संदेश। ऑल राइट, ये हरीश कश्यप मेरे साथ जुड़ रहे हैं बैंक कॉलोनी से। हाय हरीश, गुड मॉर्निंग यार, बहुत ही अच्छा आपने ट्रैक शॉर्टलिस्ट किया है आज की सुबह, मैं जरूर इसे प्ले करूंगा थोड़ी देर में। एक मैसेज आ गया है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हाल चाल है, नेहा फ्रॉम मुरादाबाद, एंड आज खुशी मैम नहीं आ पाई है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट थोड़ा सा बिजी है, एंड आपको फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ मैं, मैम से ज़्यादा बात होती है, लेकिन आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी लग रही है, और आप भी बहुत ही जल्दी जल्दी और अच्छे बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया फोकस करके मैं सुनती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है, मेरा एक सॉन्ग प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। ओके ऑल राइट, अकेली ना बाजार जाया करो। All right, thank you so much। ये पूरा अगर आप गाना लिख देती तो मेरे लिए थोड़ा सा convenient हो जाता, अकेली ना बाजार जाए करो। अब ये दो गाने हैं ना, एक नया वाला है एक पुराना वाला है, तो थोड़ा सा confusion है। Well, कोई बात नहीं, I will play your song definitely, थोड़ा सा wait करो। गुड मॉर्निंग सर, नेहा एक और अमरोहा से मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कैसे हालचाल है, माय नेम इज शेफाली। हाय शेफाली, गुड मॉर्निंग। एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है, ये मैं जरूर शामिल करूंगा। उससे पहले एक और टेक्स्ट मैसेज आ गया, हाय सर अफरोज फातिमा बात कर रही हूँ, सर आप कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, और सर मैं तो अपनी बेस्टी के लिए शायरी भी करती हूँ और रेडियो पे और गाना भी सुनना चाहती हूँ। अच्छा जी, वो आप लाइवा की बात कर रहे हो, ओके समझ गया मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है, मैं दरक्षा, गुड मॉर्निंग, एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, भीगी भागी सड़कों पे तेरा इंतजार करूं, मेरी बेस्टी रुकैया फातिमा को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूं, और अफरोज फातिमा को, और साथ में लाइबा नजमा जी का नाम भी इन्होंने शामिल किया है। थैंक यू सो मच, मैं जरूर इस गाने को आपके दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने के बाद तुरंत टूट जाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने के बाद तुरंत ठां करके टूट जाती है, पता है आपको, मैसेज करो मुझे 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। अभी एक अच्छा सा गाना आने वाला है, लेकिन उससे पहले टाइम मिला लो, अपनी घड़ियां मिला लो बॉस, वक्त हुआ है 11:41। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और काम की बातें जो अभी आप तक पहुंचेंगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं, तो फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896, दिस इज माई नंबर। इस नंबर को जल्दी से सेव करो और मुझे मैसेज करो, अभी मैं लौट कर आता हूं, आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। कुछ कहना चाहते हो तो नंबर मैंने आपको बता दिया है, फटाफट व्हाट्सएप करो। वो सुनना चाहते हो, किसी को डेडिकेट करना चाहते हो, तो इमीडिएटली मुझे मैसेज करो। आने वाला गाना परम सुंदरी से, आप में से किसी की रिक्वेस्ट आई इस गाने की, विशाल ददलानी की आवाज, सचिन जिगर का म्यूजिक, व्हाट अ सॉन्ग यार, चलो साथ में एंजॉय करते हैं। कुछ कहना चाहते हो तो इमीडिएटली यू कैन व्हाट्सएप।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: Hi, Diana Energy. आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: मैंने 10 तो नहीं बट मैंने एक बहाना जरूर बनाया था अपनी लाइफ में। कौन सा बहाना है लौट कर आता हूँ उसके बाद बता दो। फिलहाल बागी 3 का कौन ले गया भाई इस गाने की रिक्वेस्ट। मेरे पास आई है वरुण की। वरुण मुझे लिखते हैं, हाय आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं काशीपुर रोड पे हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ अर्जेंटली काम से, बट मुझे प्लीज ये गाना प्ले करवा देना मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गाने में मैं अपनी वाइफ को श्रुति को भी शामिल करना चाहता हूँ। तो क्या बात है वरुण एंड श्रुति आपके लिए। के शांत तुलसी कुमार के पास। मैंने 10 नहीं, मैंने एक बहाना बनाया था अपने स्कूल से घर आने के लिए। पता है कब बनाया था लास्ट टाइम? बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले एक और गाने की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, जो बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक है, ऑल टाइम फेवरेट है। आप भी सुनोगे तो आपको भी प्यार हो जाएगा इस गाने से। चलो एंजॉय करते हैं सोनाली बिंद्रे एंड अजय देवगन की। क्या केमिस्ट्री थी यार, व्हाट अ मूवी, बहुत अच्छी फिल्म थी ये एंड गाना बहुत अच्छा है। उदित साहब ने बड़ी खूबसूरत आवाज में गाया है।
1: नजर लग जाएगी सबकी नजर में ना आया करो।
0: आनंद राज आनंद जी का म्यूजिक।

क्या बात है यार, नजर बिल्कुल लग जाएगी, लेकिन अगर आप काजल लगा के जाओगे तो नजर नहीं लगेगी। ऐसा मैं नहीं, मेरी मम्मी कहती है यार। आपकी मम्मी अभी कहती होंगी ऐसी, सच बात है गलत ये तो आप ही बता सकते हो, लेकिन यार सच बात तो यही है कि जब आप जाते हो ना काला चश्मा लगा के या काजल लगा के तो नजरों से आप बच जाते हो, और आजकल ना बड़ी बुरी नजरें लगती है लोगों को, बता रहा हूँ आपको। वेलकम बैक वंस अगेन, यू आर लिस्टिंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6, सुन रहे हैं आप आनंद को श्रोता मॉर्निंग मसाला। जाने का समय हो गया है मेरे भाई, जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं उल्ली पार जाओ या पल्ली पार, बात ही एक ही मेरे यार। 14 अक्टूबर की सुबह, ये बहुत ही स्पेशल तारीख थी और बहुत ही स्पेशल चीजें आज के दिन हुई। मैंने आपको थोड़ी थोड़ी करके बताई क्या क्या चीजें चल रही हैं हमारे आसपास 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक। जैसे हमने आपको सुबह सुनवाया अपने प्रोग्राम में, युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है आज शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको लोन मिल सकता है 5 लाख रुपए तक का। अगर आप अपने सपनों का बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है जाकर के अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप 8वीं पास हो तो डेफिनेटली आपकी जो आपके अंदर की कैपेबिलिटी है वो और भी बढ़िया होनी चाहिए ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर पाओ। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप इस लोन की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हो, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके, और आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो ये भी आपके पास आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर ये वाई आपका क्लियर होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट आप 12th नहीं बट 8 पास अगर आप हो तो भी आपको ये लोन मिल सकता है। आप युवा हो, कुछ करना चाहते हो, अपने सपनों की ओर उड़ान भरना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत। सुबह इस पे हमने पूरी बात करी थी विस्तार से। मोर डिटेल्स के लिए यू हैव टू गो माई इंस्टाग्राम आईडी, चेक इट आउट करो, वहां पे एक डीएम साहब की ऑफिशियल वाइट शेयर कर रहा हूं, सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे।

9 2 1 9 6, उसके बाद 0 2 0 6 5, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिए। आप जो है अच्छे से नोट कर चुके होंगे, तो बहुत अच्छी बात है।

और अभी मुझे जाना पड़ेगा भाई, जाने की इजाजत लूंगा। मोहम्मद कामिल साहब का मैसेज आया था हमारे पास और ये औरंगजेब जी गाना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल आपका गाना हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। अनुज भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिखते हैं अनुज भैया, हेलो जी, हमसे कोई नाराजगी है क्या? हेलो हाय, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्ले कर दीजिए। यार डेफिनेटली आपका गाना प्ले करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करो यार, मैं अभी बस जरा सी देर में आपका गाना प्ले करने वाला हूं और बाकी लोगों के गाने यहां पर मैं डेफिनेटली छोड़ के जाऊंगा और आप ऐसे ट्यून इन रहिएगा। मोहम्मद कामिल जी आपका गाना भी मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं 3 से 5 हेलो फरमाइश के जरिए। ओके जी, अभी लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, क्योंकि जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे। सी यू टुमारो मॉर्निंग, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। टिल देन टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम सेम जगह होगी मेरी आपकी मुलाकात।

मोहम्मद कामिल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्राम खेड़ा टांडा से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, साथ में लाइबा काजमी का नाम इन्होंने जो है शामिल किया है। इनको एक गाना सुनना है बहुत ही अच्छा, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, किसी कौन सी चीजें जो बोलने पे टूट जाती है। दिस इज राइट आंसर, खामोशी। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच गौरव टेलर जी एंड शुभा शिखा एंड साथ में इशिका एंड ये तनु मनु, इन लोगों ने भी राइट आंसर दिया था, और साथ में जुड़ी थी प्रियम वदा। थैंक यू सो मच, एंड गिनी जी आपने भी पार्टिसिपेट किया, थैंक यू वेरी मच। मैं फिलहाल यहाँ से जा रहा हूँ छोड़ के इस वंडरफुल गाने के साथ। बाकी आपकी मेरी मुलाकात कब हो रही है? कल सुबह हो रही है। आप ऐसे रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रेडियो बजाते रहिए। कुछ भी कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। अभी के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। बाय बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Hi, Dayanana ji. आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है.
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है. After all, उनका कहना है दूल्हे हम सजाएं.

0: Hey, you're tuned into FM Lalabha 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। मैं हूं आपका रेडियो वाला आनंद, और आप सभी को कहता हूं एक बार फिर से नमस्कार। जितने भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, आपको बता दें आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसका नाम है खेती किसानी, और एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं हूं आपका रेडियो वाला आनंद और आप सभी को कहता हूं एक बार फिर से नमस्कार। जितने भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, आपको बता दें आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसका नाम है खेती किसानी। और एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है, हमारे बीच में उपस्थित है बहुत ही खूबसूरत एक ऐसे लेजेंड जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है। हाँ जी, लास्ट टाइम भी उन्होंने तमाम सारी जानकारी दी थी हमारे किसान भाइयों को, तो मैं एक बार उनके बारे में बता दूं। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के सीनियर मैनेजर श्री ए के सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे
2: आनंद जी, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुनेंगे और या सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा चंबल फर्टिलाइजर की ओर से और मेरी ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार।
1: क्या बात है सर, आपकी आवाज़ सुनते ना मतलब ऐसे मुझे पुराने वाला अपना आकाशवाणी रेडियो याद आ जाता है। उसमें वो कृषि जगत कार्यक्रम आता था ना, तो उसमें जो हमारे जो उद्घोषक होते थे बिल्कुल आपकी तरह एकदम ठहराव के साथ सारी बातों को मतलब एक्सप्लेन करते हैं ना, जैसे ताकि हमारे किसान चीज समझ में आ सके। एक्चुअली
2: आराम से होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, आगे बढ़ेंगे और आज हम श्रोताओं ढेर सारी बातें आपसे करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और सर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो अनिल सर मैं सबसे पहले आपसे अपनी वार्ता के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का विषय बहुत खास रहने वाला है, भूमि स्वास्थ्य के सुधार के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। जी तो सर, पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि भारत सरकार वे उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, इसके संबंध में आप जानकारी दीजिए जरा।
2: बिल्कुल आनंद जी, भारत सरकार और जो उर्वरक मंत्रालय हैं, अगर हम कहें तो भारत सरकार है, उनके अंतर्गत सारे ही मंत्रालय आते हैं, उनकी जो है सारी ही जिम्मेदारी है।
1: हाँ जी।
2: और उसमें खेती बाड़ी भी एक जो अहम स्थान रखी है।
1: जी जी।
2: और क्योंकि खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, तो उर्वरक से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, सुझाव है, सलाह है, मार्गदर्शन

0: है
1: जी।
0: या सहायता है वो किसानों को अच्छे से मिलती रहे, ये भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहता है और जो इसी प्रयास के अंतर्गत अगर हम देखें तो जितने भी उर्वरक आज के समय में हमें उपलब्ध हो रहे हैं अपनी दुकानों पर
1: जी,
0: वो सब भारत सरकार के द्वारा ही उपलब्ध होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब भारत सरकार सीधे तो नहीं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मांग जाती है
1: हाँ जी,
0: हर एक सीजन की। जैसे कि हमारे यहाँ तीन सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद
1: जी जी।
0: तो अभी क्योंकि रबी का सीजन आरंभ होने वाला है तो हर क्षेत्र से राज्य सरकार इकट्ठा करती है कि भाई कौन कौन सी फसलें लगेंगी और उसमें जो उर्वरकों की आवश्यकता है वो कितनी होगी और किस किस समय पे होगी, तो भारत सरकार उसकी संज्ञान लेती है और जहाँ जहाँ पर उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर वो उसको एलोकेट करते हैं कि भाई आपने इस राज्य में अपनी फैक्ट्री से इतना उर्वरक इस समय पर इस स्थान पर भेजना है। अगर ऐसा लगता है भारत सरकार को कि जो मांग है हमारे जो सारे हिंदुस्तान की उसमें अगर कोई और आवश्यकता है तो हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट मतलब अन्य जो उत्पादन के केंद्र है जो कि हमारे भारतवर्ष में नहीं है, जो कंट्री है उनमें है, वहाँ से लेकर आते हैं और समय पर जहाज आते हैं तो जहाँ हमारे पोर्ट है वहाँ पर वो उर्वरक उतरता है, उसकी पैकिंग होती है। और मैं एक चीज और बता दूं, अब जितने भी उर्वरक आ रहे हैं उस पे कोई ब्रांड नेम नहीं होता। आयतित जो कंपनी है उसका छोटा नाम होगा और जो है और जो उत्पादन है जहां उत्पादन हो रहा है उनका नाम होगा और सब जो चीजें होती हैं वो जो भारत सरकार के नाम से ही आती हैं। तो ये विशेष रूप से सभी किसान भाई ध्यान दें कि कोई ब्रांड नहीं है और उसके पीछे उद्देश्य भारत सरकार का ये रहा कि कोई खास ब्रांड को लेके अक्सर ऐसा होता, बोलते भाई ये तो फलाना ब्रांड है तो ये तो ऐसे ही बिकता है, वो चीज को उन्होंने खत्म किया कि क्योंकि सारे उर्वरक एक जैसे हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया अगर किसी भी कंपनी का आता है तो एक जैसा ही है, उसके अंदर उतने ही पोषक तत्व हैं, सभी के अंदर एक बराबर होते हैं। डीएपी आता है या कोई एनपीके आता है या अमोनियम सल्फेट आता है तो उसके अंदर जो आपके पोषक तत्व है चाहे वो ए कंपनी लाए या सी कंपनी लाए, पोषक तत्व उतने ही सभी में समान हो। तो ब्रांड के नाम पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है सुविधापूर्वक और समान जो रेट पर उपलब्ध होती रहे, इसलिए भारत सरकार ने ये प्रबंध किया। अब एक और खास योजना है जिसे हम पीएम केएसके बोलते हैं
1: जी जी।
0: पीएम केएसके में अगर हम देखें तो भारत सरकार ने जितनी भी खाद के जो विक्रय केंद्र यानी खाद की दुकानें हैं
1: जी जी,
0: उनको पीएम केएसके का नाम दिया है। नाम दिया है इसके साथ साथ तो वहाँ पर वो जो दुकान है उसके ऊपर एक साइन बोर्ड भी होता है जिसमें पीएम केएसके लिखा होता है, प्रधानमंत्री जी का फोटो भी होता है। और वो इसलिए अहम हो गया है अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी हमारे किसानों को उपलब्ध होती हैं। जैसे खेती से संबंधित अगर उनको कोई सलाह चाहिए, जैसे कोई फसल उगानी है उसमें कौन सा बीज सबसे अच्छा है, कौन सा उर्वरक की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, कब कब उसका उपयोग करना है, इसके अलावा फसल में कोई अगर हरी बीमारी आ रही है, कीट आ रहे हैं या कोई रोग आ रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, अगर वो आ गया है हमारी जो मतलब खेत पे या मतलब फसल के ऊपर तो उसको कैसे जो है एक तरह से उसका प्रबंधन किया जाए जिससे कि हमारी फसल को नुकसान हो, ये सलाह मिलती है। और इन सलाह देने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि इनका साहित्य आपको मिल जाएगा, साहित्य मतलब जैसे लीफलेट होता है एक तरह से, कोई उस पर पूरी जानकारी लिखी होती है कि ये चीज है, ये उत्पाद है, ये इस चीज में पड़ेगा, ये खरपतवार नाशी है, इसकी इतनी मात्रा डालिए, इतना पानी मिलाइए, इस समय पर डालिए, तो ये पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध होता है, जैसे कि रबी फसलों के बारे में जानकारी है, वो राज्य सरकार की ओर से भी हो सकता है या जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने अपने आदान लेके आती हैं उनके भी साहित्य होते हैं। तो ये एक तरह से स्थूल सलाह है, आप दुकान पर गए हैं और वो आपको उपलब्ध होगी, आपने वहां से ले भी ली और अपने साथ भी लेके आप आ सकते। इसके अलावा आज की तारीख में क्योंकि फोन का जो आपका समय है वो आप समय चल रहा है, इंटरनेट है, तो आप फोन के द्वारा भी ऑनलाइन भी बहुत सारी जानकारियां जो उपलब्ध हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और उनको देखकर आप समझें। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आदमी अपनी ओर से कुछ कह रहा है तो उसको ऐसे मान लें, उसको समझें जरूर और अपने कुछ साथियों से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइटें जो कि भारत सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, कंपनियों की, वहां पर जो भी सलाह आपको दी जाती है वो पूरी तरह से प्रमाणिक हो, तो इस तरह से आपको सलाह मिलती है। दूसरा क्या है, संपर्क सलाह बोले अगर हम इसको, तो संपर्क सलाह नाम है ये है, जो कृषि के वैज्ञानिक वो आपसे संपर्क करेंगे या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के स्कूल है, जो एग्रीकल्चर का जो जो, जो जो आपकी राज्य सरकार है उनका जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सभी जो है एक तरह से जानकार लोग हैं जो कि खेती के बारे में आपको और अधिक सही सलाह वहाँ से उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि हर सीजन में कोई न कोई योजना जरूर आती है, योजना से संबंधित जैसे कोई अनुदान की आपकी योजना है कि जैसे बीज पे अनुदान मिल रहा है या किसी जो जो उपकरण है उनका जो इस्तेमाल होता है उनके ऊपर भी अदला, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी जो अधिक चर्चा होती है आनंद जी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इतने लाख रुपए का एक यूनिट पे योगदान है, आप लगाइए, उसके लिए एक जो मतलब प्रोसीजर है आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो आप उसका लाभ जो ले सकते हैं। तो पीएम केएसके के माध्यम से किसानों को सलाह और सही रेट पर उर्वरक और उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि ये जो पीएम केएसके की सेवाएं हैं इनका आप अवश्य लाभ उठाएं, जिनका खेती में लाभ होगा। और इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, अगर कोई दुकानदार हैं जो आपको ये सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनसे अनुरोध करिए कि आप ये उपलब्ध कराइए, और जब आप उनसे कहेंगे तो वो जो भी और संसाधन है जहाँ से ये सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो अवश्य ही वहाँ से इकट्ठा करके आप तक पहुँचाने का काम करें।
1: बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करी। और किसान भाइयों, ये जानकारी आपके लिए जानकारी नहीं है, वो चीज है जो आपको हमेशा उपयोग में आने वाली है, मैंने सही कहा ना एके सिंह जी?
0: जी बिल्कुल सही बात
1: जी। चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे सर, एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा दूसरा, और आज के सवाल भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोताओं। अगला प्रश्न है हमारा एके जी से, प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें आप।
0: हाँ प्रधानमंत्री जी, ये सवाल अगर हम इस तरह लें कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में
1: जी जी
0: जो उर्वरक है उनके सही इस्तेमाल के बारे में कहा है, जो कि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो आपको इसी संबोधन में उपलब्ध होगी, उनका आपको उनका संबोधन उपलब्ध होगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी और स्पष्ट करना चाहूंगा
1: जी।
0: कि जैसे कि अक्सर देखने में आता है कि हम देखते हैं कि कोई ने अगर अपने एक एकड़ खेत में इतना खाद डाल दिया तो मैं उससे ज्यादा डालूं तो मेरी फसल ज्यादा हो जाएगी, ये बहुत अनुचित है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि जैसे कि चार लोग रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं
1: जी जी,
0: हो सकता है उनकी उम्र एक हो, एक ही गांव से हो, लेकिन उनकी भूख अलग अलग हो सकती है,
1: बिल्कुल
0: उनके स्वास्थ्य की स्थिति अलग अलग हो सकती है, तो आप ये जब वो चार लोग हैं तो वो अपनी ओर से उनकी जो मतलब ऐसी कोशिश नहीं होती कि इसने अगर छह रोटी खाई है तो मैं भी छह खाऊंगा, वो देखते हैं भाई मेरा दो में पेट भर गया है और अब मैं नहीं खा सकता हूँ, तो वो रुक जाते हैं। लेकिन खेत के बारे में ये हम अगर कहें कि खेत में कोई आवाज तो सीधे आता नहीं है, तो हम देखते हैं कि जितना ज्यादा डाल देंगे उतना ज्यादा निकल आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, फसल उतना ही लेगी जितनी उसकी आवश्यकता है, बाकी वो बेकार चला जाता है।
1: सही बात है।
0: और जो चीज आपने जो पैसे से खरीदी है और वो बेकार चली जाए तो आप समझिए इसमें कौन सी समझदारी है?
1: बिल्कुल
0: कोई समझदारी,
1: कोई समझदारी।
0: तो इसलिए उर्वरक का जो उपयोग है उसके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि जितनी जरूरत है उतना डालिए, जब भी आप आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रासायनिक तत्व इनमें पोषण है और इनकी आवश्यकता भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इनकी उतनी ही मात्रा डालें जो कि फसल को उसकी जरूरत। अब अक्सर सवाल उठ जाता है कि भाई उतनी मात्रा का कैसे अंदाजा लगे, तो इसका एक तो सीधा तरीका है कि आप खुद अपने यहाँ पे प्रयोग करें, जैसे सपोज आपके तीन खेत हैं या एक खेत के तीन टुकड़े कर लें, एक में आपने सपोज जो है उदाहरण लें एक बैग डाला, एक में सवा बैग डाला, एक एक में जो दो बैग डाला, अंतर देख लें, अगर एक बैग वाले में ही आपको अच्छी उपज मिल रही है तो फिर हम दो बैग क्यों डाल रहे हैं, एक ये तरीका है। दूसरा ये मिट्टी परीक्षण के द्वारा, मिट्टी परीक्षण के द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे खेत को मैं जो फसल में लेने जा रहा हूँ, जैसे कि मान के चले कि हम गेहूं की फसल लेने जा रहे हैं, उसका लगाने का समय हमें पता ही होता है, बीज की मात्रा पता ही है, तो प्रति एकड़ उसमें उर्वरक की कितनी जो आवश्यकता होगी, हम उदाहरण के रूप में ले लें कि यूरिया है, यूरिया की कितनी आवश्यकता होगी, तो जब मिट्टी की जांच होगी तो उसमें ये देखा जाता है कि खेत में कितने पोषक तत्व, और फिर जो फसल हम ले रहे हैं उसको कितने पोषक तत्व चाहिए, तो उन दोनों का जब आकलन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक जो है जो सही मात्रा निकल के आती है कि गेहूं में कितना यूरिया हमें चाहिए, हम उसके हिसाब से चलें, तो ये दो तरीके हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। अगर मिट्टी की जांच की सुविधा उपलब्ध है आपके क्षेत्र में तो वो सर्वथा उचित है, उसको आप माने और उसके हिसाब से ही उर्वरक का उपयोग करें। तो आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि जो संबोधन है प्रधानमंत्री जी का
1: जी,
0: वो सभी किसानों को अवश्य सुनाए, उससे काफी उनको प्रेरणा मिलेगी। और उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आपसे अनुरोध किया है कि आप उर्वरक का जो इस्तेमाल है वो सही मात्रा में करें, क्योंकि जब भी आप अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारे खेत की जो मतलब मिट्टी है उस पर बड़ा ही उसका खराब प्रभाव पड़ता है, और खेत से संबंधित जितने जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है, और अंतोगत्तः हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी का संबोधन।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: सो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एके सिंह जी मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, प्राकृतिक संसाधनों से आपका क्या तात्पर्य है, इसके विषय में थोड़ा बताएं।
0: हाँ, बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधन हम कहें प्राकृतिक से अर्थ ये होता है जो अपने आप हमें बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं। प्रोसेसिंग ये है कि उद्योग में वो नहीं गया, किसी फैक्ट्री में नहीं गया, या हमने भी अपने हाथ से उसमें कुछ नहीं किया, तो जहाँ प्रोसेसिंग नहीं हुई है उसको हम नेचुरल
1: जी
0: ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्रकृति ने हमसे लिया। और प्रकृति कौन है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा प्रकृति है, खेत हमारे प्रकृति है, तो ये सारा प्रकृति है। अब प्रकृति में कौन सी चीज हमें आसानी से अपने आप मिल जाती है
1: जी सर,
0: और एक एक एक तरह से क्रम होता है उनका
1: जी।
0: जैसे कि मान के चले हमारे यहाँ गाय है या भैंस है, हमने उसको चारा खिलाया, अनाज खिलाया, प्राकृतिक रूप से उसने दूध दिया,
1: दूध दिया बिल्कुल,
0: और उसके प्राकृतिक रूप से ही उसने गोबर दिया,
1: गोबर दिया बिल्कुल सर।
0: तो गोबर एक हमारे लिए प्राकृतिक चीज हो गई है, दूध हमारे लिए प्राकृतिक चीज हो गई है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है कि अपने आप हुई और वो हमें उसके उत्पाद के रूप में प्राप्त हो ठीक है। उसके बाद जो हमारी हमने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद हमें क्या मिला, हमें अनाज मिला,
1: अनाज मिला
0: या फल मिला या फूल मिला, जिसके लिए भी हमने फसल लगाई थी
1: जी सर।
0: अब वो फसल खत्म हो रही है लेकिन उसका बहुत सारा भाग है जो इसमें अनाज नहीं है, जो कि हम हमारे लिए उपयोगी उस तरह से नहीं थी, लेकिन उसको हम फसल अवशेष बोल देते। अब वो फसल अवशेष है, उसके अंदर हमें ऐसा लगता है यार ये तो बेकार की चीज है, छूचा है, छूचा नहीं है वो। जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए उसमें ये पाया गया कि भाई जो फसल हमने उगाई वो जीवन काल में एक पौधे ने जितने पोषक तत्व लिए उसका लगभग 25-35% तो अनाज में चला गया या फल में चला गया, बाकी जो फसल के अवशेष हैं उनमें रह जा। तो हम मान के चले कि जो फसल अवशेष जिनको कि हम बेकार समझते हैं उनमें जो पोषक तत्व तो फसल ने पूरे जीवन काल में लिए हैं उनकी लगभग 60-70% मात्रा होती है। तो आप मान के चले कि जो पोषक तत्वों की कमी हमारे खेत में आई थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा फसल अवशेषों में पाया जाता है। चाहते हैं,
3: ठीक है,
0: दूसरा हो गया। तीसरी चीज ये है कि जो ऐसे पौधे जो कि उग रहे हैं लेकिन वो फसल का रूप नहीं है, हमारे खेत की मेड़ पे भी है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ वृक्ष होते हैं जिनकी हम एक तरह से छटाई कर उन हिस्सों को भी, उन्हें हम अवशेषी कह देते, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो ये श्रेणी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमारे घरों से निकलती हैं, जैसे कि सब्जी का कचरा हो गया, फल हमने खाए उनका छिलका हो गया, जो भी चीजें जो कि सड़ सकती हैं, जो एक अलग रूप में आ सकती हैं, जो कि हमारे खेती में समा सकती हैं, वो सारी ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आ जाती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे खेत के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। पहले हमारी जो खेती थी इसी पर ही आधारित थी, हम बाहर से बहुत ज्यादा उर्वरक या ऐसी चीजें नहीं लेके आते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे इनको भूल गए। लेकिन अब फिर एक ऐसा टर्न आ रहा है कि हम इनकी जो ताकत है उसको पहचान रहे हैं और उनके फायदों को हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमारी खेती में ज्यादा लाभ हो सके। इसके अलावा बहुत सारे हमारे तालाब होते हैं, हमारे जो पोखर होते थे ना, उनकी जो मिट्टी थी वो बड़ी उपजाऊ हुआ करती थी, प्राकृतिक रूप से बनी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, फिर उनका वहीं समापन हो जाता है, उनके अवशेष मिल जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जानवर उनमें जाते हैं, वो अपने शरीर के साथ बहुत सारे पोषक तत्व तो मिट्टी ऐसी चीजें लेके चले जाते हैं, वो उसी तालाब में बैठ जाती है। तो जब वो तालाब एक समय पर खाली होते हैं तो उसकी जो मिट्टी है उसका भी हम प्रयोग एक तरह से प्राकृतिक संसाधन के रूप में अपनी खेती में कर सकते हैं।
1: बहुत ही बेहतरीन। अनिल कुमार जी, इसी बीच एक और प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि खेती में प्राकृतिक संसाधनों का क्या स्थान है?
0: हाँ, प्राकृतिक संसाधन अगर हम देखें तो खेती एक तरह से प्राकृतिक ही जो पूरी तरह से प्रक्रिया है।
1: जी जी।
0: और अगर प्राकृतिक है तो उसमें जितनी भी प्राकृतिक चीजें हम देंगे उनसे हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। आज की समय में अगर हम ये सोचें कि हम सारी चीजें बाहर से लाकर, जो कि एक तरह से प्रोसेस हुई है, फैक्ट्रियों से बन के आई है, रासायनिक रूप भी है, उनसे ही पूरी खेती कर लें तो ये संभव नहीं होगा। अगर आप देखिए कि कोई ऐसे खेत हैं जिनका अंदर कोई जैव तत्व तो नहीं है, कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, कोई जीव नहीं है जो कि उसमें क्रिया करते हैं, तो आप कहें कि साहब मैं इसमें ये इतना खाद डाल देता हूँ तो फसल हो जाएगी मेरी, तो कहा जाएगा कि नहीं। जैसे कि हम लें कि बिल्कुल रेत ले लीजिए आप,
1: जी जी,
0: है ना, रेत में अगर हम देखें तो कोई भी जैव तत्व नहीं पाया जाता है, है ना, कोई भी जैव तत्व जो है उसमें
1: नहीं
0: जो पाया नहीं जाता, तो उसमें आप कितना भी खाद, अब उसमें पानी भी डालोगे तो ऊपर से डाला और नीचे से निकल जाता है,
1: बिल्कुल
0: वो नहीं रुकता वहाँ। और रेत वो नहीं है जो कि यहाँ पर जैसे हमारी जो छोटी छोटी रिवर है उनके आसपास है, रेत वो रेगिस्तान वाले रेत की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें तो क्योंकि जब तक तो थोड़ा बहुत होता है और वहाँ फसलें भी हम ले लेते हैं, पानी भी रुक जाता है, तो वो उसमें हम कुछ नहीं ले पाते क्योंकि प्राकृतिक तत्व उसमें नहीं पाए जाते। तो ऐसे में अगर प्राकृतिक तत्व हमारी जमीन के अंदर है तो हमें हम अच्छे से खेती कर पाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक तत्वों में धीरे धीरे कमी आ रही है, तो इन संसाधनों का इस उपयोग ही हमारी खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी रख सकता है। अगर हम इनका संरक्षण या उपयोग पूरी समझदारी से करें, तो संरक्षण से ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो लगातार हमें मिलते रहे, जैसे गोबर की खाद है, फसल अवशेष है, और हम जैसे फसल अवशेषों में अक्सर देखा जाता है कि यार बहुत कचरा इकट्ठा हो गया है, झंकार इकट्ठा हो गया है, तो बोले इसका समाधान है चलो तीली लाई हमने लगाई और सब खत्म हो गया। ये बहुत ही शॉर्टकट एक तरीके से जो तरीका है, और शॉर्टकट सिर्फ इतना है कि आपको अब वो दिख नहीं रहा है लेकिन आपने बहुत सारी चीज खो दी। जैसे कि अभी एक जगह मैं सुन रहा था, एक सज्जन है वो जो पर्यावरण प्रेमी है और इसमें बहुत काम करते हैं इस क्षेत्र में, उन्होंने कहा था कि जो एक पीपल का पत्ता, सूखा हुआ पत्ता आप देख के ये कह रहे हो अरे ये कचरा है बाहर फेंक दो, हो सकता है कि आज के समय में उसकी कीमत ही 50 पैसा हो,
1: बिल्कुल
0: एक पत्ते, उसके अंदर इतने पोषक तत्व हैं। तो आप देखिए कि इतने असंख्य फसल अवशेष हैं
1: जी,
0: अगर वो हम इस्तेमाल नहीं किए अपने खेत में, उनको हमने नहीं मिलाया, तो हम कितना बड़ा नुकसान जो कर हमारी ओर से हो जाता है। गोबर को हमने ऐसे ही फेंक दिया, उससे कितना नुकसान हो सकता है। हम उसको अच्छे से मिट्टी के अंदर दबाए, उसका 3-4 महीने में अच्छे से खाद बन जाता है, फिर उसको मिलाए, उसके साथ साथ हम और सारी जो ऐसी चीजें थी जो कि हमारे घर से निकल रही थी हम जिन्हें फेंक देते हैं उनको भी उसके साथ मिला दें, तो और अच्छा कंपोस्ट बन जाता है, जाता है। हम जो आपके जो मतलब प्राकृतिक संसाधन में जो भी ऐसी चीजें जो कि खेत में मिक्स हो सकती हैं, तो अगर हम ये कहें कि प्राकृतिक संस्था जो अपने जो संसाधन है वो खेती का लगभग मेरे हिसाब से 80-90% जो स्थान रखते हैं उसकी सफलता में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं हो। बाकी इसकी सफलता के लिए आप कोई उर्वरक दे रहे हैं, कोई और पोषक तत्व जो अलग से दे रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन 80-90% इनका स्थान है। अगर ये नहीं होंगे तो खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी, और अगर ये अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो सफलता की गारंटी है खेती।
1: बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आप लगातार हमारे श्रोताओं को हर एक एपिसोड में एक नई जानकारी दे रहे हैं, उसके लिए हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच मेरा एक और प्रश्न आपसे रहेगा, और प्रश्न ये है कि सर खेती में उपयोग होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है वो कौन कौन से हैं?
0: हाँ,
1: इसके विषय में आप,
0: हालांकि इसके बीच बीच में चर्चा भी हुई है।
1: बिल्कुल सर,
0: प्राकृतिक संसाधन

0: में हम जैसे कह दें कि जो हमारे फसल अवशेष है वो एक मुख्य संसाधन है और ये हमें अपने खेत में जो खेत की मिट्टी उसमें अवश्य मिलाना चाहिए
1: जी।
0: जो भी पेड़ पौधे हैं या जो झाड़ियां कभी कभी उग आती हैं
1: जी सर,
0: उनके भी जो अवशेष हैं वो हम अपने खेत में मिला सकते हैं।
1: ओके,
0: उसे उसका कंपोस्ट भी हम तैयार कर सकते हैं, फसल अवशेषों का कंपोस्ट भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पर जो पशु हैं, जो कि चाहे वो दूध देने वाले हों या ऊन देने वाले हों या कोई भी तरह से हों, उनके जो जो अवशिष्ट हैं, अवशिष्ट में जैसे गोबर है या बीट है, मेंगनी है, वो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो कि खेती के स्वास्थ्य को उत्तम रखने में अपना योगदान जो उनकी तरफ से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों में हमारी फसलें भी हैं। फसलों में जैसे मान के चले हरी खाद ढैचा है, या इसके अलावा बहुत सी ऐसी है जैसे मूंग है, उड़द है, ऐसी फसलें हैं, इनको एक अवस्था तक उगाकर अगर हम अपने खेत में जो मिला दें तो ये प्राकृतिक रूप से खेतों को ऊर्जा देने का काम करती हैं, उनको जीवन देने का काम करती हैं, जो करती हैं। तो हम ये कहें कि ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि तालाब की मिट्टी है वो अगर कहीं पे है वह भी काम करती है। जैसे कि खेत में आपको लग रहा है मिट्टी हल्की है और कहीं आपके ही पूरे रकबे में ऐसी जगह थी जहाँ पानी इकट्ठा होता था और वहां पर अगर वो सूखी है तो उस मिट्टी का भी आप प्रयोग जो कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधन के रूप में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जीव हैं, जैसे फिश थी या कोई और है, केकड़े हैं और भी हैं, वो भी उनका जीवन काल खत्म हुआ और उनके अवशेष भी उसी में मिल जाते हैं। तो फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो इस तरह से ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। अब बात ये आती है कि ये प्राकृतिक संसाधन है तो सही, लेकिन अब ये होंगे कैसे, इनको पैदा कैसे करें, तो उसके बारे में, क्योंकि अगर ये जैसा मैंने बताया कि ये इस जगह उपलब्ध होते हैं, इस तरह से उपलब्ध होते हैं, तो आप उनको उसी तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास रकबा अच्छा है तो वहाँ एक छोटा सा तालाब भी जरूर बनाएं, साल में नहीं तो दो साल में एक बार हरी खाद जरूर उगाएं। तो ऐसा इस तरह से आप इन संसाधनों को अपने यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या उपलब्ध करा सकते हैं लगातार। और आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके मकान से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जो खेत में मिलाई जा सकती हैं, उनको आप उपयोग में ला सकते हैं।
1: बहुत ही सही। इसी बीच सर एक छोटा सा प्रश्न और है, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे और कब करें?
0: हाँ बिल्कुल
1: जी,
0: जैसे कि फसल अवशेष है, जब फसल की कटाई होगी तभी अवशेष मिलेंगे।
1: बिल्कुल सर,
0: है ना। तो जो कटाई हुई, जैसे कि मान के चले कि खरीफ की कटाई हुई, धान की फसल की आपने कटाई कर ली और अब उसमें से बहुत सारा पुआल आपका निकल आया है,
1: ठीक है।
0: आजकल कभी कभी होता है कि पुआल का उपयोग पैकिंग में भी होता है तो बिक भी जाता है आपका, ठीक है। अगर आपको लग रहा है उससे कुछ लाभ आपको ज्यादा हो रहा है तो आप देख लें, अन्यथा वो जो पुआल है उसको आप एक साइड में रख लें, एक जो खड्डा खोदें उसमें उसका छोटे छोटे हिस्से करके उसको डालें, एक लेयर उसकी डालें, फिर एक लेयर उसके ऊपर गोबर को घोल के उसकी डाल दीजिए, फिर उसकी डालें, ऐसे पांच छह लेयर बना के उसको अच्छे से ढक दें। पहले वो गड्ढा ऊंचा सा होगा, दो एक फिट, धीरे धीरे वो बैठने लगा क्योंकि वो धीरे धीरे उसमें सड़ के एक अच्छे खाद के रूप में ले लेता है। एक तरीका ये है इसका, फसल अवशेषों का प्रयोग का। अब फसल अवशेषों का बहुत सारा हिस्सा आपके खेत में भी रह जाता है, तो अब हम सोचते हैं इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो हम सोचते हैं कि चलो आग लगा दो खत्म हो जाएगा, फिर हल चला के रोटावेटर से इसको खत्म। नहीं, आग मत लगाइए, अच्छी तरह से उसको रोटावेटर से आप जो मिलाएं और खेत की मिट्टी में मिक्स कर। पहले साल आपको कुछ ऐसा लगेगा कि भाई इससे थोड़ा सा मेरी फसल दाब खा रही है, क्यों कि खेत के अंदर हो सकता है कि जो उसको खाने वाले और फिर उसका खाद बनाने वाले जीव है उनकी मात्रा कम हो। धीरे धीरे उनकी मात्रा में साल दर साल इतनी अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी कि हफ्ते के अंदर ही वह अच्छे से सड़ के खाद का रूप ले लेगा। तो पहला तो ये है कि जो फसल अवशेष है इनका प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं, और धान ही नहीं, गेहूं के भी, और उड़द, मूंग, ईख जो लेते हैं अपने यहाँ पर, सुगर केन उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, उसके अवशेषों में भी। ईख में अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी आसानी से हम फटाफट आग लगा देते हैं, आग न लगाएं, तो हमें उसमें कुछ लगता है कि रोग बीमारी खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर खेत में हमारे अच्छे जीव हैं, हमारे मित्र जीवों की संख्या ज्यादा है तो शत्रु जीव अपने आप ही कम हो जाते। जैसे मान के चले कि सीमा पर अगर हम ये सोचे कि भाई हमने तो आग लगा दी, शत्रु जो अपने सारे भाग जाएंगे। लेकिन अगर हम सैनिकों की जो जो संख्या अधिक करते हैं तो शत्रु नहीं आएगा,
1: नहीं आएगा,
0: है ना। तो हमारे सैनिकों की संख्या जब ये जैव तत्व हम खेत में मिलाते हैं तो इस तरह से करें और उनको खेत में ही मिक्स करें, और अगर ज्यादा है तो उसको ले जाके उसको थोड़ा काट के या सीधे भी उसका कंपोस्ट बनाने का आप काम करें। कंपोस्ट और मैं जैसे फसल अवशेष है और गोबर है, ये दोनों चीजें आप जो मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप इन संसाधनों को उपलब्ध करा के और अपने खेत में उपयोग जो कर सकते हैं। अच्छा, इनका उपयोग जो है जैसे फसल अवशेष है तो इसका तो समय यही है कि जो फसल कटी उसके बाद करना है, लेकिन कंपोस्ट का प्रयोग कब करें? कंपोस्ट जब या जो मतलब जो गोबर की खाद है ये जब पूरी तरह से सड़ जाए, अब ये सड़ी है पूरी तरह से नहीं सड़ी इसको कैसे मालूम करें? तो ये गंधहीन हो जाता, चिपचिपापन इसका खत्म हो जाता, और ये हाथ में लेने पे आपको इसमें कोई भी बुरी ऐसा आपको नहीं लगेगा, भारापन से हल्का हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से जो सड़ गया है, अब जब भी आप इसको खेत में मिलाएंगे तो इसके अंदर जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनको फसल आसानी से लेगी और ये अच्छी तरह से खेत की मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें?
1: जी,
0: तो जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय इसको डाल दें और खेत की मिट्टी में अच्छे से मिला दें। रबी की फसल से पहले भी कर सकते हैं, हफ्ते भर पहले आप कर दें तो काम करेगा अच्छे से, और नहीं तो रबी की फसल कटने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही फसल कटती है उस समय इसको डाल दें और फिर खेत में रोटावेटर या कोई भी कल्टीवेटर है या हैरो है उससे अच्छे से मिला दें। अक्सर देखने में आता है कि पहले हम इस खाद का इस्तेमाल जो होता करते थे तो फसल कटी और खेत में हमने डाल दिया, इसकी ढेरियां लगा और ढेरियां लगा के इसको छोड़ देते, फिर करीबन जब एक दो महीने बाद जो खेत खाली था फिर हम उसको खेत के साथ मिलाते थे। ऐसा न करें, जब भी ढेरी आप खेत में खाली छोड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व तो सूर्य के ताप की वजह से हवा में उड़ जाते हैं और वो फसल वो हमारे खेत के लिए उपलब्ध नहीं हो। तो जैसे ही डालें वैसे ही उसको मिट्टी के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक तालाब वगैरह की मिट्टी है तो जब भी तालाब खाली हो थोड़ी सूखने लगे तो उसे जहाँ पर जमीन आपको हल्की दिख रही है वहाँ पर आप उसको मिला सकते हैं, उससे भी बहुत सारे पोषक तत्व हमें उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनके अवशेष का जहाँ तक जो इस्तेमाल की बात है तो उनको भी काट के हम सीधे खेत में भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो उसको जहाँ पे जो कंपोस्ट का गड्ढा है या गोबर की खाद बनाने का गड्ढा है उसमें हम उसको मिक्स।
1: बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो है श्रीमान जी आपने दी है हमारे किसान भाइयों को, ईके जी। एंड मुझे बहुत अच्छी चीज उसमें ये लगी कि जो हमारी पुआल होती है उसको हम कैसे उसका हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कैसे गोबर का लेर बना के एक ढेरा बनाए, फिर धीरे धीरे जब वो नीचे जाएगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग खाद बनेगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको सिर्फ ईके जी ही दे सकते हैं, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। सर, एक और प्रश्न रहेगा, ये आखिरी प्रश्न होगा मेरे और आपके बीच में, हमारे किसान भाइयों के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से क्या लाभ होंगे? हाँ, ये बताएं सर।
0: पहले तो ये हम देखिए कि मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के बात करता हूँ।
1: जी प्लीज।
0: अगर हम प्राकृतिक संसाधन उपयोग नहीं करेंगे तो उनसे क्या हानि होगी?
1: अच्छा,
0: हानि ये होगी कि जो प्राकृतिक संसाधनों की कीमत थी
1: जी जी
0: उनकी हमने कोई वैल्यू नहीं करी, उनको खत्म कर दिया।
1: करेक्ट,
0: नंबर एक
1: जी।
0: तो एक तरफ तो उनकी कोई कीमत नहीं समझी, उनको खत्म कर दिया, और फिर उसके उलट हम अनेक चीजें बाहर से लेके आ रहे हैं और उसको अपने खेत में डाले, उसमें बहुत सारा खर्चा कर, तो हमारे हाथ में जो सोना था वो हमने फेंक दिया और फिर हम पता नहीं कौन से सोने को लेने के लिए बाहर चले गए। तो आप देखिए, एक तरफ तो आपने अपना खत्म किया और फिर जो लेके आ रहे हो उसमें आप खर्चा कर रहे हो, तो दुगुना नुकसान हो गया। अगर आप अपने प्राकृतिक संसाधन को इस्तेमाल करते हैं तो आपके दुगने फायदे हो जाएंगे। जो चीज बेकार थी वो बहुत बड़े काम की है, आप उससे आपके खेत की ताकत बढ़ेगी, खेती में खर्चा कम होगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा, और खेत के आसपास सफाई रहेगी और आपका जो तनाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि जो बाहर से आप लेके आ रहे थे उसमें के खर्चे में कमी आ जाएगी। जैसे कि अगर हम अपने को स्वस्थ रखना चाहते, अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें और घर का बढ़िया साफ सुथरा खाना खाएं, जैसे घर में कोई जो मतलब युवा है वो बाहर जा रहा है तो माँ ने कहा या उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि भाई खाना खा जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो पिज्जा खा लूंगा, लेकिन ठीक है उसमें भी पोषक तत्व है, लेकिन पिज्जा के लिए आपको पैसा तो लगेगा कम से कम, लेकिन घर की चार चपाती, एक कटोरी दही और एक कटोरी दाल आप खा के जाएंगे तो मैं समझता हूँ 7-8 घंटे के लिए आपको भूख भी नहीं लगेगी, शाम को स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका बहुत कम खर्चा। इसी तरह से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हमें लगता है कि इनकी कोई कीमत नहीं है, वो बहुत कीमती है, इनका प्रयोग करें। और मैं आशा करता हूँ कि जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी प्राकृतिक संसाधन आपके यहाँ अछूता नहीं रहेगा, उसका आप अच्छा संवर्धन करेंगे और उसका उपयोग करेंगे और अपनी खेती में लाभ लेंगे।
1: बहुत ही बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। मैं हूं आपका रेडियो वाला आनंद और आप सभी को कहता हूं एक बार फिर से नमस्कार। जितने भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, आपको बता दें आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसका नाम है खेती किसानी। और एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है, हमारे बीच में उपस्थित है बहुत ही खूबसूरत एक ऐसे लेजेंड जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है। हाँ जी, लास्ट टाइम भी उन्होंने तमाम सारी जानकारियां दी थी हमारे किसान भाइयों को, तो मैं एक बार उनके बारे में बता दूं। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के सीनियर मैनेजर श्री AK सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे
0: आनंद
1: स्टूडियो
0: जी
1: में।
0: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुनेंगे और या सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा चंबल फर्टिलाइजर की ओर से और मेरी ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार।
1: क्या बात है सर, आपकी आवाज़ सुनते ही ना मतलब ऐसे मुझे पुराने वाला अपना आकाशवाणी रेडियो याद आ जाता है, उसमें वो कृषि जगत कार्यक्रम आता था ना, तो उसमें जो हमारे जो उद्घोषक होते थे बिल्कुल आपकी तरह एकदम ठहराव के साथ सारी बातों को मतलब एक्सप्लेन करते हैं ना, जैसे ताकि हमारे किसान भाई चीज समझ में आ सके। एक्चुअली
0: आराम से होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सर थैंक यू सो मच, आगे बढ़ेंगे और आज हम श्रोताओं ढेर सारी बातें आपसे करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और सर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो अनिल सर मैं सबसे पहले आपसे अपनी वार्ता के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का विषय बहुत खास रहने वाला है, भूमि स्वास्थ्य के सुधार के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। जी तो सर पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि भारत सरकार व उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं इसके संबंध में आप जानकारी दीजिए जरा।
0: हां बिल्कुल आनंद जी, भारत सरकार और जो उर्वरक मंत्रालय हैं, अगर हम कहें तो भारत सरकार है, उनके अंतर्गत सारे ही मंत्रालय आते हैं, उनकी जो है सारी ही जिम्मेदारी है।
1: हाँ जी,
0: और उसमें खेती बाड़ी भी एक जो अहम स्थान रखती है।
1: जी जी,
0: और क्योंकि खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल होता है तो उर्वरक से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, सुझाव हैं, सलाह है, मार्गदर्शन है या सहायता है, वो किसानों को अच्छे से मिलती रहे, ये भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहता है। और जो इसी प्रयास के अंतर्गत अगर हम देखें तो जितने भी उर्वरक आज के समय में हमें उपलब्ध हो रहे हैं अपनी दुकानों पर,
1: जी जी,
0: वो सब भारत सरकार के द्वारा ही उपलब्ध होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अब भारत सरकार सीधे तो नहीं लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मांग जाती है।
1: हाँ जी,
0: हर एक सीजन की, जैसे कि हमारे यहाँ तीन सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद।
1: जी जी,
0: तो अभी क्योंकि रबी का सीजन आरंभ होने वाला है तो हर क्षेत्र से राज्य सरकार इकट्ठा करती है कि भाई कौन कौन सी फसलें लगेंगी और उसमें जो उर्वरकों की आवश्यकता है वो कितनी होगी और किस किस समय पे होगी, तो भारत सरकार उसकी संज्ञान लेती है और जहाँ जहाँ पर उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर वो उसको एलोकेट करते हैं कि भाई आपने इस राज्य में अपनी फैक्ट्री से इतना उर्वरक इस समय पर इस स्थान पर भेजना है। अगर ऐसा लगता है भारत सरकार को कि जो मांग है हमारे जो सारे हिंदुस्तान की उसमें अगर कोई और आवश्यकता है तो हम बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं। इम्पोर्ट मतलब अन्य जो उत्पादन के केंद्र है जो कि हमारे भारतवर्ष में नहीं है, जो है और जो कंट्री है उनमें है, वहाँ से लेकर आते हैं और समय पर जहाज आते हैं तो जहाँ हमारे पोर्ट है वहाँ पर वो उर्वरक उतरता है, उसकी पैकिंग होती है। और मैं एक चीज और बता दूं, अब जितने भी उर्वरक आ रहे हैं उस पे कोई ब्रांड नेम नहीं होता।
1: ओके,
0: आयतित जो कंपनी है उसका छोटा नाम होगा और जो है और जो उत्पादन है जहाँ उत्पादन हो रहा है उनका नाम होगा और सब जो चीजें होती है वो जो भारत सरकार के नाम से ही आती है। तो ये विशेष रूप से सभी किसान भाई ध्यान दें कि कोई ब्रांड नहीं है, और उसके पीछे उद्देश्य भारत सरकार का ये रहा कि कोई खास ब्रांड को लेके अक्सर ऐसा होता, बोलते भाई ये तो फलाना ब्रांड ब्रांड है तो ये तो ऐसे ही बिकता है, वो चीज को उन्होंने खत्म किया कि क्योंकि सारे उर्वरक एक जैसे हैं, जैसे यूरिया है, यूरिया अगर किसी भी कंपनी का आता है तो एक जैसा ही है, उसके अंदर उतने ही पोषक तत्व हैं, सभी के अंदर एक बराबर होते हैं। डीएपी आता है या कोई एनपीके आता है या अमोनियम सल्फेट आता है, तो उसके अंदर जो जो आपके पोषक तत्व हैं, चाहे वो ए कंपनी लाए या सी कंपनी लाए, पोषक तत्व उतने ही सभी में समान हो। तो ब्रांड के नाम पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सारी चीजें जो सुविधापूर्वक और समान जो रेट पर उपलब्ध होती रहे, इसलिए भारत सरकार ने ये प्रबंध किया। अब एक और खास योजना है जिसे हम पीएम केयर्स के बोलते हैं।
1: जी जी,
0: पीएम केयर्स के में अगर हम देखें तो भारत सरकार ने जितनी भी खाद के जो विक्रय केंद्र यानी खाद की दुकानें हैं
1: जी जी,
0: उनको पीएम केयर्स के का नाम दिया है। नाम दिया है, इसके साथ साथ तो वहाँ पर वो जो दुकान है उसके ऊपर एक साइन बोर्ड भी होता है जिसमें पीएम केयर्स के लिखा होता है, प्रधानमंत्री जी का फोटो भी होता है। और वो इसलिए अहम हो गया है अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी हमारे किसानों को उपलब्ध होती हैं, जैसे खेती से संबंधित अगर उनको कोई सलाह चाहिए, जैसे कोई फसल उगानी है उसमें कौन सा बीज सबसे अच्छा है, कौन सा उर्वरक की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, कब कब उसका उपयोग करना है, इसके अलावा फसल में कोई अगर हरी बीमारी आ रही है, कीट आ रहे हैं या कोई रोग आ रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, अगर वो आ गया है हमारी जो मतलब खेत पे या मतलब फसल के ऊपर तो उसको कैसे जो है एक तरह से उसका प्रबंधन किया जाए जिससे कि हमारी फसल को नुकसान हो, ये सलाह मिलती है। और इन सलाह देने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि इनका साहित्य आपको मिल जाएगा, साहित्य मतलब जैसे लीफलेट होता है एक तरह से, कोई उसमें पूरी जानकारी लिखी होती है कि ये चीज है, ये उत्पाद है, ये इस चीज में पड़ेगा, ये खरपतवार नाशी है, इसकी इतनी मात्रा डालिए, इतना पानी मिलाइए, इस समय पर डालिए, तो ये पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध होता है, जैसे कि रबी फसलों के बारे में जानकारी है, वो राज्य सरकार की ओर से भी हो सकता है या जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने अपने आदान लेके आती हैं उनके भी साहित्य होते हैं। तो ये एक तरह से स्थूल सलाह है, आप दुकान पर गए हैं और वो आपको उपलब्ध होगी, आपने वहां से ले भी ली और अपने साथ भी लेके आप आ सकते। इसके अलावा आज की तारीख में क्योंकि फोन का जो आपका समय है वो आप समय चल रहा है, इंटरनेट है, तो आप फोन के द्वारा भी ऑनलाइन भी बहुत सारी जानकारियां जो उपलब्ध हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और उनको देखकर आप समझें। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आदमी अपनी ओर से कुछ कह रहा है तो उसको ऐसे मान लें, उसको समझें जरूर, और अपने कुछ साथियों से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइटें जो कि भारत सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, कंपनियों की, वहां पर जो भी सलाह आपको दी जाती है वो पूरी तरह से प्रमाणिक हो, तो इस तरह से आपको सलाह मिलती है। दूसरा क्या है, संपर्क सलाह बोले हैं अगर हम इसको, तो संपर्क सलाह में ये है जो कृषि के वैज्ञानिक वो आपसे संपर्क करेंगे या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं और एग्रीकल्चर के स्कूल हैं, जो एग्रीकल्चर का जो जो, जो जो आपकी राज्य सरकार है उनका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर सभी जो है एक तरह से जानकार लोग हैं जो कि खेती के बारे में आपको और अधिक सही सलाह वहाँ से उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि हर सीजन में कोई न कोई योजना जरूर आती है, योजना से संबंधित जैसे कोई अनुदान की आपकी योजना है कि जैसे बीज पे अनुदान मिल रहा है या किसी जो जो उपकरण है उनका जो इस्तेमाल होता है उनके ऊपर भी अदला, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी जो अधिक चर्चा होती है आनंद जी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इतने लाख रुपए का एक यूनिट पे योगदान है, अगर आप लगाइए उसके लिए एक जो मतलब प्रोसीजर है आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो आप उसका लाभ जो ले सकते हैं। तो पीएम केयर्स के माध्यम से किसानों को सलाह और सही रेट पर उर्वरक और उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि ये जो पीएम केयर्स की सेवाएं हैं इनका आप अवश्य लाभ उठाएं, जिनका खेती में लाभ होगा। और इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, अगर कोई दुकानदार हैं जो आपको ये सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनसे अनुरोध करिए कि आप ये उपलब्ध कराइए, और जब आप उनसे कहेंगे तो वो जो भी और संसाधन है जहाँ से ये सूचनाएं उपलब्ध हो सकती है वो अवश्य ही वहाँ से इकट्ठा करके आप तक पहुँचाने का काम।
1: बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करी। और किसान भाइयों, ये जानकारी आपके लिए जानकारी नहीं है, वो चीज है जो आपको हमेशा उपयोग में आने वाली है, मैंने सही कहा ना एके सिंह जी?
0: जी बिल्कुल सही बात
1: जी। चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे सर, एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा दूसरा, और आज के सवाल भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोताओं। अगला प्रश्न है हमारा एके जी से, प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में थोड़ी जानकारी।

0: ज्यादा खाद डाल दिया तो मैं उससे ज्यादा डालूं तो मेरी फसल ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत अनुचित है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि जैसे कि चार लोग रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं,
1: जी जी,
0: हो सकता है उनकी उम्र एक हो, एक ही गांव से हो, लेकिन उनकी भूख अलग अलग हो सकती है,
1: बिल्कुल,
0: उनके स्वास्थ्य की स्थिति अलग अलग हो सकती है। तो आप ये जब वो चार लोग हैं तो वो अपनी ओर से उनकी जो मतलब ऐसी कोशिश नहीं होती कि इसने अगर छह रोटी खाई है तो मैं भी छह खाऊंगा, वो देखते हैं भाई मेरा दो में पेट भर गया है और अब मैं नहीं खा सकता हूँ, तो वो रुक जाते हैं। लेकिन खेत के बारे में ये हम अगर कहें कि खेत में कोई आवाज तो सीधे आता नहीं है, तो हम देखते हैं कि जितना ज्यादा डाल देंगे उतना ज्यादा निकल आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फसल उतना ही लेगी जितनी उसकी आवश्यकता है, बाकी वो बेकार चला जाता है।
1: सही बात है।
0: और जो चीज आपने जो पैसे से खरीदी है और वो बेकार चली जाए तो आप समझिए इसमें कौन सी समझदारी है?
1: बिल्कुल
0: कोई समझदारी,
1: कोई समझदारी।
0: तो इसलिए उर्वरक का जो उपयोग है उसके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि जितनी जरूरत है उतना डालिए, जब भी आप आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रासायनिक तत्व, इनमें पोषण है और इनकी आवश्यकता भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इनकी उतनी ही मात्रा डालें जो कि फसल को उसकी जरूरत। अब अक्सर सवाल उठ जाता है कि भाई उतनी मात्रा का कैसे अंदाजा लगे, तो इसका एक तो सीधा तरीका है कि आप खुद अपने यहाँ पे प्रयोग करें। जैसे सपोज आपके तीन खेत हैं या एक खेत के तीन टुकड़े कर लें, एक में आपने सपोज जो है उदाहरण लें एक बैग डाला, एक में सवा बैग डाला, एक एक में जो दो बैग डाला, अंतर देख लें। अगर एक बैग वाले में ही आपको अच्छी उपज मिल रही है तो फिर हम दो बैग क्यों डाल रहे हैं, एक ये तरीका है। दूसरा ये मिट्टी परीक्षण के द्वारा, मिट्टी परीक्षण के द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे खेत को मैं जो फसल में लेने जा रहा हूँ, जैसे कि मान के चले कि हम गेहूं की फसल लेने जा रहे हैं, उसका लगाने का समय हमें पता ही होता है, बीज की मात्रा पता ही है, तो प्रति एकड़ उसमें उर्वरक की कितनी जो आवश्यकता होगी, हम उदाहरण के रूप में ले लें कि यूरिया है, यूरिया की कितनी आवश्यकता होगी, तो जब मिट्टी की जाँच होगी तो उसमें ये देखा जाता है कि खेत में कितने पोषक तत्व और फिर जो फसल हम ले रहे हैं उसको कितने पोषक तत्व चाहिए, तो उन दोनों का जब आकलन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक जो है जो सही मात्रा निकल के आती है कि गेहूं में कितना यूरिया हमें चाहिए, हम उसके हिसाब से चलें। तो ये दो तरीके हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। अगर मिट्टी की जांच की सुविधा उपलब्ध है आपके क्षेत्र में तो वो सर्वथा उचित है, उसको आप माने और उसके हिसाब से ही उर्वरक का उपयोग करें। तो आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि जो संबोधन है प्रधानमंत्री जी का
1: जी,
0: वो सभी किसानों को अवश्य सुनाए, उससे काफी उनको प्रेरणा मिलेगी। और उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आपसे अनुरोध किया है कि आप उर्वरकों का जो इस्तेमाल है वो सही मात्रा में करें, क्योंकि जब भी आप अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारे खेत की जो मतलब मिट्टी है उस पर बड़ा ही उसका खराब प्रभाव पड़ता है और खेत से संबंधित जितने जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य पे भी बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है और अंतोगत है हम लोगों के स्वास्थ्य पे भी खराब प्रभाव पड़ता है। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी का संबोधन।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
3: श्रोताओं एक बार फिर से आपका हम स्वागत करेंगे और हमारे स्टूडियो में आज बड़ी कमाल की शख्सियत मौजूद

0: है जी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिट के सीनियर मैनेजर श्री ए के सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। ढेर सारी बातें हम उनके साथ लगातार कर रहे हैं श्रोताओं। और सर इसी बीच में आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, मृदा स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है?
1: जी हाँ बिल्कुल जी। तात्पर्य से अर्थ है कि क्या अर्थ निकलता है, है ना, क्या अर्थ है इसके बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप?
0: जी बिल्कुल।
1: मृदा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में जब भी हम स्वास्थ्य उसके बारे में सुनते हैं, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य मतलब ये है कि जो हेल्थ है, जो भी चीज है वो उसकी क्या स्थिति है। जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करें, भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो या तो स्वास्थ्य ठीक है या ठीक नहीं है, या ऐसे ही चल रहा है यार कुछ अच्छा नहीं है, या हाँ ठीक है अच्छा भी है। मतलब स्वस्थ होने का अर्थ है कि जो क्रियाएं सामान्य रूप से होनी चाहिए वो अगर सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो ताकत उससे उपलब्ध होनी चाहिए वो पूरी ताकत उपलब्ध है, तो वह चीज स्वस्थ है। लेकिन जो चीज उससे हमें चाहिए और वो नहीं मिल पा रही, जो ताकत हमें उससे चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य में कोई रुकावट है। तो जहां हम जो मृदा स्वास्थ्य के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो उसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि खेत की जो मिट्टी है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जितनी हमें चाहिए उतनी है। जैव तत्व की मात्रा जो कि हवा पानी के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है, क्या वो उतनी है? और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं हमारे लिए वो चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि अगर मृदा स्वस्थ नहीं है तो हम उससे जितना उत्पादन लेना चाह रहे हैं उसमें रुकावट आ जाएगी। अब स्वास्थ्य में कोई एक चीज, एक पैरामीटर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कहें हम अपना खून जांच करवाते हैं
0: जी,
1: तो बहुत सारी चीज वो चेक कर लेते हैं, शुगर कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन कर लेते हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी विटामिनों की क्या स्थिति है, विटामिन डी की क्या स्थिति है, तो वो देखते हैं कि भाई पांच पैरामीटर सही है लेकिन चार खराब है, उसकी वजह से भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सारे पैरामीटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से खेत के अंदर जितने पोषक तत्व हैं, जैसे मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और आजकल तो सल्फर भी के पोषक तत्व में आ गया है, ये तो बहुत अहम होने चाहिए, इनकी पूरी मात्रा होनी आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ अनेक सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे जिंक है जी, कैल्शियम है
0: जी सर,
1: बोरोन है, तो ये भी उतनी ही मात्रा में जो कि पैरामीटर हैं जितना चाहिए खेत में उतना होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक की कमी है तो वो कोई और जो पोषक तत्व जो पूरी मात्रा में भी है लेकिन वो फिर फसल को अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे कि मान के चले कि हमारे पास एक कार है, कार में सारी चीजें बिल्कुल फिट है, इंजन सही है, तेल पड़ा है, बैटरी वगैरह, टायर टूर सब सही है, लेकिन टायर जहाँ पर आपका पहिया लगा है उसके बोल्ट गायब है
0: जी,
1: तो गाड़ी चलेगी
0: नहीं सर,
1: नहीं चले। इसी तरह से हरेक पोषक तत्व का अपनी संपूर्ण मात्रा में होना यह सुनिश्चित करता है कि हम अच्छा फसल उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन जब इनमें कमी होती है तो क्या होता है, हमें फसल उत्पादन अच्छा नहीं मिलता, फिर हमें अगर जानकारी नहीं है तो हम कुछ चीजों को ज्यादा देंगे और कुछ चीजें जो बहुत कम है उनके बारे में हमें कोई ध्यान ही नहीं होगा, तो स्वास्थ्य में वो और ज्यादा गिरावट आती चली जाएगी। जैसे कि मान के चले कि ये कहा गया आपके स्वास्थ्य को चेक कर के कि भाई कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज्यादा है, आपको लगा, तो अगर अब आपको ये नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इसको कम किया जाए, तो कम करने के लिए क्या है, आप हरी सब्जियां खाइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, ऐसी चीजें न खाएं जो कि इस चीज को और ज्यादा अधिक करते हैं। तो जब तक वो जानकारी नहीं होगी तो और ज्यादा स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। इसी तरह से खेत का जो स्वास्थ्य है वह हमारी खेती का एक मुख्य आधार है, और खेत का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और खेत जब स्वस्थ होता है उसमें सारा पैरामीटर सही होते हैं, तो खेत के अंदर जो मृत जीव हैं उनकी क्रियाएं भी बड़ी आसानी से हो पाती हैं, और जब उनकी क्रियाएं अच्छे से होती हैं तो हमें फसल उत्पादन में कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे ओर से वह जीव भी हमें बहुत सारा काम अपने आप ही करके दे देते। अब इसके बाद आता है जैव तत्व। जैव तत्व खेत के अंदर होना बहुत जरूरी है, उससे जो खेत के अंदर जो उसका स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है और सारी चीजों का समायोजन अच्छे ढंग से होता रहे, तो जो जमीन स्वस्थ है वो हमें अच्छा उत्पादन देगी, आसानी से देगी, क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट की। लेकिन अगर खेत का स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है तो हमें उत्पादन भी कम मिलेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा और हमें तनाव भी।
0: सर आपने सच में बहुत ही अच्छी जानकारी जो है बताई हमें मृदा के बारे में, और कैसे हम उसको आगे उसका ख्याल रख सकते हैं ये भी आपने बताया। और इसी बीच बीच मेरा प्रश्न रहेगा, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के क्या कारण है सर?
1: बिल्कुल, कारण देखें, अगर एक सबसे बड़ा अहम कारण ये है
0: जी जी
1: कि आपके पास एक आपने आपके पास एक अलमारी है जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो आपको पता है जब भी जरूरत हुई आप गए और आपने आवश्यकता के अनुसार उसमें से पैसे
0: निकाल लिए। बिल्कुल,
1: अगर आप निकालते ही रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन वो खाली हो जाएगी।
0: बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
1: तो आपने ये भी देखना है बीच बीच में कि भाई मैंने निकाला था, अब इसमें मैं उतने डालूं तो आगे के लिए मुझे मिलते रहेंगे। खेत के बारे में भी यही है हमारा, खेत की मिट्टी कोई असीमित भंडार नहीं है पोषक तत्वों का।
0: बिल्कुल सर,
1: इसमें भी सीमित मात्रा में है और हमें हमेशा उसका टॉपअप करते रहना चाहिए। अब टॉपअप की बात चली है तो आज का, क्योंकि आधुनिक जमाना है, फोन सभी के पास है, तो फोन में टॉपअप करते हैं ना, रिचार्ज करते हैं। तो वो करना खेत का बहुत जरूरी है। तो इसके मुख्य जो मतलब कारण है अपन उसके बारे में बात कहेंगे। सघन खेती मतलब एक के बाद एक फसल अगर हम ले रहे हैं लगातार और खेत को कोई आराम नहीं है, तो वो सारी फसलें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में लेती हैं लेकिन हम उनकी पूर्ति उतनी नहीं कर पाते। हमें लगता है कि जो हम उर्वरक दे रहे हैं उन्हीं से पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जैव तत्व है उसका खेत के अंदर, उसके और भी ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि सिर्फ उर्वरक से नहीं मिलते, बहुत सारे जो अन्य साधन है उनसे उपलब्ध होते हैं, उनकी अगर हमने पूर्ति नहीं करी तो उसमें गिरावट आने लगती। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है, जैसा कि अभी मैंने पहले कहा था कि अगर पोषक तत्व भी हम जितने चाहिए उतने नहीं दे रहे, कोई पोषक तत्व तो ज्यादा दे दिया, कोई हमने दिया ही नहीं, तो संतुलन जो है अगर हमने ये बनाए नहीं रखा तो कहीं न कहीं आप मान के चले खेत के स्वास्थ्य में गिरावट आनी आरंभ हो जाएगी। तो संतुलन बहुत जरूरी है। आजकल बोलते हैं ना कि जैसे आपकी खाने की थाली उसमें हर चीज होनी, हरी सब्जियां भी हो, दालें भी हो, रोटी भी हो और दही भी हो, रायता है या जो भी कुछ है, एक संपूर्ण आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो भी और न्यूट्रिएंट है वो सब होने चाहिए। इसी तरह से हमारे खेत को भी सारी चीजों की जरूरत होती है। अगर वो अत्यधिक मात्रा में निकलने लगेंगे और हम उनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं वो उसके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। दूसरा एक जो बड़ा अहम जो हमें लगता है कि खेत को कभी कभी आराम भी मिलना है। आराम क्यों मिलना है? आपके हिसाब आराम क्यों मिलना है? हमारी तो कार है, हम तेल डालते हैं और सर्विस कराते हैं, हमेशा चलाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार ठीक है, एक जो मैकेनिकल चीज है, लेकिन खेत मैकेनिकल नहीं
0: है।
1: खेत के अंदर असंख्य जीव होते हैं
0: जी जी।
1: तो अगर आप हमेशा खेती करते रहते हैं तो उनकी जो क्रियाएं हैं उनमें कहीं न कहीं रुकावट पैदा हो, तो अगर आप थोड़ा आराम देते हैं तो वो निश्चिंत भाव से उस खेत में अपनी क्रियाएं करते हैं और आपके खेत को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा। तो हमें कभी कभी बीच बीच में, हर साल नहीं तो दो एक साल बाद, 3-4 महीने के लिए खेत को आराम देना चाहिए। और या अगर हम आराम की हमें संभावना नहीं तो कुछ ऐसी फसल उगाएं जिसमें कि कृषि क्रियाएं कम से कम हो, न ज्यादा पानी देना पड़े, हमने लगा दी होती रहेगी, जैसे कि हरी खाद है और बहुत सारी ऐसी फसलें जैसे अरहर होती है, साल भर की अरहर होती है, 6 महीने की होती है, कुछ ऐसी फसलें होती है जिनमें हमें कुछ भी नहीं करना, हमने बीज डाल दिया और वो खड़ी है, तो इस तरह से भी हमारे खेतों को आराम मिलता है। तो ये हम जो नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से हमारे खेतों की जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है।
0: सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं पता था कि हमारे खेत को भी आराम चाहिए होता है, इस पूरे सेगमेंट के अंतर्गत पता लगा, क्योंकि शुरू से देखते आ रहे हैं खेत को हम एक उपजाऊ जमीन मानते हैं कि उसमें हम कुछ लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा, है ना, समय समय पर कुछ न कुछ अपनी खेती बाड़ी में हम करते रहते हैं। तो ये जो आपने एक मिथ है कि भैया जो हमारे मन में था ही नहीं कभी कि खेत को भी आराम चाहिए होता है, तो ये चीज जान के मुझे तो काफी अच्छा लगा। और बिल्कुल किसान भाइयों, आपको भी ये चीज शायद नहीं पता होगी जो आज हमें एके जी ने बताई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक और प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य गिरावट से क्या नुकसान है?
1: हाँ, नुकसान ये है
0: जी
1: कि अगर स्वास्थ्य आपका जो कमजोर है तो आपको हमेशा ये रहेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जो आपसे काम होना चाहिए वो नहीं हो। तो बिल्कुल सीधी सी बात पे आए तो जो फसल उत्पादन हम अपने खेत से लेना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा। जैसे मान के चले कोई एक फसल लगाई है, उसके एक एकड़ से हम 50 क्विंटल अनाज का उत्पादन लेना चाहते, तो वो 50 क्विंटल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसमें पोषक तत्वों की पूरी मात्रा नहीं है। अगर उसमें ही नहीं है तो वो फसल को या पौधे को नहीं दे पाएगी, और पौधे को अगर सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले तो उसका संपूर्ण विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो उसमें फूल और फल का उत्पादन भी उतना नहीं हो पाएगा, ना ही उसकी अच्छी क्वालिटी होगी। तो पहला नुकसान तो ये हो। दूसरा, अब इसकी भरपाई के लिए आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर दूं, तो आप दुकान पे गए और उन्होंने कहा यार ये खाद डाल दो, चाहे उसकी जरूरत है या नहीं है,
2: नहीं है।
1: तो वो आप उस पे आप खर्चा अधिक करें। अब जहां एक एकड़ में वो फसल उगाने के लिए आपके 5,000 खर्च होते थे, तो हो सकता है आप फसल को कमजोर देखें और हर बार कुछ न कुछ बाजार जाएं लेके आएं और डालें, तो हो सकता है 2 से 3 हजार रुपए और एक्स्ट्रा खर्च कर दें, तो 8,000 खर्च हो गए। तो एक तरफ तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है और एक तरफ खर्चा अधिक हो रहा है, तो जो इन टोटल में जो आपको फायदा होना चाहिए था उसमें और ज्यादा कमी आने की संभावना है। ये तो दो ऐसे हो गए कि जो दिखते हैं। तीसरा एक नुकसान बहुत ही स्वाभाविक है कि जब आपकी फसल ठीक नहीं होती तो आपको तनाव होता है, आप बोलते हो यार ये सब किया ये नहीं, तो आपका उससे लगता है कि यार खेती में क्या है, आपका जो एक सोच है उसमें नकारात्मकता आने लगती है। उस समय तो होती होती है, फिर आप लापरवाह भी होने लगते हैं, पर उसका कारण ये नहीं था जो आप सोच रहे हैं। इसका कारण सिर्फ ये था कि मृदा के स्वास्थ्य को अगर हमने ठीक रखा होता तो ये कोई भी इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आती। तो खेती में मृदा स्वास्थ्य का बड़ा ही अहम स्थान है। अगर खेत स्वस्थ नहीं है तो उसमें हमें जो मन चाहा उत्पादन नहीं मिलेगा, खर्चे हमारे अधिक होंगे, रोग बीमारियां भी ज्यादा
2: जी
1: रोग, क्योंकि कोई भी चीज अगर कमजोर है तो उसमें कीड़े भी ज्यादा आते हैं, उसमें बीमारियां भी ज्यादा आती हैं। सभी लोग आने, जैसे कि मान के चले कि कोई एक जगह है उसकी दीवारें जो कमजोर है, तो चूहे भी आ जाएंगे, बिल्ली भी आ जाएगी, सारी चीजें, चूहे आएंगे तो बिल्ली भी आएगी, बिल्ली उसे खाने के लिए आएगी और आपके लिए सारा उपद्रव खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सुरक्षात्मक उपाय किए हैं तो कोई भी वहां पर प्रवेश नहीं करेगा और सुख शांति जो बनी रहेगी। हालांकि उनका भी जीवन अहम है, वो अपना किसी और स्थान पर क्रियाएं करेंगे। तो इसी तरह से जो है एक मान के चलें कि भूमि का स्वास्थ्य आपकी खेती का एक सुरक्षा चक्र है, वह सुरक्षा चक्र अगर सुनिश्चित नहीं है, अगर वो कमजोर है, तो बहुत सारे नुकसान की संभावनाएं हमें खेती में आन पड़ती।
2: बहुत ही सही एके जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करूंगा। आप तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर, बिंदु पर जो है आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बीच में अगर बात करूं मृदा स्वास्थ्य में सुधार क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
1: सुधार कैसे करें, जैसे कि अभी आपने अभी तक सुना है बहुत सारी चीजें मैंने बताई कि की वजह से हमारे खेत का जो स्वास्थ्य है वो खराब होता
2: जी,
1: है। उसका उल्टा कर दीजिए
2: जी,
1: है ना। अब बात ये आती है उल्टे में होता है सघन खेती।
2: सघन
1: खेती हम रोक नहीं सकते आज
2: जी, जी, जी।
1: क्योंकि हमारी मांग है, खेत के आकार छोटे हो रहे हैं, फैमिली का साइज भी हमारा अलग अलग हो रहा है, फैल रहा है, तो हिस्से में जमीन कम है। सघन खेती आप करें, लेकिन कभी कभी खेत को आराम भी दें।
2: ओके।
1: उर्वरकों का जो उपयोग है वो संतुलित उपयोग करें। संतुलित उपयोग के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि खेत में आप ट्रायल कर सकते हैं, अगर नहीं तो मिट्टी की जांच कराएं, उससे सही उर्वरक की मात्रा उस फसल में जो देनी है वो जानें। तीसरा, खेत के अंदर जो जैव तत्व है उसकी पूर्ति अवश्य करें, उसके गोबर की खाद, हरी खाद, इनसे आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। साल में एक बार जरूर देवें, है ना। सिंचाई का पानी उतना ही इस्तेमाल करें, खाद, हरी खाद, इनसे आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। साल में एक बार जरूर देवें, है ना। सिंचाई का पानी उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है। कभी कभी क्या है, अगर पानी की हमारे यहाँ खूब अधिकता है तो हम रात को खोल के जो छोड़े आए ट्यूबवेल और पानी भरता रहा खेत में, उससे बहुत नुकसान होता है, फसल भी कमजोर होती है। जैसी फसल कमजोर, फिर आप कहते हो चलो अब इसमें यूरिया डाल देते हैं, तो वो गलत है
2: जी।
1: तो इस तरह से, और फिर फसलों को हेर फेर से बोएं, फसल चक्र अपनाएं, ये सब चीजें अगर आप करते रहे तो आप पक्का मान के चलिए कि भूमि का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा और उसके लिए आपको कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर स्वास्थ्य आपका खराब है तो उसमें आपको ज्यादा प्रयास करने चाहिए उसको ठीक करने तक। एक लेवल तक अगर आ जाता है तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको काम करना होगा।
2: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। मृदा के बारे में ढेर सारी जानकारी जो है आपने हमारे किसान भाइयों को हमारे रेडियो के माध्यम से दी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ मृदा का मतलब उसके क्या लाभ है, इसके विषय में जानना चाहूंगा।
1: आप देखिए, जो जैसे कि हमने कहा था कि नुकसान क्या है कि भाई उत्पादन कम होता है, खर्चा ज्यादा होता है, रोग बीमारियां अधिक आती हैं
2: जी जी।
1: लेकिन अगर आपके खेत की मृदा स्वस्थ है, उत्पादन अच्छा होगा, खर्चा भी कम होगा और रोग बीमारियां
2: कम आएंगी
1: तो इनसे संबंधित जो आपके तनाव हैं वो सारे दूर हो गए, खर्चा कम हो गया, उपज ज्यादा मिल गई, फायदा ज्यादा हो गया, सीधी सी बात है। तो जो सारी चीजों का एक समाधान कि लाभ का अर्थ ये कि निश्चिंततापूर्ण खेती आप कर पाएंगे, आप जो फसल चाहें वो आप ले सकते हैं, जितना उत्पादन चाहें आप ले सकते हैं और उससे अच्छा फायदा कमा सकूं।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर,
1: और आपका भी धन्यवाद आनंद जी,
2: बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आपने आज बताई इस वार्ता के माध्यम से कि भूमि स्वास्थ्य को हम कैसे सुधारें, और इस पे तमाम विषयों पर जो है आपने जानकारी दी, तो दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। और चलते चलते आपसे एक संदेश जो हमारे किसान भाइयों को आप एक सलाह देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के जरिए से।
1: जी हाँ बिल्कुल, मेरा सिर्फ यही अनुरोध है जैसा कि आज का विषय है
2: जी
1: कि स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहना चाहिए, हमारा खुद का, हमारे परिवार में जो सदस्य हैं उनका, या हमारे यहाँ पर जो पशु हैं।

0: जो कि दूध दे रहे हैं या जो भी है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमारे खेत का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अगर ये पूरा चक्र अच्छा रहेगा
1: अच्छा,
0: तो आप मान के चलिए कि जीवन में आनंद रहेगा, खुशियाँ रहेंगी और संपन्नता भी बनेगी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर मैसेज चलते चलते जो है सर आपने दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करता हूँ और एफएम मुरादाबाद भी आपको दिल से धन्यवाद कहता है। और श्रोताओं आपसे भी बस हमारी यही गुजारिश है कि आप ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए किसान भाइयों ट्यून इन रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन पे एफएम मुरादाबाद 89.6 में। ढेर सारी जानकारियां और गीत संगीत से जो है हम जुड़े रहते हैं आपके साथ ताकि आपको भी समय समय पर सारी जानकारियां मिल सके। आज चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के सीनियर मैनेजर श्री एके सिंह जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे, उनसे ढेर सारी बातें हुई। जल्द ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड में कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। किसान भाइयों अपना खूब सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए सुनते रहिए आपके शहर का अपना रेडियो। बाय बाय, नमस्कार।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
6: मुरादाबाद अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड स्टूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
7: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
6: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
8: हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो और आज का सवाल है, क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है? तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी?
9: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती है, अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी आपको क्या लगता है?
10: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी लाइक सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास यू नो कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे। सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
9: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई, कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए एकदम क्विकली। उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए ये ब्लिंकिट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, इवन यंगस्टर्स में भी। और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस, जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
11: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है, जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उससे खेलते थे, और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे, और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
9: आजकल तो आपको पता है, बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें। बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हम खो।
11: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उस पर कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
9: चीजें हमें अच्छी लगती थी।
11: और हम बच्चे खुद का मतलब, अब क्या है, इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो। और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है, वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे।
10: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे, और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप प्राची क्या कहना चाहते हो,
11: तुम बताओ पहले तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी। मैं तो सच बताऊं, मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं, दिवाली वगैरह, तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर में जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली, हैप्पी दिवाली, मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
10: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
11: हाँ, और जो साइकिल की जो टायर होती थी ना, उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी।
10: हाँ, वो चला,
11: हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
10: तुमने चलाया प्राची ऐसा वाला?
11: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
10: नहीं बढ़ती, और प्रॉब्लम्स कितनी है, छोटे-छोटे बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं।
11: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेकर जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
9: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जोड़ें, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं, अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी आप यू नो आप ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताएं,
12: नेचर से जुड़े।
13: दोस्तों, एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

तो दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें। उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें। आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

0: हां जी, वेलकम बैक है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं। और देखिए, जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए, अब क्या है, बच्चों को ना हम सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते, या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखकर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है, और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी जड़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है, ताकि उनको भी पता रहे। अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी,
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है। जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है, कोई आवाज नहीं लगा रहा, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: हाँ, तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है, बातचीत करता है, तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले आप उनको फोन मत दीजिए। एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं। इसीलिए 12th के बाद फोन दीजिए, क्योंकि पहले के बच्चे भी तो, हम सबने भी तो पढ़े हैं, यानी कि हम, सच बताऊं मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला, ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े है बिना फोन के, बिना ना, हमें भी तो नॉलेज है।
1: पर वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जिस जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: हाँ, इसीलिए
0: तो श्रोताओं, बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों, फूलों, तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए, क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: अंकित जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आज फिर से वुमेन राइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर वुमेन को पता होना बहुत जरूरी है। महिलाएं सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभालती बल्कि समाज और देश के निर्माण में भी उनकी उतनी ही बड़ी भूमिका है, लेकिन अपने अधिकारों की जानकारी होना उतनी ही जरूरी है जितना आपने सपना देखा हो। कानून महिलाओं को कई ऐसे अधिकार देता है जो उन्हें सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का हक दिलाता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सारे हक क्या महिलाओं को पता है उनके राइट्स के बारे में? तो इन्हीं राइट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो हमारे साथ कनेक्ट हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा सर। तो हम इनसे ही विमेन राइट्स के बारे में जान लेते हैं, महिलाओं के अधिकार कौन से अधिकार हर महिला को जरूर पता होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानून की मदद कैसे ले सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी। वैसे आप काफी टाइम के बाद फिर से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जरा।
1: देखिए, मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपके स्टूडियो में आने का, और जो आपका शो है लीगल टॉक, ये अच्छी अच्छी आप जो है लीगल जो है जानकारी हमारे ऑडियंस को, जो कम्युनिटी हमारे लिसनर्स हैं रेडियो के, उनको आप देते हो। लेकिन पिछले 2 वीक से मैं नहीं आ पा रहा था, कुछ थोड़ा सा कहीं मेरे को कुछ प्रायोरिटी के कुछ काम थे, तो उसके लिए मैं पहले तो अपने लिसनर्स से उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपसे नहीं जुड़ पाया। और जो है आज मैं आपके समक्ष दोबारा से आया हूँ और मैं एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली आजकल जो हम देखते हैं लेडीज के साथ अक्सर बहुत क्राइम बढ़ गया है और महिलाओं को जानकारी भी नहीं होती कि हमें किस तरीके से जो है अपने जो है हितों का ध्यान रखना है या लीगल जो उनके राइट्स हैं उसके बारे में। तो आज हम वुमेन्स राइट्स के ऊपर एक टॉपिक हमारा है, उसको लेंगे चाहेंगे कि रीना हमसे उस विषय में बात करें।
0: जी बिल्कुल सर, मैं हमेशा इंतजार करती रहती हूँ कि सर जब भी मौका मिले तो आए, और सर को जैसे ही मौका मिलता है वो आ जाते हैं हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, आप सभी के साथ बातें करने के लिए। क्योंकि देखिए, अक्सर हमें अच्छी अगर गाइडनेस का पता होगा, किस चीज के बारे में पता होगा, तभी हम डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, महिलाओं के लिए सबसे जरूरी कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं?
1: देखिए, महिलाओं के लिए जो ज्यादातर आपने सुना ही होगा कि आजकल जो घटनाएं होती है उनके साथ में घर में मारपीट है या शादी की वजह है, डॉरी से रिलेटेड है, या जो है उनको संपत्ति में हिस्सा है, भरण पोषण है, मेंटेनेंस है। तो बेसिकली महिलाओं को घरेलू हिंसा में से सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण, स्त्री धन संपत्ति, भरण पोषण, कार्यस्थल पर जहाँ पे आप वो वर्क कर रही है वहाँ पे हैरेसमेंट की बहुत घटनाएं सुनने में आती है, और साइबर अपराधों से संबंधित जो भी उनके राइट्स हैं उनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए।
0: साथ ही साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा क्या है?
1: देखिए, जब एक महिला घर में रहती है तो उसके साथ कभी ऐसा होता है कि घर में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ मारपीट होती है, तो केवल घरेलू हिंसा जो होती है केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अगर उसके साथ जो है कोई जो है मौखिक या उसको इमोशनल भी किसी तरीके का या कोई फाइनेंशियल उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है या कोई फिजिकल भी कोई उसको जो है मोलेस्टेशन कुछ अगर उसको हर्ट कर रहा है या उसके इमोशंस को, उसको फीलिंग्स को, तो वो भी एक घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है।
0: क्या केवल मारपीट को ही घरेलू हिंसा माना जाता है सर?
1: नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था मारपीट को ही घरेलू हिंसा में नहीं गिन सकते। अगर लगातार जो है घर में किसी महिला को अपमानित किया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है, आर्थिक रूप से उसे नियंत्रित करना या अन्य किसी प्रकार का व्यवहार भी परिस्थितियों के अनुसार कानूनी संरक्षण का आधार बन सकता है, तो ये सारी परिस्थितियां भी घरेलू हिंसा के दायरे में आती।
0: मानसिक प्रताड़ना होने पर महिला क्या कर सकती है?
1: देखिए, अगर किसी महिला को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है तो सबसे पहले तो ये कि उसको घटनाओं को क्रम में रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि कौन सी घटना किस दिन हुई। फिर अगर उसको एविडेंस कुछ मिल जाता है, उसको एविडेंस को सुरक्षित रखे वो, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार जो ऐसे पुलिस है या प्रोटेक्शन ऑफिसर है या महिला हेल्पलाइन है या न्यायालय से वो हेल्प मांग सकती है। अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है या महिला को लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, तो तुरंत 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुला सकती है।
0: और सर, जिसके पास फोन ना हो, उसे घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए, तो फिर कैसे कर सकते?
1: भाई देखिए, आपको अपने जो अड़ोसी पड़ोसी है उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप जो है पुलिस को सूचित करवाइए, तभी आपको हेल्प मिल पाएगी।
0: और कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर, घर में ही धमकी दे दिया जाता है।
1: देखिए, आजकल ये जो घटनाएं ये बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, है ना, घर में परिवार में जो आपसी मनमुटाव की वजह से महिलाओं के साथ जो एक शोषण की वारदात जो हो रही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे महिला को भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, या ऐसा कोई उसको अपना कोई नंबर उसको ऐसा एक नोट करके रखना चाहिए, जैसे अपना कोई घर का नंबर है या किसी फ्रेंड का नंबर है, पुलिस के नंबर पे आप तुरंत 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो जैसी आप कोई कानूनी मदद मांगते हैं तो हमारे जो जुडिशरी में जो महिला को वुमेन्स राइट्स जो उसको प्राप्त हैं तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस तुरंत उस केसेस में हेल्प करती है।
0: आर्थिक पर ताड़ना क्या होता है सर?
1: देखिए आर्थिक का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, जैसे कोई फाइनेंशियल अगर कोई आपको किसी तरीके से, उदाहरण के लिए अगर महिला की आय है उससे अधिक आर्थिक संसाधनों पे कोई अनुचित उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, या उसको जरूरी खर्चा कोई, जैसे भाई हस्बैंड की शादी होती है तो उसका दायित्व बनता है कि वो घर पे जो अपनी पत्नी का बच्चों का पालन पोषण करे, अगर उसको वो खर्चा नहीं दे रहा है या उसको रहने में खाने को पहनने को कपड़े नहीं दे रहा है, तो ये भी एक तरीके से आर्थिक रूप से जो एक निर्भर है उसके ऊपर महिला जो है अपने हस्बैंड के अपने पति के ऊपर, तो ये भी एक आर्थिक प्रताड़ना का शोषण के रूप में ऐसे माना जा सकता है, तो ये भी एक आर्थिक प्रताड़ना होती है, तो इसे आर्थिक एब्यूज भी कह सकते हैं हम लोग।
0: सर जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात होना, इस क्वेश्चन पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दहेज की मांग होने पर महिला क्या करे, क्योंकि ऐसा बहुत से घरों में देखा भी जाता है अभी भी।
1: देखिए दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, और अगर दहेज की कोई मांग करी जा रही है, प्रताड़ना करी जा रही है दहेज से रिलेटेड, तो आप पहले तो उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, परिस्थितियों के अनुसार पुलिस में शिकायत करिए, या उपलब्ध जो भी आपके पास कानूनी जो आपके पास राइट्स हैं उसको आप जो है फॉलो करिए, और जो है सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलूंगा कि दहेज ना ले ना दे, क्योंकि दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमारे समाज को दहेज मुक्त समाज बनाना है, आप बिल्कुल एक आदर्श विवाह करिए जिसमें जो है दहेज का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, बस यही मैं समझाना चाहूंगा।
0: क्या अभी भी है ऐसा सर कि जहाँ पे दहेज ना दिया जाता हो?
1: देखिए अभी भी प्रचलन है, लेकिन हमारे पास जो मोस्टली केसेस आते हैं दहेज का आरोप तो देखिए लगता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसे झगड़े हो जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, इस वजह से भी मोस्टली केसेस आते हैं कि लोग दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे लीगल राइट्स एक महिला को भी मिले हुए हैं, तो उसमें एक छोटी छोटी बात का जो एक कहते हैं कि बतंगड़ बन जाता है, छोटी छोटी जो बातों का बड़ा रूप हो जाता है, और उसमें क्या होता है कानून, जैसे महिला को अधिकार मिले हुए तो महिला उस अधिकारों के तहत वो अपने पति और परिवार वालों पे दहेज का केस दर्ज करा देती है, लेकिन अगर हम कई केसेस जैसे हमारे पास आते हैं, अगर हम उसमें काउंसलिंग भी करते हैं, पहले हम कोशिश यही करते हैं कि घर बस जाए, क्योंकि देखिए घर जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, टूटने को दो मिनट में आप तोड़ सकते हो। मेरे पास भी कई केसेस ऐसे आते हैं, तो हम लोग पहले काउंसलिंग करते हैं दोनों पक्षों की, हस्बैंड की भी करते हैं और वाइफ की भी उसकी करते हैं, लड़की पक्ष की भी करते हैं, तो उसमें जो मुद्दे असल में निकल के आते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे मोबाइल की वजह से लोगों में झगड़े आजकल बढ़ गए हैं, फिर जो है सबसे बड़ी चीज है दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, ठीक है, फिर कई जगह हमें आर्थिक तंगी को लेके भी मुद्दे मिले हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन असल वजह कुछ और होती है, और उसको क्योंकि लीगल राइट मिला हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि जो लड़की होती है या महिला पक्ष होता है वो जो है दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाना शुरू कर देता है। तो मैं यही बोलूंगा कि कानून अगर आपको दिया गया है, आपके हित के लिए दिया गया है, हितों की रक्षा के लिए दिया गया है, उस कानून को आप कवच बना के उसका मिसयूज ना करें, एटलीस्ट कम से कम।
0: बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है,
1: बहुत मिसयूज हो रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दहेज कानून बना हुआ है इसको एक लीगल टेररिज्म की भी संज्ञा दे दी है, मतलब एक वर्ड लीगल टेररिज्म तक यूज करा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप सोच सकते हैं कि घर टूटने का कारण कुछ और होता है, और उसको आजकल मुकदमों की इतनी बाढ़ आई पड़ी है, असल वजह जो कुछ और होती है, लेकिन वो उसको एक क्योंकि कानूनों का ऐसा मिसयूज भी कई बार हमें देखने को मिला है, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई भी बात है, अगर आपका रिश्ता बच सकता है तो आप कम से कम उसको काउंसलिंग के थ्रू या थोड़ा अपने परिवार जनों के थ्रू बैठ के उसको मैटर को रिजॉल्व करिए। जो आपको कानून दिए गए हैं वो वास्तव में पीड़ित लोगों के लिए दिए गए हैं। लेकिन देखने में ऐसा आता कि कुछ लोग सिर्फ इस चीज को मिसयूज करके सामने वाले पक्ष पे दबाव बनाने का काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
0: क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर चीज पक्ष लड़कियों की तरफ है, महिलाओं के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि जो पक्ष है उनकी तरफ, तो उसमें जो लड़के हैं तो उनकी भी मुझे लगता है कि सुनवाई होनी चाहिए सर।
1: बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए कई बार हमने देखा है कि अगर आपको कानून दिए एक पीड़ित के लिए दिए, जब कानून बने थे तो उस टाइम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, सब चीज

0: सकता है आपका परिवार बच जाए, लेकिन आप सबसे पहले असल चीज जो असल वजह है उसको आप जानिए। हाँ, आपको अगर कानून दिए गए हैं, आपको सरकार ने या जुडिशरी ने आपके लिए कोई कानून दिए हैं, तो आप उसका एटलीस्ट मिसयूज ना करें। और अगर वास्तव में आप पीड़ित है तो आपको जरूर कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, स्त्री धन क्या होता है?
0: देखिए, जब एक लड़की शादी होके परिवार में दूसरे परिवार में जाती है, तो उसको जो उपहार उसकी माँ की तरफ से, उसके मायके वालों की तरफ से, या जो उसको ससुराल की तरफ से जो भी उसे गिफ्ट, ज्वेलरी जो भी दी जाती है, उसको हम स्त्री धन बोलते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। तो महिला की शादी से पहले, शादी के बाद में मिले जितने भी उपहार हैं, आभूषण है, संपत्ति है, उन सबको हम स्त्री धन बोलते हैं। और उसका स्वामित्व जो है, महिला को अधिकार उसको मिल जाता है, ये उसी का होता है ये।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये राइट है उसका। अगर उसको गिफ्ट दिए गए हैं उसके परिवार की तरफ से या ससुराल की तरफ से, तो वो उसका राइट है, वो उसका है, वो स्त्री धन बोलते हैं।
1: मतलब वो बोल सकती है कि मेरा है।
0: हाँ, मेरा है नहीं, है ही उसका।
1: okay.
0: ये अधिकार है।
1: ओके सर, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा। स्त्री धन वापस नहीं किया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं उसने?
0: देखिए, अगर स्त्री धन वापस नहीं किया जा रहा है तो पहले आप गहनों और सामान की सूची, बिल, फोटो, बैंक रिकॉर्ड और अन एविडेंस जितने भी सुरक्षित रखें, वो सारा रिकॉर्ड लेके आप एक कानूनी नोटिस दीजिए, या पुलिस में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या न्यायालय के माध्यम से आप जो है मुकदमा भी पंजीकृत करा।
1: सर आपने पुलिस की ही नाम ली है, तो मेरा अगला क्वेश्चन भी यही है, पुलिस फायर दर्ज ना करे तो क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको पुलिस के उच्च अधिकारी है, सबसे पहले आपको चौकी को सूचित करना चाहिए। चौकी इंचार्ज अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आप एसएचओ को, थाने को संपर्क करें। थाने अगर थाना अध्यक्ष उस पर कार्रवाई नहीं करता तो आप उससे नेक्स्ट सीओ, जो सर्किल ऑफिसर है उस जोन का, वो आप संपर्क करें। अगर वहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप एसपी सिटी या एसएसपी के माध्यम से भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या महिला अकेले पुलिस स्टेशन जा सकती है?
0: जी बिल्कुल जा सकती है, महिला स्वयं शिकायत दे सकती है। जरूरत पड़ने पे वह परिवार के किसी सदस्य, अधिवक्ता या सहायता संगठन की भी मदद ले सकती है, ये उसका अधिकार है।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग सकती है?
0: जी बिल्कुल मांग सकती है, कानून में निर्धारित परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। जो भी अमाउंट है और जो भी उसका राइट है, मामलों के तथ्यों को, दोनों पक्षों को की आर्थिक स्थिति को सुनने के बाद, उसको देखने के बाद जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय जो ऑर्डर देगा, दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा।
1: सर हमारा अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस तय करते समय क्या देखा जा सकता है?
0: देखिए, मेंटेनेंस तय करते समय दोनों की जो है जीवन स्तर देखा जाता है, उनकी दोनों की इनकम देखी जाती है, उनकी परिस्थितियां देखी जाती है, और एक जजमेंट 2020 में या 21 में शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन दी थी, रजनीश वर्सेस नेहा, एक गाइडलाइंस, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि दोनों पक्षों की इनकम देखी जाएगी, उसके आधार पे दोनों पक्षों को अपना बैंक का 3 साल का ITR, ठीक है, उनके बैंक स्टेटमेंट्स, उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स है वो सब देनी होगी। उसको दोनों पक्षों को देखने के बाद, दोनों पक्षों की इनकम प्रूफ देखने के बाद ही कोर्ट संज्ञान लेके उसका डिसाइड करेगा कि कितनी मेंटेनेंस देनी है या नहीं देनी है। वो दोनों पक्षों की इनकम देख के ही होता है, क्योंकि अधिकतर हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं, जैसे अगर हम मेंटेनेंस का केस देखते हैं कि हस्बैंड की आमदनी तो कम है और जो है पत्नी क्लेम कर रही है जो है लाखों में
1: जी,
0: तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया पिटीशन में, आपने कुछ भी मांग लिया, वो कोर्ट से मिल जाएगा आपको। कोर्ट दोनों पक्षों का एविडेंस देख के, उसका आधार देख के, उसका जो क्या बेस है उसका, उसका इनकम प्रूफ देख के ही आगे डिसीजन लेती है। कई बार हमने ये भी देखा है, ऐसे भी केसेस आते हैं कि पत्नी की बहुत अच्छी जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है,
1: जी जी जी,
0: ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में आके बिल्कुल जो है क्लीन हैंड दिखा देगी अपने आप को और मेंटेनेंस मांगती है, तो ये गलत है, ये कोर्ट का कानून का मखौल उड़ाने वाली बात होती है। अगर कोर्ट के संज्ञान में आ गया तो कोर्ट आपके ऊपर एक्शन भी ले सकती है, इसलिए आपको कोई भी झूठा एफिडेविट कोर्ट में फाइल नहीं करना चाहिए, आपकी जो इनकम है आपको वही शो करनी चाहिए। और अगर आप इस तरीके से कोर्ट में अनक्लीन हैंड दिखा के अपने आप को जो है प्रेजेंट करेंगे तो ये आपके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, मैंने महिलाओं के केस में देखा है, अगर उनका कोई आपसी पारिवारिक विवाद हो जाता है हस्बैंड से, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अधिवक्ता के माध्यम से जो है वो कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि भाई हमारे इतने खर्चे हैं, ये हमें दिलाए जाए, वो दिलाए जाए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बिना चीजों को संज्ञान लिए या बिना चीजों को देखे ऐसी डिक्लेयर कर देता है, तो उस चीजों से भी बचना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी जुडिशरी जो है बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और खास तौर पर न्यायालय में

0: ये जो मैट्रिमोनियल केसेस है, पारिवारिक विवाद है, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको जो हमारा न्यायालय भी है वो बहुत गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे लोग क्या करते हैं, वो केसेस FIR लिखा देते हैं, दहेज की लिखा दी या मेंटेनेंस की लिखा दी। फिर लड़के वाले पक्ष की तरफ से भी कई बार क्रॉस FIR भी हमने देखने को मिली है। तो न्यायालयों पे एक बहुत ज्यादा केसेस का भार है, तो निश्चित तौर पे अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि हर केस को मॉनिटर करके, और स्पेशली जो है मैट्रिमोनियल केसेस को बहुत कम तरह से जांच हो रही है उसमें।
1: सर, अभी आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी है, जिस महिला की गवर्नमेंट जॉब होती है, तो मेरा इसी पे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए उस महिला का पति ही पढ़ा रहा है उसको, फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो बहुत से आपने केसेस देखे भी होंगे और आते भी है,
0: सोशल मीडिया पे भी आया था काफी,
1: कि तलाक दे देती है फिर बाद में, तो इसके लिए भी कार्रवाई की जाती है?
0: देखिए, तलाक तो देखिए दोनों पक्षों का आपस का एक म्यूचुअल रिकनसाइल का मैटर है। अगर उनको लगता है कि हम दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तो आप म्यूचुअली भी अलग हो सकते हो। कोर्ट, अगर आपके साथ क्रुएल्टी हुई है तो आप कोर्ट में सिद्ध करो, प्रूफ करो कि भाई मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो है वही गवर्नमेंट जॉब है महिला की, और हस्बैंड ने उसको पढ़ाया है और गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो देखिए कोर्ट को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि आपने जो है गवर्नमेंट जॉब उसकी लग गई और आप किसने पढ़ाया और क्या। कोर्ट बेसिकली जो आपने प्रेयर करी है, जो आपने रिक्वेस्ट करी है मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष, उस प्रेयर के अकॉर्डिंग वो कोर्ट, उसका डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है कि वो देखती है कि सपोज करिए किसी लेडी ने अपने पति से 2 लाख रुपए की मेंटेनेंस मांगी भरण पोषण के लिए, खर्चे के लिए, अब वो खुद ही 2 लाख रुपए महीने की सैलरी उठा रही है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तो ऐसे नहीं मिलता है।
1: अच्छा, नहीं मिलता है,
0: ऐसे नहीं मिलता है। वो कोर्ट प्रॉपर उसको एविडेंस देखेगी, ठीक है, फिर वो खुद भी जॉब कर रही है वो, तो कोर्ट सारी बातों को देखती है। और अगर वो ऐसे केसेस

0: वैधानिक राहतों के लिए वो आवेदन कर सकती है। और जो है तलाक के बाद भी अगर देखिए आपकी तलाक की तो पिटीशन में अगर ये सारी चीजें मेंशन है कि भी दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग रहेंगे और तलाक विवाह विच्छेद होता है और भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और वन टाइम अगर आपका सेटल्ड हुआ है तो देखिए आपका राइट सब वही खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: एलिमनी अगर आपने वन टाइम उससे ले ली, लेकिन अगर तलाक आपका हुआ है और उसके बाद भी आपने मेंटेनेंस की मांग की हुई है तो आपका राइट है, जब तक आपकी सेकंड मैरिज नहीं हो जाती या आप कहीं सेटल नहीं होती तो आपका राइट है, आप जो है अपने पति से आप मेंटेनेंस ले सकते।
1: सर दोनों की अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो तब भी महिला बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे खर्चे तुम उठाओगे तलाक के बाद।
0: देखिए मैंने आपको क्या बताया, आप कोई भी प्रेयर करते हो तो उसके साथ में आपको एविडेंस कोर्ट उससे मंगाती है, आपको बैंक स्टेट देने पड़े, आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपको मेंटेनेंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
1: ओके सर अगला क्वेश्चन है, क्या माँ बच्चे की कस्टडी मांग सकती है?
0: हाँ बिल्कुल मांग सकती है कस्टडी। कस्टडी का निर्णय केवल माँ या पिता के आधार पर नहीं होता, जो न्यायालय का प्रमुख जो विचार होता है वो बच्चे का वेलफेयर होता है, कि बच्चे का वेलफेयर होना चाहिए और मामले की परिस्थितियों को देख के कोर्ट जो है उसकी कस्टडी मदर या फादर किसी को भी दे सकती है।
1: ओके बच्चे की कस्टडी में क्या महत्वपूर्ण है?
0: देखिए बच्चे की जब कस्टडी मांगी जाती है तो जो कोर्ट देखती है सबसे पहले बच्चे की उम्र देखती है, उसकी जरूरतें देखती है, क्या उसकी नीड्स है, ठीक है, फिर उसकी एजुकेशन है, उसकी सुरक्षा है, उसकी देखभाल है, ओवरऑल जितने भी वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है या जो भी फैक्टर्स है उसको देख के ही कोर्ट आगे अपना डिसीजन दे।
1: क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिलता है?
0: देखिए हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत जो कॉपरेंसी प्रॉपर्टी में बेटी को बेटे के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, और हालांकि संपत्ति की जो प्रकृति है या जो पुराने जैसे ट्रांसफर जैसे केसेस होते हैं, तथ्य होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ बेटी का और बेटे का बराबर का अधिकार हो।
1: शादी के बाद बेटी का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार खत्म हो सकता है?
0: देखिए केवल शादी हो जाने से बेटी का वैधानिक संपत्ति अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि संपत्ति किस प्रकार की है और कौन से कानून अधिकार उस पर लागू होते हैं।
1: महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो क्या किया जा सकता है?
0: देखिए अगर उसको महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको संपत्ति के डॉक्यूमेंट और टाइटल की स्थिति देखनी होगी, उसको क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आप लीगल नोटिस दे सकते हैं, पार्टीशन सूट डाल सकते हैं या और जो कोई लीगल रेमेडी आपको मिली हुई आप उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकते हैं।
1: विधवा महिला के संपत्ति संबंधी अधिकार क्या है सर?
0: देखिए विधवा महिला के अधिकार से संबंधित जो है पर्सनल लॉ जो भी होते हैं और संपत्ति की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उत्तराधिकार में अगर उसका हिस्सा है तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स देखकर ही जो भी एक कानूनी स्थिति है वो हम बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे ही सारी चीजें चलती हैं।
1: क्या महिला अपनी संपत्ति की बिल बना सकती है?
0: हाँ समानता सक्षम व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में कोई भी बिल बना सकता है, उचित तरीके से अगर आप बिल तैयार और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो जरूरी होता है, तो कोई भी आदमी अपनी संपत्ति की बिल बना सकता है।
1: कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न पर क्या कानून है?
0: देखिए अगर वर्क आपका प्लेस है वहाँ पे अगर हैरेसमेंट का कोई केस आता है तो पॉश एक्ट 2013 अगर बनाया गया है उसमें अगर कार्यस्थल पे आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आप उसके तहत जो है आप जो है शिकायत कर सकते हैं।
1: हमारा अगला क्वेश्चन है सर, POSH का क्या मतलब?
0: हाँ वही मैं बता रहा हूँ, POSH जो पॉश एक्ट है उसका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये वर्क प्लेस पे ही किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये कानून उसी के तहत बनाया गया। इसका उद्देश्य ये है कि कार्यस्थल पे महिलाओं को सुरक्षित रखना और उनकी शिकायत को प्रक्रिया को समझ के और एक्शन लेना।
1: ऑफिस में इंटरनल कमेटी नहीं है तो क्या करें?
0: देखिए संस्था के जो संस्था का जो आकार है ये कह सकते हैं उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो है वॉल्यूम है और जो लागू कानून की रिक्वायरमेंट है जो भी कानून है उसके अनुसार अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी नहीं है तो उसके लिए आपको एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मतलब पूरे एक आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और संबंधित लोकल कमेटी या सक्षम जो भी अधिकारी के समक्ष उस शिकायत डेस्क एक आपको कंप्लेंट डेस्क बनानी पड़ेगी तो ये जरूरी है। ये
1: सर और ऑफिस की बातें हो रही है तो एक और क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस में अश्लील मैसेज या अनवांटेड एडवांस आए तो क्या करें?
0: देखिए कई बार केसेस कॉलेजेस में हमने देखा है कि भाई ऑफिस में ही वर्क प्लेस ऐसा होता है, वहाँ लड़के लड़कियां भी काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है मजाक करते हुए वल्गर मैसेज भेज देते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप उसका स्क्रीन शॉट लीजिए, ई मेल है उसको सुरक्षित रखिए, डिलीट करने के बजाय उसको एविडेंस प्रिजर्व करें, और जो

0: कंप्लेन मैकेनिज्म है उसका उपयोग करते हुए आप जो उसने भी आपको हैरेस करने की कोशिश करी आप उसके खिलाफ कंप्लेन करें।
1: सर कई बार व्हाट्सएप पे भी इस तरीके के मैसेज आते हैं
0: जी,
1: तो उस समय क्या करना चाहिए?
0: देखिए संदेशों को स्क्रीनशॉट्स को जो नंबर है जो चैट डिटेल्स है उसको आप सुरक्षित रखें और जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पुलिस को या साइबर क्राइम मैकेनिज्म में आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, निश्चित तौर पर एक्शन होगा।
1: हालांकि फोटो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर डाले तो उस समय हम क्या कर सकते हैं?
0: देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आपने, बहुत सारे आजकल केसेस आ रहे हैं, आपने सुना हुआ एक वर्ड डीप फेक।
1: डीप फेक हाँ जी हाँ जी।
0: तो डीप फेक क्या होता है, लोग क्या करते हैं आपकी फोटो को मिसयूज करके उसका वल्गर कंटेंट बना के और आपको डिफेम करते हैं, आपको जो है बदनाम करते हैं सोशल मीडिया पे। तो परिस्थिति और फोटो की प्रकृति जो है उसके आधार पर अगर प्राइवेसी और क्रिमिनल और साइबर लॉस लागू होते हैं उस पर तो आप उस एविडेंस को सुरक्षित रखिए और तुरंत कंप्लेंट करिए तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होगा।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन है साइबर स्टॉकिंग क्या है?
0: देखिए किसी व्यक्ति को अगर अनवांटेड आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहे हो बार बार, ठीक है उसको मॉनिटर कर रहे हो बार बार उसको, या उसको हैरेस करके हैरेसमेंट के माध्यम से आप उसको परेशान कर रहे हो तो ये साइबर स्टॉकिंग में आता है और ये एक तरीके का क्राइम माना जाता है।
1: निजी फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी मिले तो क्या करें, क्योंकि इसकी धमकी बहुत दी जाती है सर
0: आजकल। देखिए बहुत ऐसे केसेस आते हैं, बहुत साइबर जितने भी क्राइम्स होते हैं कि वो क्या करते हैं आपकी फोटो निजी फोटो जो हैक कर लेंगे, फिर उसको एडिट करके कुछ उसको ऐसा कंटेंट बना देंगे कि वो फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको किसी भी थ्रेट में नहीं आना है, ठीक है, जो पहले कोई भी पैसे ना दे ना किसी धमकी के दबाव में आए, कोई भी नया कंटेंट ना भेजें, स्क्रीनशॉट प्रोफाइल नंबर मैसेज जितने भी सुरक्षित रखें और तत्काल उसकी सूचना साइबर क्राइम में या पुलिस कंप्लेंट तुरंत करें।
1: अगर कोई फोन पर धमकी दे रहा हो तो सर?
0: देखिए फोन पर अगर धमकी दे रहा है तो आप पहले कॉल डिटेल पूरी उसकी सुरक्षित रखिए, मैसेज सुरक्षित रखिए, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखिए और खतरे की गंभीरता के अनुसार पुलिस को तत्काल सूचित।
1: सर एक जो मैसेज आप महिलाओं तक पहुंचाना चाहे, प्यारा सा संदेश जो आप विमेन को देना चाहें?
0: देखिए मैं बस आपसे जितनी भी मेरी माताएं बहने हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी कानून आपको दिए गए हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है आप खुद भी कानून का पालन करें, है ना। अगर आपके लिए कोई कानून दिए गए हैं तो वास्तव में पीड़ित के लिए हैं, आप पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए कानून है, उसको आप सजग रह के आप उसका जो है हेल्प मांग सकती हैं, लेकिन कानून का मिसयूज ना करें, बस मैं यही बोलूंगा मैं। और क्योंकि देखिए जो सरकार आपके लिए कानून बनाती है जुडिशरी बनाती है पीड़ित के लिए बनाती है, लेकिन हम लोग जैसे कोर्ट में देखते हैं मोस्टली जो है छोटी छोटी बातों पे लोग जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में एफआईआर करा देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो है वास्तविक जो जड़ झगड़े की वो जानना चाहिए, है ना। एक जो है हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में छोटी छोटी बातों पे जो आजकल मैं देखता हूँ कि तुरंत दहेज की एफआईआर हो जाती है
1: जी जी।
0: फिर लड़के पक्ष भी मारपीट की एफआईआर लिखा देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें रिश्तों में कटुता बढ़ती है। अगर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जहाँ बैठ के आप समस्या को सुलझा सकते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है।
1: बिल्कुल ये तो सही कहा सर आपने, क्योंकि कोई भी समस्या है अगर हम सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे तो मिल ही जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए श्रोताओं हम लेते हैं यहाँ से एक जाने की इजाजत और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी से। आई होप कि जितने भी विमेन हमें सुन रही हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला है, क्योंकि आपको राइट्स दिया गया है तो उसका सही तरीके से यूटिलाइज करिए, गलत तरीके से यूटिलाइज मत करिए। और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल प्रदेश की प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
4: जब मातृ शक्ति सुरक्षित सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी तभी माँ अति शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
3: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: From $10 trillion of GDP.
4: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 trillion की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 trillion की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 trillion की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
0: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
4: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
5: मटेरियल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट।
6: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1,500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारत में टीवी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीवी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीवी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीवी के खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
8: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और

0: अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश की प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
3: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
2: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है। और आज हम आप सभी के लिए एक बेहद खास इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि ट्रैफिक नियम के बारे में। यानी कि डीपली हमें पता होना चाहिए, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो हर चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो जरा सोचिए, लाल बत्ती हुई, आपने ब्रेक लगाया लेकिन गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से भी आगे निकाल दी। आपको लग सकता है कि भाई मैंने तो लाल बत्ती पर ही गाड़ी रोक दी, लेकिन असली सवाल है कहाँ रोक। सड़क पर बनी सफेद लाइन यानी स्टॉप लाइन सिर्फ सड़क की सजावट नहीं होती, सिग्नल पर गाड़ी को उस लाइन के पीछे रोकना होता है। लाइन के आगे निकाल कर रोकने से पैदल चलने वालों को रास्ते में भी परेशानी हो सकती है और ट्रैफिक का अनुशासन भी बिगड़ सकता है। अगर अगली बार आप गाड़ी रोके तो सिर्फ लाल बत्ती मत देखिए, अपने आगे की सड़क पर बनी सफेद लाइन जरूर देखिए, क्योंकि उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, सिग्नल का सम्मान सिर्फ रुकने में नहीं है, सही जगह रोकने में होती है। हाँ भैया, तुम किस ख्याल में खो रही हो?
5: नहीं, मैं किसी ख्यालों में नहीं खोई हुई हूँ। एक्चुअली आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अहम है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और सड़क पर बनी पीली लाइन देखकर क्या आप कभी सोचते हैं कि ये आखिर बनाई क्यों गई है? दरअसल रोड मार्केटिंग का हर निशान अपने अंदर एक संदेश रखता है। पीली लाइन कई जगहों पर इस बात का संकेत होती है कि वहाँ रुकना, पार करना या लाइन को पार करना प्रतिबंध हो सकता है, और इसका मतलब उस सड़क की स्थानीय व्यवस्था और लगे हुए संकेतों के हिसाब से समझाना जरूरी है। हम अक्सर ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, लेकिन सड़क पर बनी लाइनों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ड्राइविंग नियमों में रोड मार्किंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अगली बार सड़क पर पीली लाइन दिखे तो उसे सिर्फ रंग की लाइन समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। सड़क बोलती है, बस हमें उसकी भाषा समझ आनी चाहिए।
4: तो अब हम बात करेंगे, मोबाइल हाथ में है तो ध्यान सड़क से हट चुका है, यानी कि गाड़ी चलाते समय एक कॉल, एक मैसेज, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और बस 2 सेकंड के लिए नजर मोबाइल पर गई। लेकिन सड़क पर 2 सेकंड भी बहुत होते हैं। ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बात करने तक सीमित नहीं है। मैसेज पढ़ना, वीडियो देखना, स्क्रीन पर कुछ ढूंढना या मोबाइल की वजह से सड़क से ध्यान हटाना, ये सब आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कई लोग कहते हैं, मैं तो फोन नीचे रखकर चला रहा था। लेकिन अगर ध्यान फोन पर है तो ध्यान सड़क पर पूरा कहाँ है? इसीलिए गाड़ी चलाते समय फोन को हाथ से दूर रखिए। जरूरी कॉल है तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकिए। देखिए, अगर फोन का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे बाद में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सड़क पर लिया गया गलत फैसला कभी वापस नहीं आता है, तो इस चीज का भी आपने पूरा ध्यान रखना है।
5: और हाँ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि हेलमेट पहन लिया, अब हमारा काम खत्म? लेकिन हेलमेट सिर्फ रखना और हेलमेट को सही तरीके से पहनना दो अलग बात होती है। अगर हेलमेट का स्ट्रैप खुला है या ठीक से बंधा नहीं है तो दुर्घटना के समय हेलमेट अपनी जगह से हट सकता है। आपने हेलमेट पहना जरूर है, लेकिन उसका सुरक्षा फायदा कम हो सकता है। और एक बात, सिर्फ दिखाने के लिए हेलमेट पहनना और सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अलग बात है। बाइक या स्कूटी पर बैठने से पहले 3 चीजें चेक करें, हेलमेट सही से सर पर सही फिट है और स्ट्रैप लॉक है। हेलमेट सिर्फ सिर पर नहीं, जिम्मेदारी के साथ पहना जाता है एवरीवन। उसकी ये मत सोचिए कि बस इसे अब कुछ देर के लिए तो हमें जाना है, वो पहन लेते हैं, सर पे लगा लेते हैं, लेकिन नहीं एवरीवन, ये हमारी बहुत सुरक्षा करता है। तो कभी भी कहीं भी जाएं हेलमेट जरूर पहने, और जब आपके पीछे भी बैठे हैं उनको भी हेलमेट दीजिए।
4: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और साथ ही साथ एक बात भी तुमने देखी होगी कि जब पास में जाना होता है तो बोलते हैं कि यार यार पास में जाना है, चल आ जाओ एक ही बाइक पर, 3-3 चल लेते हैं। लेकिन
5: लोग जाते भी हैं ऐसे लोग, में हमने बहुत लोग देखे हैं।
4: बिल्कुल, अरे वो तो अभी भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत में 2 पहिए वाहन पर ट्रिपल राइडिंग सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है। अतिरिक्त व्यक्ति बैठने से बाइक का संतुलन, मोड़ लेने की क्षमता और अचानक ब्रेक लगने की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर 3 लोग बाइक पर बैठे हैं और रास्ता छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दुर्घटना दूरी देखकर नहीं आती। इसीलिए बाइक हो या स्कूटर, जितनी सवारी के लिए वाहन बना है उतनी ही सवारी रखें। और माता पिता अपने बच्चों को भी यही समझाइए, 2 मिनट बचने के चक्कर में 3 लोगों की जिंदगी खतरे में मत डालिए। देखिए, पता तो हर किसी को होता है, लेकिन इस चीज को फॉलो हम नहीं करते हैं। हम बाइक हो स्कूटी हो 3-3, 4-4 बैठकर चले जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी एकदम ब्रेक भी नहीं लगता है और इस गाड़ी को आप एकदम मोड़ भी नहीं पाते हो। इसीलिए सिर्फ 2 ही बैठे और तभी अपनी यात्रा को सुरक्षित रखें।
5: अब कार में बैठते ही ना सबसे पहले कौन सीट बेल्ट लगाता है? अक्सर ड्राइवर। लेकिन क्या पीछे बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है? सड़क दुर्घटना में चोट सिर्फ ड्राइवर को नहीं लगती, पीछे बैठे यात्रियों को भी अचानक झटका लग सकता है। इसीलिए कार में सफर करते समय सुरक्षा सिर्फ आगे बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार के साथ जा रहे हो तो बच्चों और पीछे बैठे यात्रियों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगली बार कार में बैठें तो एक छोटा सा नियम बना लीजिएगा। गाड़ी चलेगी तभी जब सभी अपनी सुरक्षा जांच लेंगे। सीट बेल्ट कोई सिर्फ चालान से बचाने की चीज नहीं है, ये सफर को सुरक्षित बनाने की आदत है। तो एवरीवन इस गुड हैबिट को जरूर फॉलो कीजिए।
4: क्योंकि जब भी आप गाड़ी में बैठते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाना होता है। जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी जरूर लगाना चाहिए। और साथ ही साथ एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसको रास्ता कैसे दे, क्योंकि उसको रास्ता देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले घबराना नहीं है और अचानक ब्रेक भी नहीं लगाना है। अपनी स्थिति देखकर सुरक्षित तरीके से रास्ता देना है। कई बार हम एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोशिश में दूसरी गाड़ियों के बीच फंस जाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि ड्राइवर आसपास की गाड़ियों को देखकर सुरक्षित तरीके से जगह बनाए। याद रखिए, एम्बुलेंस में बैठा व्यक्ति किसी का अपना है, किसी का पिता है, माँ, बच्चा या भाई हो सकता है। कभी कभी हमारे लिए सड़क पर सिर्फ एक वाहन होता है, लेकिन उनके लिए वही रास्ता जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता हो सकता है। इसीलिए रास्ता दीजिए और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़िए। घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक अच्छे से ड्राइविंग करना है और आसपास आपने देखना है तभी गाड़ी पार्क करना है। बीच में ये नहीं कि आपने जाके एकदम लगा दिया फिर आपको बाद में दिक्कत आए, तो वो चीज भी देखना होता है।
5: दोस्तों, रात में गाड़ी चलाते समय सामने से अचानक तेज सफेद रोशनी आई और कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, ये हाई बीम की रोशनी हो सकती है। हाई बीम का गलत इस्तेमाल सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों पर तीर चमक डाल सकता है और उसे सड़क देखने में परेशानी हो सकती है। खासकर रात में सामने से वाहन आ रहा हो तो ड्राइवर को अपनी लाइट का इस्तेमाल परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। याद रखिए एवरीवन, सड़क पर सबसे तेज रोशनी दिखाना मकसद नहीं है, सही रोशनी में सुरक्षित चलना मकसद है। इसीलिए रात में अपनी हेडलाइट को सिर्फ ज्यादा उजाला समझकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर इस्तेमाल करें।
4: तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट है इसी में, यानी कि छोटी सी चीज है। कुछ लोग गाड़ी के अंदर जगह बनाने या सजावट के लिए मिरर को ऐसे दिशा में मोड़ देते हैं कि पीछे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता है। अब सोचिए, पीछे से कौन आ रहा है, किस वाहन की स्पीड क्या है और कब लेन बदलना सुरक्षित है। अगर पीछे का दृश्य ही साफ नहीं दिखाई देता तो फैसला कैसे लेंगे? रियर व्यू मिरर का उद्देश्य पीछे की स्थिति को देखने में मदद करता है। इसीलिए गाड़ी चलाने से पहले मिरर को सही पोजीशन में सेट करें। सामने सड़क देखना जरूरी है, लेकिन सुरक्षित ड्राइविंग में पीछे भी खबर रखना उतना ही जरूरी होता है। तो इस चीज का भी आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर कनेक्ट होते हैं आप सभी से और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की जो सुई है वो बिल्कुल भी नहीं आपने घुमानी है, वरना बहुत सी चीजें आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि बातें यहाँ पर होती है। और अभी ट्रैफिक के बारे में, जो कि हमें अक्सर पता होते हुए भी हम गलतियां कर जाते हैं और कभी कभी हमें पता नहीं होता है, तो ये चीजें आपको यही मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, ढेर सारी बातों के साथ एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा म्यूजिक, ये प्यारा सा सॉन्ग आपने एंजॉय किया। दोस्तों, पार्किंग का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी पार्क कर दो गाड़ी, बस दो मिनट के लिए गाड़ी लगाई है। यही दो मिनट कभी कभी ना पूरी रास्ते का ट्रैफिक रोक देता है। सड़क के किनारे ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर देना जहाँ दूसरे वाहनों या पैदल लोगों का रास्ता बाधित हो रहा हो, सिर्फ आपकी सुविधा का मामला नहीं है। इससे एम्बुलेंस, स्कूल वाहन और दूसरे वाहन भी प्रभावित हो सकते हैं। पार्किंग करते समय सिर्फ ये मत देखिएगा कि आपकी गाड़ी फिट हो रही है या नहीं, ये भी देखिए कि आपकी गाड़ी से सड़क पर चल रहे बाकी लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। आपकी गाड़ी की जगह जरूरी है, लेकिन सड़क सबकी है, तो सबके बारे में सोचिए, सबका ख्याल रखिए और सही जगह गाड़ी को पार्क कीजिए।
1: और देखिए, आपने सड़क पर देखा भी होगा सफेद पट्टियां दिखाई देती है हर किसी को, और हम सोचते हैं बस ये जेब्रा क्रॉसिंग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं? क्या एक्चुअल में हमें इसके बारे में पता है? नहीं पता है तो अब पता लग जाएगा आपको। आराम से बस आप सुनते रहिए हमारा रेडियो। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए निर्धारित स्थानों में से एक है। ड्राइविंग को ऐसे स्थानों पर पैदल यात्रियों की मौजूदगी और सड़क पार करने की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। और पैदल चलने वालों के लिए भी संदेश है, जहां सुरक्षित क्रॉसिंग उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल करें और सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़े। कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं और यूं ही चलते रह जाते हैं तो वो दुर्घटना हो जाता है। इसीलिए जब भी आप क्रॉसिंग करते हैं तो आमने सामने बाएं दाएं जरूर देखना चाहिए। सड़क सिर्फ कार और बाइक वालों की नहीं है, पैदल चलने वाली यात्रियों का भी हिस्सा है और उनका भी हमें ध्यान रखना होता है।
0: रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दी किस बात की है? रेलवे क्रॉसिंग पर गेट बंद है और ट्रेन आने वाली है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं बस बाइक निकाल लेते हैं। यही जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। साथियों, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर गेट, सिग्नल या सुरक्षा व्यवस्था हो, वहां उसके निर्देशों का पालन करना जरूरी है। और हाँ, जहाँ अनग्रांडेड रेलवे क्रॉसिंग हो, वहाँ ड्राइवर की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ट्रैक पार करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई ट्रेन नहीं आ रही है। याद रखिए, ट्रेन आपके वाहन के मुकाबले बहुत भारी और तेज होती है। एक गलत अनुमान का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। रेलवे क्रॉसिंग पर एक मिनट रुकना बेहतर है, जिंदगी भर का पछतावे से ज्यादा अच्छा है।
1: और बहुत सी जगह, और आप देखते भी हैं जब बाहर जाते हैं, ट्रैफिक में होते हैं, यानी कि ओवरटेक करना है तो सिर्फ हॉर्न काफी नहीं होता है। सामने वाली गाड़ी धीमी है और आपको जल्दी है, आपने हॉर्न बजाया और निकल गए। लेकिन ओवरटेकिंग सिर्फ हॉर्न बजाने का नाम नहीं।

0: ओवरटेक करने से पहले सामने का रास्ता, पीछे का ट्रैफिक, सड़क स्थिति और सामने से आने वाले वाहन को देखना जरूरी है। ऐसी जगहों पर ओवरटेक करना खास तौर पर खतरनाक हो सकता है जहां दृश्य साफ ना हो। और सबसे जरूरी बात, दूसरे वाहन को अचानक काटकर अपनी लेन में वापस नहीं आना चाहिए। कुछ सेकंड के जल्दबाजी आपको आगे तो पहुंचा सकती है, लेकिन सुरक्षित तरीके से पहुंचना ज्यादा जरूरी होता है। इस किस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और कभी कभी सब ओवरटेक करने की बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी क्या बहुत से तो करते ही हैं, तो इसीलिए इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, अपने और अपने पीछे वालों का भी, गाड़ियों का भी ध्यान रखना होता है।
1: अब आपने बात की, ये ओवरटेक की बात की थी ना आपने, आप अपनी लाइन में चल रहे हैं और अचानक से दूसरी लाइन में चले गए। आपको रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे वाला ड्राइवर आपके मन की बात कैसे जानेगा। यही वजह है कि लाइन बदलते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल करना जरूरी है। इंडिकेटर दूसरे ड्राइवर को आपके इरादे का संकेत देता है, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर लगाना ही काफी नहीं है। मिनर देखकर और आसपास के ट्रैफिक सिचुएशन समझकर ही लाइन क्रॉस करें, क्योंकि इंडिकेटर ये नहीं कहता कि अब मैं बिना देखे मुड़ जाऊं। वो सिर्फ कहता है कि मैं दिशा बदलने वाला हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। इसीलिए इंडिकेटर लगाइए, मिनर देखिए और फिर सुरक्षित तरीके से लाइन चेंज कीजिएगा।
0: और कभी कभी हम इतने जल्दबाजी में होते हैं, इतने जल्दी में होते हैं ना कि शॉर्टकट कर लेते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं होता है, खतरा भी हो सकता है। इस चीज का भी पूरा पूरा अपने ध्यान रखना है। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा है और आगे टर्न दूरी है, और किसी ने बाइक गलत दिशा में निकाल दी, उसे लगा कि 2 मिनट बच गए, लेकिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग में सामने से आने वाले वाहन के साथ आमने सामने टकराने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर रात या मोड़ वाली सड़क पर सामने से आने वाला वाहन आपको समय पर देख भी ना पाए। गलत दिशा में चलाना सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ना नहीं है, दूसरे लोगों को भी अचानक खतरे में डालना होता है। इसीलिए चाहे रास्ता थोड़ा लंबा हो जाए, सही दिशा में चलाइए। शॉर्टकट अगर सुरक्षित नहीं है तो वो शॉर्टकट नहीं ले, क्योंकि वो रिक्सी हो सकता है आपके लिए। बहुत से करते भी इस काम को भैया कि चलो शॉर्टकट करना है, कर लेते हैं यहीं से, लेकिन इससे ये चीज नहीं करना है आपने, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है।
1: आगे वाली गाड़ी से दूरी क्यों जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। आगे वाली गाड़ी से आपकी दूरी सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपको उसका नंबर प्लेट दिखाई देता रहे। असल में सड़क पर अचानक कुछ भी हो सकता है। आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा सकती है, कोई पैदल व्यक्ति सामने आ सकता है, या सड़क पर कोई बाधा आ सकती है। अगर आपने बिल्कुल पीछे चिपकाकर गाड़ी चला रखी है तो आपके पास रिटेक का समय बहुत कम होगा। इसीलिए ट्रैफिक चाहे कम हो या ज्यादा, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त सुरक्षित दूरियां रखना समझदारी है। गाड़ी चलाना सिर्फ आगे देखना नहीं है, आगे क्या अचानक हो सकता है उसके लिए तैयार रहना भी जरूरी है।
0: और हाँ, स्पीड लिमिट को सलाह समझना भारी पड़ सकता है। सड़क खाली है, मौसम अच्छा है और ड्राइवर सोचता है आज थोड़ा तेज चला लेता हूँ, क्या ही जा रहा है, क्योंकि सड़क भी खाली है। लेकिन सड़क खाली होने का मतलब ये नहीं कि स्पीड लिमिट खत्म हो जाए। गति सीमा सड़क ट्रैफिक आसपास के क्षेत्र और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय की जाती है। स्कूल, बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाकों और मोड़ वाली सड़क पर खासकर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो गाड़ी चलाने से रिएक्शन टाइम कम हो सकता है और अचानक सामने आई स्थिति में वाहन रोकना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए स्पीड का मजा लेना है तो सुरक्षित तरीके से ले। सड़क रेसिंग ट्रैक नहीं है, यहाँ आपके साथ दूसरे लोगों की जिंदगी भी चल रही है, इसीलिए अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है।
1: हमारे शहरों में हॉर्न की आवाज इतनी आम है कि कई बार लोग बिना जरूरत के भी हॉर्न बजाते रहते हैं, लेकिन हॉर्न का इस्तेमाल दूसरी रोड यूजर को सावधान करने के लिए होना चाहिए, गुस्सा निकालने के लिए नहीं। एवरीवन, खासकर साइलेंस जोन या अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आसपास अनावश्यक हॉर्न दूसरों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आगे गाड़ी चल रही है तो हर 2 सेकंड में हॉर्न बजाने से सड़क खाली नहीं हो जाएगी। हॉर्न आपकी आवाज़ है, गुस्सा नहीं। जरूरत हो तभी इस्तेमाल करें और सड़क पर दूसरों की शांति का भी सम्मान करें। मैंने देखा है कि कुछ लोग ट्रैफिक में बार बार हॉर्न बजाए जाते हैं, खुद तो वो होते ही इरिटेट लेकिन सामने वाले पर्सन को भी कर देते हैं,
0: कुछ को मजा भी आता,
1: लेकिन मुझे
0: मजे के चक्कर में बजाते हैं वो।
1: ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। एंड प्लीज एवरीवन, अगर आप हमें सुन रहे हैं ना, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा और बाकी मुस्कुराते रहिए, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए।
0: मुझे लगता है कि वो हॉर्न नहीं बजाते हैं, शादी में ढोलक बजाते हैं ना, उसका काम करते हैं। और अब देखिए, मौसम जैसे खराब होए तो उस समय कैसे स्पीड रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यानी कि बारिश शुरू होते ही सड़क का रंग बदल जाता है, लेकिन क्या हम अपनी ड्राइविंग का भी बदलते हैं? बारिश में सड़क फिसलन भारी हो सकती है और विजिबिलिटी कम हो सकती है। ऐसे में सामान्य मौसम वाली स्पीड और डिस्टेंस हमेशा सुरक्षित नहीं होता। आगे वाली गाड़ी से दूरी बढ़ाना, अचानक ब्रेक या तेज टर्न से बचना और सड़क की स्थिति देखकर गति कम करना समझदारी है। और अगर पानी सड़क पर जमा है तो सिर्फ इसलिए आगे ना बढ़े कि सामने वाली गाड़ी निकल गई। याद रखिए, बारिश में सड़क वही होती है लेकिन उसके ग्रिप और विजिबिलिटी बदल जाती है। इसीलिए मौसम बदले तो ड्राइविंग स्टाइल भी बदल लेना चाहिए। ये नहीं कि मौसम अच्छा हुआ, छपा छप वाले पानी के फुहारे बौछारे मारते हुए भैया निकल लो, चाहे किसी के कपड़े गंदे हो जाए। इससे इसका जरा सा हमें ध्यान रखना है श्रोताओं। लेकिन फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक। देखिए, बातों के साथ साथ गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। ये मत सोचिए कि हम सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, हम गाना भी सुनवाते हैं। तो मिलते हैं एक प्यारे से गाने के बाद। तब तक के लिए बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। We'll be right back.

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और ये खूबसूरत सा शो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। गाड़ी में जगह बची हो तो लोग सामान भरते जाते हैं और फिर कहते हैं अरे थोड़ा ही तो सामान है, लेकिन ज्यादा वजन वाहन की हैंड लीडिंग को प्रभावित कर सकता है। ब्रेक लगाने, मोड़ लेने और वाहन को नियंत्रण करने में परेशानी हो सकती है। खासकर सामान ढोने वाले वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा वजन रखना सड़क सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है। वाहन जितना वजन सुरक्षित रूप से संभालने के लिए बनाया गया है उसी के अनुसार सामान रखना चाहिए। गाड़ी में जगह बची है इसका मतलब ये नहीं है कि वजन की भी कोई सीमा नहीं है। तो जब भी आप गाड़ी में कोई सामान रख रहे हैं तो उतना ही रखें जितना सामान्य है। अगर आपको लग रहा है कि स्पेस है तो और भर देते हैं, ये नहीं कीजिएगा। छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुश्किल ला सकती है, तो इन चीजों का ख्याल रखें।
1: हाँ, और सबसे जरूरी बात ये है कि नंबर प्लेट भी ट्रैफिक सुरक्षा का हिस्सा है। कई लोग गाड़ी खरीदने के बाद उसके लुक पर बहुत ध्यान देते हैं, स्टिकर, डिजाइनिंग, मॉडिफिकेशन, लेकिन नंबर प्लेट पर कम। जबकि नंबर प्लेट वाहन की पहचान का जरूरी हिस्सा है। अगर नंबर प्लेट गलत तरीके से लगी है तो पढ़ने में मुश्किल है, तो यह सिर्फ अपीयरेंस का मामला नहीं रह जाता। सड़क पर वाहन की पहचान साफ दिखाई देना जरूरी है, इसीलिए नंबर प्लेट को छेड़छाड़ करके फैंसी बनाने से पहले नियम जरूर समझें। गाड़ी आपकी हो सकती है लेकिन सड़क पर उसकी पहचान नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
0: गाड़ी चलाते समय लोग पेट्रोल देखते हैं, टायर देखते हैं, मोबाइल की बैटरी देखते हैं, लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स वो भूल जाते हैं। कई बारी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन से जुड़े जरूरी प्रमाणों की वैधता का ध्यान रखना भी ड्राइवर की जिम्मेदारी है। आज कई सेवाएं डिजिटल भी हैं और परिवहन जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन हर ड्राइवर को अपनी डॉक्यूमेंट्स की स्थिति और लागू नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। इसीलिए गाड़ी सड़क पर निकालने से पहले सिर्फ चाबी उठाना काफी नहीं है, गाड़ी की तैयारी में डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होने चाहिए।
1: आपकी गाड़ी बाहर से चमक रही है लेकिन ब्रेक ठीक नहीं है, टायर और हवा सही नहीं है, लाइट काम कर रही है, इंडिकेटर चल रहे हैं। रोड सेफ्टी में व्हीकल की कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी सेफ्टी गाइडनेस और ब्रेक्स, टायर, लाइट्स और सिग्नल की नियम जांच पर जोर देती है। कई बार हम गाड़ी में छोटी खराबी को नजरअंदाज कर रहे हैं, अगली सर्विस में देख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, अभी चलने देते जैसा चल रहा है, लेकिन सड़क पर छोटी खराबी भी बड़ी परेशानी बन सकती। इसीलिए महीने में कम से कम एक बार बेसिक सेफ्टी चेक की आदत जरूर रखें। जैसे आपको भूख लगती है, इनको भी भैया ठीक करवाना आपकी ही जिम्मेदारी है, तभी आपका ये साथ निभा सकती है गाड़ी। क्योंकि सुरक्षित ड्राइविंग सिर्फ अच्छे ड्राइवर से नहीं बल्कि अच्छी हालत वाले वाहन से भी होती है। इसीलिए इन चीज का भी आपने ध्यान रखना।
0: और दोस्तों, ट्रैफिक नियम सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बनाए गए हैं, सड़क पर हमारे साथ

0: बुजुर्ग हैं, दिव्यांग लोग हैं, पैदल यात्री हैं, साइकिल चलाने वाले हैं और दोपहिया वाहन चालक भी हैं। हर व्यक्ति की स्पीड और रिएक्शन अलग होते हैं, इसीलिए ड्राइविंग में सिर्फ अपने रास्ते के बारे में सोचना काफी नहीं है। अगर सामने कोई बुजुर्ग धीरे सड़क पार कर रहा है तो हॉर्न पर हॉर्न बजाने की बजाय उस व्यक्ति को आप सुरक्षित तरीके से रास्ता देना ज्यादा अहम है। एवरीवन, इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए और सड़क पर अधिकार सिर्फ आपका नहीं है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा समझदारी और थोड़ी इंसानियत, ये भी रोड सेफ्टी के जरूरी हिस्से हैं।
1: देखिए श्रोताओं, अब हमें आप सभी से ब्रेक लेते हैं क्योंकि अब हमारा यहाँ से छाने का टाइम हो गया है। हम आपको मिलेंगे कल, करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन जाते जाते चालान आए तो फर्जी लिंक से बचना भी जरूरी है। आजकल ट्रैफिक चैलेंज भी डिजिटल तरीके से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मोबाइल पर चालान के नंबर से मैसेज देखकर लोग तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन यही सावधानी जरूरी है। सड़क ई चालान व्यवस्था खुद लोगों को फर्जी वेबसाइट और ऐप से सावधान रखने की सलाह देती है। किसी अनजान लिंक पर जाकर पासवर्ड, ओटीपी या पेमेंट डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर चालान को लेकर कोई मैसेज आए तो उसकी जानकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करें। और याद रखिए, ट्रैफिक रूल तोड़ने से बचना जरूरी है, लेकिन फर्जी चालान के नाम पर ठगी से बचना भी उतना ही जरूरी है। सड़क पर सेफ्टी हेलमेट से शुरू होती है और ऑनलाइन सेफ्टी सही वेरिफिकेशन से शुरू होती है, इसीलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सही जानकारी लीजिए, तभी आप कोई भी लिंक पर प्रेस करिए, अदरवाइज नहीं। बाकी जो ट्रैफिक नियम है उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ आपके घर वाले भी इंतजार करते रहते हैं कि आप ऑफिस से निकल चुके हैं तो सही सुरक्षित आप अपने घर पहुंचे। मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में, अभी के लिए नमस्कार।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ, दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

0: आपको घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपके? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। क्यों मुरादाबाद वालों, बताओ बताओ श्रोताओं, कैसे हाल चाल है आपके? हाँ, मुझे पता है आप अपने कामों में व्यस्त हैं और कुछ तो आराम फरमा रहे हैं, इंतजार कर रहे थे शो का कि कब 3 बजेंगे और कब हम कॉल लगाएंगे। तो बेफिक्र होकर आप कॉल लगा सकते हैं क्योंकि आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, हेलो फरमाइश। ये फोन इन कार्यक्रम है जहाँ पर आप कॉल लगाकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और अपना फेवरेट गाना भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और यह है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:08।

और इस फिल्म का ट्रैक है बहुत ही प्यारा सा, आपको भी पसंद आएगा। लेकिन आप भी चाहते हैं ना कि आपकी पसंद का कोई भी गाना यहाँ पर हम प्ले करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट तो करना होगा। आई मीन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है एवरीवन। तो आप भी कॉल लगाइए और अपना फेवरेट गाना सुनती जाइए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशी, और बनाएंगे आपके दोपहर को और भी ज़्यादा खूबसूरत।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:15। हमारे साथ हमारी कॉलर भी कनेक्ट हो गए, उनसे भी बातचीत करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो अभी मुझे सुन रहे हैं इस समय, एंड एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से फ़ोन उठाइए और टाइप कीजिए हमारा ऑफिशियल नंबर 9837896896 और बात करते हैं अपनी कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? आयुब जी बात कर रहे हैं रामपुर से, बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं सर। आप बताइएगा, आज आप हमारी शो में कॉल किए हैं आपने, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज सॉन्ग है सड़क मिली है।
0: हाँ जी,
1: गाने के बोल हैं जब जब प्यार से चेहरा हुआ है।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गाना आपको। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक सुन लेते हैं अयूब जी की रिक्वेस्ट पर। और एवरीवन, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, बेफिक्र होकर आप कॉल तो लगाइए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे कॉल लगेगा। हाँ, आप कोशिश तो कीजिए, जब आप कोशिश करेंगे ना तो डेफिनेटली कॉल लगेगा आपका। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से कॉल लगाइए और फिलहाल अभी ये प्यारा सा गाना सुनते जाइए।

0: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आजकल फोन वाली दोस्ती जो है ना, वो बड़ी अलग हो गई है आजकल। मतलब क्या होता है ना, दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं होता है ना, लेकिन ऑनलाइन कौन है ये देखने का टाइम सबके पास है। और कुछ दोस्त तो ऐसे भी हैं जिनके मैसेज आए तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और कुछ का मैसेज देखते ही लगता है अरे भाई अब क्या काम पड़ गया है। मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम के सिलसिले से ही बातचीत करते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बातचीत करके बहुत हैप्पी फील होता है। जैसे मैं आपके साथ कनेक्ट होती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सीरियसली बता रही हूँ एवरीवन। वो खुशी ना मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना कुमार सानू जी, साथ में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम राजीव है मैम
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर?
1: मुरादाबाद, बुद्धि बिहार।
0: बुद्धि बिहार से, क्या करते हैं आप सर?
1: मैं लेक्चरर हूँ मैम।
0: ओ आओ, कहाँ पर?
1: यही आपके पास ही।
0: अच्छा, हमारे पास तो नहीं है आप
1: नहीं, आपके पास नहीं, लेकिन आपके पास ही है कॉलेज।
0: अच्छा, पास में ही कॉलेज है, ओके जी सर। और बताइएगा कैसे चल रही है आपकी लाइफ?
1: मत चल रही है मैम, आप बताइए।
0: हाँ जी, सब माता रानी जी की कृपा है, नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं,
1: आपके पूरे परिवार को
0: जी,
1: ऐसे ही ईश्वर सबको कुशल मंगल बनाए रखे।
0: बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। और बताइएगा, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल किया है सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: एक गाना है मैम, जिंदगी की तलाश में हम कहां आए।
0: ओके, और ये खूबसूरत से गाना आपको सुनवाते हैं हम, आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका।
1: ओके, थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं राजीव सर की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक एंड जिंदगी की तलाश में कहां आ गए हैं हम। बहुत ही प्यारा सा गाना है और इस खूबसूरत गीत को भी गाया है कुमार सानू जी ने। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। और हाँ, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है, इस पर जल्दी से कॉल लगाइएगा। और फिलहाल सुनिए खूबसूरत गीत।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी, आपका फेवरेट शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। देखिए ट्यूसडे का दिन है आज, बहुत ही खूबसूरत सा, और तारीख है आज 14 अक्टूबर की, एंड समय मैं आपको बता देती हूँ 3:33 हो गए हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। दोस्तों ये जो मौसम है ना, इसमें ना वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वायरल फीवर जैसे नॉर्मल फीवर हो रहा है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। सुबह शाम में हल्की गुलाबी गुलाबी सी हल्की सी ठंड रहती है, एंड उसके बाद 9 बजे के बाद जो टेम्परेचर चेंज होता है, कड़क वाली धूप निकल जाती है। तो इस मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें, और अगर किसी को जुकाम है, कोल्ड है, तो वो जब भी बाहर जाए तो मास्क ज़रूर पहने, ताकि जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं किसी और को ना, क्योंकि ये जो कोल्ड होता है ना, जब खांसी जुकाम होता है, तो ये अगर हम जैसे छींकते हैं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी वायरल हो, फीवर मतलब जल्दी से हो जाता है, इन्फेक्शन तुरंत कैच कर लेता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप को अगर जुकाम खांसी कुछ भी है, तो आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, दवाई लीजिए और मास्क पहनकर ही बाहर जाइए। बाकी स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। तो बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमदुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहा मैडम
0: जी। बताएगा सर, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: बहुत बढ़िया, अभी तो खेत में बैठे थे, गाने सुन रहे थे।
0: अरे वाह, खेतों में बैठकर गानों में सुनने का आनंद ही अलग है ना, चारों तरफ हरियाली, ठंडी सी हवाएं।
1: मैडम जी इधर काम करते समय हो या कोई भी हो, बैठने का, गाने सुनने का बहुत बड़ा मजा आता है।
0: जी जी जी, आनंद आता है। तो आप मुझे बताइएगा महाराष्ट्र का मौसम कैसा है सर?
1: महाराष्ट्र में तो बहुत गर्मी है, धूप है मैडम जी, पानी का तो लगभग 1 महीने के ऊपर होगा, बारिश नहीं, पहले भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ धूप काला पूरा चल रहा है, मरण की धूप लग रही है, या जंगल का जो चारा है जो भैंसों का खाने का वो सूख के जा रहा है।
0: जी जी जी।
1: नहीं, जिसकी बोर बावड़ी है तो वो चल रहे, बाकी नहीं कहाँ पर।
0: ओके, तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, बताएगा कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जो आपके मन को शीतलता दी?
1: नहीं, बस एक मनोरंजन यही बचा है गाने सुनने का, आप क्या है जो कुछ था वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप कैसा तो भी कोई शीतल हो या कोई भी हो, आप मन को तो बहलाना पड़ता है ना। तो
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: और काटे
0: हाँ,
1: कुमार सानू की आवाज है और अजय देवगन के ऊपर चित्र की थोड़ा उसमें एक गीत है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, एक कॉलेज की एक लड़की है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है।
1: वैसा कुछ भी नहीं है मैडम जी, लेकिन गाना सुनने में अच्छा है।
0: हाँ जी हाँ जी, हम समझ सकते हैं सर।
1: हाँ जी
0: जी, तो सुनवाते हैं गाना आपको, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका सर।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना कुमार सानू जी की आवाज़ में, और बैक टू बैक 3 गाने कुमार सानू जी की आवाज़ में मैं यहाँ पर तीसरा ट्रैक प्ले कर रही हूँ। देखिए एवरीवन, कितने मतलब कह सकते हैं कि दीवानगी है कुमार सानू जी की आवाज़ को लेकर, उनके हर एक गाने बहुत ही प्यारे हैं और हर गाने में एक अलग ही अंदाज़ है। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: आफ्टरनून, वेलकम है आपका एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और अब स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हुई है 3:45, 3:45। पता नहीं चल रहा है ना कैसे वक्त गुजर जाता है। ऐसा ही होता है जब कोई अपनी फेवरेट चीज़ हम करते हैं ना, चाहे वो हमारी हॉबीज़ होती हैं एंड सिंगिंग करना, डांस करना, कुछ भी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें हमारा ज़्यादा मन लगता है, रुचि हमारी होती है, तो उसमें वक्त का पता नहीं चलता है। और जैसे ही आपकी रुचि होती है ना, इतने दिल मतलब कह सकते हैं कि शिद्दत के साथ आप एफ एम मुरादाबाद को सुनते हैं और शो को इतना प्यार करते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया एवरीवन। तो चलो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है, वो कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार रेंगी
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं सुनील साहू, मधुसूदनगर, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
0: ओके बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मजा है रेंगी, और आपका मुरादाबाद सुन रहे हैं।
0: ओके तो बताइएगा सर, आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: आज मेरे मित्र पवन मिलाला की फरमाइश है आज।
0: बताइएगा क्या फरमाइश है।
1: पिक्चर का नाम है राधा का संगम।
0: ओके
1: और गीत के बोले मोरी सजनी का प्यार।
0: ओ वाओ, बहुत प्यारा गाना है।
1: दोस्तों को याद करना चाहूंगा।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बताइएगा।
1: गजराज सिंह लोधी है रेलाई से, रामनरेश प्रजापति रामनगर से, कैलाश सिंह राजपूत है बिटिया से, केकरी सिंह राजपूत है गोपाल ओझा जी है, दीपेन धाकर जी है, अमर सिंह ढील है, ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, नादका से।
0: ठीक है सर, मैं आप सभी की, आपके सभी जितने भी फ्रेंड्स आपको सुन रहे हैं एंड सबके साथ सुनवाती हूँ प्यारा सा गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत और आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने सुना ये गीत फ्रॉम द मूवी राधा का संगम। इस खूबसूरत गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने और साथ में सुरेश वाडेकर जी की खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी। और लिरिक्स थे हर्षद जयपुरी जी की। तो चलो बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, नमस्कार। और ठीक हैं आप?
0: हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइएगा, आप कैसे हैं सर? हाँ जी, कृपा तो भगवान जी की होती है और नवरात्रि भी चल रहे हैं, आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सर।
1: आपको भी।
0: जी अपना नाम बताइएगा आप और कहाँ से बात कर रहे हैं? विशालपुर मुरादाबाद से बात कर रहे हैं जी। बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: सुहाग फिल्म का गाना सुन रहा है, माता रानी का जो भजन है उसमें।
0: हाँ जी,
1: वो वाला गाना सुन रहा।
0: अच्छा, ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपको खूबसूरत सा ये गीत।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी सुहाग, जो 1979 में आई थी। बहुत ही खूबसूरत सा है एंड नवरात्रि स्पेशल।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ है और ये चल रहा है आपका अपना फेवरेट शो फरमाइशी कार्यक्रम। हेलो फरमाइश फोन इन कार्यक्रम है जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बातचीत तो करने का अवसर आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको अपना फेवरेट गाना सुनने का भी मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस चांस को, फटाफट से कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सुहाग से आशा भोसले, साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की खूबसूरत सी आवाज, लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और माता रानी सभी की बिगड़ी सवारती हैं, सभी की झोलियां खुशियों से भरती हैं, आप भी शिद्दत के साथ श्रद्धा के साथ सर को झुकाइए और जो माता रानी से आप चाहते हैं वो वरदान आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और किसी के प्रति कभी भी कोई गलत भावना मन में मत रखिएगा। चलिए भी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैडम जी।
0: आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैडम मैं ग्राम ऐसोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से तौफीक अहमद मंसूरी बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप बताएं कैसे हैं?
0: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप क्या करते हैं बताइएगा?
1: मैडम मैं सिलाई काम करता हूँ।
0: अच्छा, सिलाई का काम करते हैं, तो कैसा चल रहा है आपका वर्क सिलाई का?
1: हाँ मैडम अच्छा चल रहा है, और आपके प्रोग्राम सुनने लगातार।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं और साथ साथ अपने काम भी करते रहते हैं आप।
1: जी जी जी,
0: जी बताइएगा आज कार्यक्रम में आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: देखिए मैडम हमारे आचरण में काफी लोग आपसे जुड़े हैं और मतलब काफी लोग आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करती हैं।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
1: मैडम देखिए फिल्म बनाना हीरा रांझा, उसमें गाना है रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, कुछ बोलता मैडम?
0: हाँ जी बताइएगा।
1: जैसे हमारे बड़े भाई शरद मंत्री सफर कुमार सैनी है, सफर भाई मंत्री है।
0: अरे वाह, ये प्रैक्टिस करके रखिए कि आपने इतना सुपर फास्ट बोल दिया है। हाँ जी सर।
1: और साथ में आप?
0: अरे वाह क्या बात है, एक्सपर्ट बन गए आप तो अब।
1: जी जी जी,
0: चलिएगा सुनिएगा ये खूबसूरत से गाना। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका सर।
1: थैंक यू मैडम,
0: मोस्ट वेलकम सर। सर ने सांस भी नहीं लिया और फटाफट से सारी बात एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों आप भी कॉल लगाइए और बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, और कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ वो स्पेशल ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, उनका नाम भी जरूर बताइएगा।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आपने एंजॉय किया ये खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी ही रांझा से लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज़, और साथ में दे रहे थे साथ। मैं आपको बता देती हूँ, एवरीवन अनवर जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक था, लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के, खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन इस समय हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। नमस्कार सर। आपको भी नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, और आपका प्रोग्राम सुन रहा
0: है। जी धन्यवाद सर, आप बहुत एक्टिव रहते हैं एंड हम आपको देखते रहते हैं। हम कोई भी शो करते हैं एंड सभी प्रेजेंटर के शो में, आप प्रेजेंटर्स के शो में पार्टिसिपेट करते हैं, फटाफट से अपने आंसर देते हैं उनके, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: जी, 28 तारीख को विनर बना था आपका।
0: हाँ जी हाँ जी, मुझे मालूम है आप विनर बने हैं।
1: जी बहुत जल्द आपके स्टूडियो आने का मौका मिलेगा।
0: मोस्ट वेलकम सर, आप जरूर आइएगा, आपका वेलकम है। और आप मुझे बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम आपकी फरमाइश सुनेंगे और आपको ही डेडिकेट होगी।
0: अरे वाह, क्या बात है। हेलो फरमाइश में खुशी की फरमाइश फ्ली होने वाली है।
1: इसके साथ हम भी खुश होंगे।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
1: और मेरे साथ में गाना सुनना चाहते हैं?
0: हाँ जी,
1: माया देवी और दोनों बेटियां रितिक और आदित्य के संग।
0: ओके, तो आपके पूरे परिवार को भी हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत माता रानी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना, चलिए एवरीवन सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक। और ये गाना बहुत ही प्यारा है, ये ट्रैक आप सुनेंगे ना तो आप भी झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सबको थोड़ा सा झुमा देते हैं, है ना? तो आप भी तैयार है ना झूमने के लिए? चलिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा अपने रेडियो सेट का।

0: देखिए दोस्तों, आप झूमे थे ना, मुझे मालूम है गाना इतना प्यारा था और मुझे लगा कि थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे जो दोस्त हैं जिनको थोड़ी सी सुस्ती आ रही है, जो लेजी फील कर रहे थे, तो अभी वो एक्टिव हो गए होंगे, है ना। गाना इतना धमाशान जो था, श्वेता सिटी और साथ में हंस राज जी की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना। और म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद राज आनंद जी, लिरिक्स थे समीर जी के। मुझे फिल्म से ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना। और अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
1: भाई मंसूरी, ग्राम चोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर, बाघर वाली गली, मोहल्ला नंबर 2 से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप कैसी हैं?
0: मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ सर। आप बताइएगा, आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: बहुत बेहतर मौसम हो रहा है
0: जी,
1: गर्म और ठंडा दोनों रह रहा है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: दिन में गर्म।
0: हाँ जी, टेम्परेचर अभी चेंज हो रहा है ना, सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, मौसम करवट ले रहा है धीरे धीरे।
1: जी,
0: आप मुझे बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: एक गाना सुनवा दीजिए मैम, छोटी छोटी बहू फिल्म का।
0: हाँ जी,
1: मेरी बात हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो।
0: बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स है।
1: और ये कुछ दोस्त बैठे।
0: जी जी, बताइएगा।
1: दर्शन कुमार सैनी।
0: हाँ जी।
1: तौफीक मंसूरी, लईस मंसूरी।
0: ओके। हाँ जी, ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गीत। आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक। मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
3: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
2: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: hey, 89.6 FM।

0: हेलो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ आपकी खुशी। तो चलिए बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: फरमाइश
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: जी, मैं दर्पण कुमार सैनी काम पर से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: मैम हम ठीक हैं, आप सुना, सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, ऑल गुड, सब लोग बढ़िया हैं। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम फिल्म का नाम है हमारा खानदान।
0: हाँ जी।
1: मैम गीत का नाम है तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी है।
0: ओके।
1: जी मोहम्मद अजीज अनुवाद पटोल की आवाज में गाना है मुझे।
0: हाँ जी
1: जी
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: शुक्रिया मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौटकर हम वापस आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप हमें कॉल लगा सकते हैं और अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के कॉल लगाइएगा। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मंडे में कॉल किया है तो अभी कॉल ना कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए एंड नेक्स्ट मंडे ही आप कॉल कीजिए ताकि नए लिसनर्स को भी मौका मिल जाए।

0: हाय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश भी। वैसे आपको भी इंतजार रहता होगा ना कि पता नहीं नेक्स्ट कॉल किनका आने वाला है, क्या फरमाइश होगी। बहुत एक्साइटमेंट होता होगा ना, मतलब नए लिसनर्स को सुनने का। एंड उसी तरीके से ना हमें भी होता है कि अब नेक्स्ट कॉल हमारे कौन लिसनर कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या उनका नाम है, कौन सा वो गाना सुनना चाहते हैं। एंड हमें भी बेसब्री से आप सभी का इंतजार होता है। तो आप भी कॉल लगा सकते हैं, और कॉल लगाने में ना कोई भी कंजूसी मत करो, देख लो पर आप मिस कर देंगे बहुत कुछ। चलो अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप जी? बताइएगा क्या रिक्वेस्ट है आपकी, आज कौन से गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: तो फरमाइश है वो दिल मेरा घर जाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गाना आपको, आप इंजॉय कीजिएगा। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं हम ये प्यारा सा ट्रैक। जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में लुट गए हम पहली मोहब्बत में, बहुत ही प्यारा गाना है। और मैं वापस आती हूँ, तब तक आपको कहीं नहीं है जाना, रेडियो की सुनी को बिल्कुल भी नहीं है घुमाना। हौली हौली अगर आप अभी ड्राइव करें तो हौली हौली केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए आप सब बहुत प्यारे लगते हैं। तो मुस्कुराने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है? और हाँ, ये गाने का आनंद लीजिएगा। मैं वापस आती हूँ अभी।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना। आप बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर। जी क्या नाम है आपका सर?
1: हमारा नाम नहीं है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?

0: बोल रहा हूँ, पिंडल डेल से बोल रहे हैं
1: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब।
0: बढ़िया है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं जी रहे हैं
1: जी। चलिए अच्छी बात है, हमेशा स्वस्थ रहिए आप। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
0: हमारी फरमाइश है महेंद्र कपूर साहब की आवाज है
1: जी,
0: और गाने के बोल है, ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, कमों का डोर आए तो मुस्कुरा के जियो।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत है सर, सुनवाते हैं आपको
0: ठीक है सर।
1: जी। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।
1: तो चलिए विवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत सर की रिक्वेस्ट पर। और अभी कोई गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का तो हमें बिना किसी देरी के आप कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप कॉल लगा सकते हैं और अपना पसंदीदा गानों का आनंद ले सकते हैं। तो सुनिएगा ये खूबसूरत गीत, मैं वापस आती हूँ अभी।

0: Jonathan is...
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसुरत सा गाना, ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, गमों का दौर आए तो मुस्कुरा कर जियो। बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स एंड मीनिंगफुल ट्रैक था। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार। जी अपना नाम बताइएगा।
1: विकास
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं जी। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: गोरा और काला फिल्म की फरमाइश है
0: जी। बताइएगा इस फिल्म का कौन सा गीत सुनना है?
1: धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं।
0: अरे वाह, धीरे धीरे नहीं यार, तो लाउड बोलना पड़ता है सर, तभी तो हमारी ऑडियंस हमें सुन पाती है। ठीक है सर, सुनवाते हैं आपकी पसंद की गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद आपको
0: जी। तो चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं प्रकाश जी की रिक्वेस्ट पर ये प्यारा सा ट्रैक, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। लेकिन हम आपको थोड़ा सा लाउड वॉल्यूम में बताते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर 9837896896 98378 96, ये वही नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, फटाफट से कॉल लगाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। और सुनिएगा ये खूबसूरत सा गाना।

0: सुना मुकेश जी और साथ में लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज, लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो हम क्या करते हैं, अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, हाँ जी, सभी बहुत अच्छे हैं, माता रानी जी की कृपा है। आप बताइएगा, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, चलिए हमेशा खुश रहिए। आप बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप? ठीक है ठीक है, हम आपको भक्ति गाना भी सुनवाएंगे। ओके सर, धन्यवाद आपने हमें कॉल किया।
1: पहली बार
0: बात होती रहती है। हाँ जी हाँ जी, मुझे मालूम है आपके कॉल आते रहते हैं सर।
1: जी, और ये परिवार वाले
0: जी, तो चलिए सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। एंड दोस्तों, इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी इंद्रपाल जी ने, और ये गाना सुनना चाहते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में। सैयारा तू तो बदला नहीं, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बहुत प्यारा गाना है, तो इसको सुनिएगा। और एक नवरात्रि स्पेशल ट्रैक भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं आपसे मुलाकात करूंगी टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बिंदास होकर जिंदगी को जीजिएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? जो होगा अच्छा होगा, बस यही सोचिएगा और जीवन के हर पल का आनंद लीजिएगा।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
4: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री का संदेश संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ. आप कनेक्ट हो गए हैं, इवनिंग मस्ती शो है. और समय की बात करूं तो 5:09 हो चुके हैं और हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं ढेर सारी बातें करने के लिए. आज नवरात्रि का चौथा दिन है जहां पर कुष्ठ मांडा माँ की पूजा की जाती है. तो आप सभी को नवरात्रि की चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. और भैया सच बताऊँ ना, 5 बजते हर घर में तैयारियां शुरू हो जानी होती हैं कि भैया शाम के लिए प्रसाद क्या बनाना है. और क्योंकि देखिए इस टाइम तो अगर बात की जाए, क्योंकि दिन छोटा हो गया और रात मतलब शाम ढल जाती है 6 बजे तक, तो आपको बाहर अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लग जाता है. सो इसी वजह से तैयारियां जब शुरू हो जाती है. और तैयारियों के साथ साथ यहाँ पर हम आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने वाले हैं कि आखिरकार देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्लस अपने मुरादाबाद की बात करेंगे. और आज का डे 14 अक्टूबर को स्पेशल डे क्या मनाया जाता है, ऑलमोस्ट हर अपडेट आपको आर्जरीना के साथ मिलने वाला है. तो बस आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ढेर सारी बातें करेंगे. और लेकर आती हूँ मैं आप सभी के लिए एक माता रानी का गाना, है ना, वाकई में बहुत ही प्यारा है. मैंने सोचा कि चलो खुशी ने गाना प्ले कर दिया तो मैं भी आपको एक माता की भजन सुनवाती हूँ जो कि बहुत ही शानदार वाला. इस गाने को एंजॉय करिए, फिर मैं लौट कर आती हूँ.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। और समय की बात की जाए तो 5:19 हो चुके हैं और आज की तारीख 14 अक्टूबर अपने आप में बेहद खास है। और आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे, देखिए आज मुरादाबाद की टेम्परेचर की बात करूं तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि आप एकदम बाहर से घर जाएंगे ना तो बहुत आपको गर्मी लगने वाली है, क्योंकि आज गर्मी लग रही है वाकई में, क्योंकि धूप इतनी तेज है ना भैया कि कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे कहा जा रहा है कि बस ये अक्टूबर खत्म होने के बाद हल्की हल्की आपको ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तो ठंड सुबह सुबह महसूस होती है, दिन में तो ताबड़तोड़ वाली गर्मी होती है। और इसी गर्मी के साथ आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ऑफिस से निकल गए हैं तो अपना सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर पहनिए। देखिए आपको रीना हमेशा याद दिलाती है, आप भूल जाते, कोई बात नहीं, मैं हूँ आपको याद दिलाने के लिए। तो आप जब भी मैं बोलूँ आपको हेलमेट अगर नहीं लगाया तो लगा लीजिए, सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया तो आप भी लगा लीजिए। ये नहीं कि जो ड्राइविंग कर रहा है सिर्फ उन्हीं को सीट बेल्ट लगाना है, बल्कि आपके साइड में जो बैठी है ना मोहतरमा या आपके दोस्त, उनको भी बोलिए हेलमेट जरूर लगाए, सीट बेल्ट जरूर लगाए। अदरवाइज कब आपके बैंक बैलेंस से पैसे कट जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, और वो सीधा बिजली बिल के साथ कनेक्ट होकर आएगा, तब आप बोलेंगे होय रब्बा इतना बिजली बिल कैसे आ सकता है। फिर जब आप डिटेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमारा चलान का भी इसमें पैसे आ रहे हैं। तो इस चीज का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप PSC की तरफ से आ रहे हैं, बुद्ध बाजार की तरफ से आ रहे हैं, मार्केट की तरफ से आ रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली रोड की तरफ से आप जाने वाले हैं, गंगन की बल की तरफ से जाने वाले हैं, तो वहां पर आपको भैया ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। अगर आप ऑन द वे हैं और ट्रैफिक में हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर, ताकि उस रूट से और भी जो आने वाले हैं ना वो इस ट्रैफिक से बच सके। और मैंने देखिए आपको पहले भी बताया ना कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो लोकेशन डालिए, लोकेशन में अगर आपको ग्रीन पट्टियां दिखाई दे रही तो आप समझिए कि उस पर कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं लगा हुआ है, अदरवाइज बीच में आपको रेड लाइन दिख जाए ग्रीन के बीच में तो समझ लीजिए कि पक्का ट्रैफिक जाम तो आपको भर भर के मिलने ही वाला है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ और करेंगे क्या, अरे आपको भी पता है मैं ढेर सारी बातें करती हूँ आपके साथ। फिलहाल हम गुरु रंधावा की आवाज में ये गाना सुनते हैं और लौट कर आती हूँ। नहीं नहीं गुरु रंधावा की आवाज नहीं, मैं दलजीत सिंह की आवाज में आपको सुनाती हूँ, ठीक है।

0: मॉम रिया को एयर फ्राइड.
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है. आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी. और देखिए, फेस्टिवल का सीजन भैया दिवाली की बहुत नज़दीक है और घर की सफाइयां भी चल रही हैं. फिलहाल घरों में पेंट कराए जा रहे हैं, ऊपर से घरों की मरम्मत हो रही है कि दिवाली तक बस कुछ भी हो, घर अच्छा चमकना चाहिए. तभी फील होता है ना कि हाँ भाई फेस्टिवल आने वाला है, क्योंकि पहले से ही, एक महीना पहले से ही हम तैयारियां करने लग जाते हैं, घर को अच्छे से साफ करने लग जाते हैं. और इस टाइम वाट हम बच्चों की लग जाती है क्योंकि मम्मी काम करती तो है, साथ साथ हमें भी घसीटती है, चलो बेटा काम करो, डस्टिंग करो, ये चीजें यहाँ से उठा के इंफा रखो. अगर तुम घर में लंबे हो ना भैया, तो जाले तुमसे ही निकलवाए जाते हैं कि अच्छा तुम ज्यादा लंबी हो, और तुम ज्यादा लंबे हो तो इधर आओ, जाले निकालो घर के. तो उसको तो जाले निकालने का काम मिलता है. और जो थोड़ा सा हट्टा खट्टा होता है, उसको भारी भारी सामान उठाने के लिए बोल देता है कि चल अब तू इसको बैठ, को इधर से इधर सरका, मैं यहाँ से सामान निकाल लेती हूँ. तो घर की तैयारियां ना बड़े धूमधाम से होती है, और दिवाली के तो भाई क्या ही कह सकते. लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी खुशखबरी भी है. जो कंपनी में काम करते होंगे, रेलवे में काम करते होंगे, रेलवे जो कर्मचारी हैं उनको, देखिए कोई भी कंपनी में काम करता हो उनको बस एक चीज की इंतजार रहती है, हाय बोनस कब मिलने वाला है ना. बोनस की इंतजार हर किसी को मिलती है, किसी को कंबल के साथ मिठाई, हर तरीके के अलग अलग चीजें मिलती हैं, बर्तन के सेट मिलते हैं उनको, तो डिनर सेट. और जब डिनर सेट मिलता है ना, तो हम उसको ना बार बार निकाल के देखते हैं, अच्छा जब ये मेहमान आएंगे ना जब यूज करेंगे इसको, अदरवाइज यूज नहीं करने वाले, इसको रख देते हैं. और जो कंबल मिलते हैं ना उसको भी इसीलिए रख देते हैं कि जब मेहमान घर पर आएंगे ना तो उनको नया नया कंबल देंगे कि लो तुम ओढ़ो, तुम खुश हो जाओगे फिर. क्योंकि मेहमानों की खातिरदारी भैया हमारे इंडिया में ना बहुत ज़्यादा की जाती है. और रेलवे कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं तो उनको दिवाली के मौके पर 78 दिन के दिवाली बोनस मिलने वाले हैं. और साथ ही साथ जो छठ पूजा पर घर जाने वाले हैं ना, उन्हीं के लिए भी खुशखबरी है. अभी खुशखबरी क्यों है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी ना. अदरवाइज थोड़ा सा पेशेंस बना करके मैं आप ज़रूर बताती हूँ. फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है.
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
4: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि.in. यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज. तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर.

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात की जाए तो 5:41 हो चुके हैं और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। साथ ही साथ माता रानी की पूजा की तैयारियां होने वाली हैं, यानी कि 6 बजते ही हर घर में आरती भजन शुरू हो जाएंगे। और इसी भजन के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूपी बिहार से हैं और दिवाली छठ पूजा के पावन अवसर पर आप अपने घर जाना चाहते हैं और आपको बस टेंशन इस चीज़ की है कि अभी तक हमने जो टिकट है रिजर्वेशन नहीं कराया है, सीट बुक नहीं करवाया है, तो क्या ही होएगा। तो देखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जिस भी लोकेशन से हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, एक बार सर्च जरूर करिए, क्योंकि सरकार ने अब की बार 15-20 ट्रेनें है ना स्पेशल चला दी गई है। हर इलाके के लिए ट्रेनें हैं वो बढ़ा दी गई, उनकी टाइमिंग अलग अलग है, तो आप अपने घर आसानी से जा सकते हैं। अगर आप पंजाब में रहते हैं और बिहार से हैं तो पंजाब से स्पेशल 2 ट्रेनें चलाई जा रही हैं छठ पूजा के लिए, ताकि आप अपने घर आसानी से पहुंच सके और कोई भी अपने घर से दूर ना रहे फेस्टिवल के सीजन पर। और साथ ही साथ वंदे भारत की बात करूँ तो वंदे भारत यानी कि दिल्ली से लेकर अलीगढ़ और प्रयागराज काशी तक ये ट्रेन जाएगी। तो आप इस रूट से हैं तो एक बार ट्रेन जरूर सर्च करें और फिर आप अपने घर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए, हर अलग अलग लोकेशन के लिए ट्रेनें स्पेशल चलाई जा रही हैं, ताकि आप घर पर अच्छे से पहुंच सके, कोई भी अपने घर से दूर ना रहे फेस्टिवल के सीजन पर। और छठ पूजा का त्यौहार तो भैया वाकई में इतना पावन होता है ना कि लोग चाहे दिवाली में ना जाए लेकिन छठ पूजा पर आप रोक नहीं सकते हो एक भी बिहारी को। भैया कुछ भी हो जाए, ट्रेन के ऊपर बैठ कर जाना पड़े, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो आप ऐसा ना करें, एक बार जब भी आप घर से निकलना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, तो एक बार ट्रेन जरूर चेकआउट करें। आपके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, हर चाहे मुरादाबाद से हो, दिल्ली से हो, अहमदाबाद से हो, कहीं पंजाब से में रहते हो, कहीं भी रहते हो, हर जगह से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है आप सभी के लिए। इसी के साथ बात करेंगे आज के खास डेज के बारे में, बस उसके लिए मैं लौट कर आती हूँ आप सभी के बीच। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए आप।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Oh my God, this is original.

चंडीगढ़ में फिलहाल तो मुरादाबाद में दिला दीजिए जी, यही काफी है। हेलो जी, गज वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात की जाए तो समय हो चुका है यानी कि 5:51। अगर आपके घड़ी में या आपकी घड़ी ऊपर नीचे है तो भैया मैं कहती हूँ ठीक जरूर करा लीजिए। और आज का डे वाकई में बड़ा ही बहुत ही स्पेशल, बहुत ही झकास वाला डे है। डे झकास वाला क्यों है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि आज मनाया जाता है नेशनल आई लव यू डे। तो जिनकी गर्लफ्रेंड है ना, आज दिल खोल कर बोलिए आई लव यू, बोल दीजिए, बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। और जिनकी शादी हो चुकी है वो जरा संभल कर बोले, क्योंकि पत्नी अगला सवाल पूछ सकती है, अच्छा जी आज ऐसा क्या है जो आप मुझे आई लव यू बोल रहे हैं। और इधर गर्लफ्रेंड की रिप्लाई पता क्या आता है, रियली जानू, वाकई में आई लव यू बोला तुमने, क्या सच में मुझसे प्यार करते हो। और पत्नी बोलेगी अच्छा शादी के इतने साल बाद आई लव यू अचानक से, दाल में कुछ काला है, बताओ तुम कहाँ गए थे आज। ये सवाल पूछने के लिए आ जाएगा भैया। तो जब भी आप आई लव यू पत्नी बीवी से बोले तो सोच समझ कर बोलिए। और जो डेली हमेशा बोलते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो बोलते नहीं है ना, शादी के काफी टाइम हो गए हैं, और आप अगर आज बोलेंगे तो सोच समझ के बोल लीजिए भैया, पता चले शाम को रोटी की जगह बेलन ही मिल जाए। और कुछ लड़के तो ऐसे हैं, होते हैं गर्लफ्रेंड से रोज बात करते हैं, रोज आई लव यू बोलते हैं, लेकिन पापा के सामने फोन पर उनका नाम राजू रख देते हैं। हाँ राजू बता क्या बात है, अरे मेरे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, आई लव यू, मतलब जज्बात, हालात, हर चीज बदल देते हैं और लड़की को लड़का बना देते हैं एक सेकंड के अंदर भैया, जैसे घर वाले लुल्लू है उनको पता ही नहीं चलेगा, है ना, इस तरीके से। और साथ ही साथ आज एक और डे मनाया जाता है जिसके लिए हम सभी बहुत दीवाने होते हैं, हर चीज में स्टैंडर्ड चाहिए, यहाँ जाएंगे तो वहाँ प्रॉपर स्टैंडर्ड वाला फील आना चाहिए, अगर हम कहीं खाने भी जा रहे हैं तो नहीं यार अच्छे रेस्टोरेंट में चलो, ताकि स्टैंडर्ड वाले फीलिंग आनी चाहिए। तो अब प्यार कोई स्टैंडर्ड वाला हो जाए तो और मजा आएगा ना, लेकिन स्टैंडर्ड वाला प्यार अच्छा होता है या कौन सा वाला प्यार होता है अच्छा, वो तो आप ही बता सकते हैं। फिलहाल अगर अभी तक आपने आई लव यू नहीं बोला है ना तो बोल दीजिए भैया, मैं तो साफ सीधी कहती हूँ बोलना ही चाहिए क्योंकि आज इंटरनेशनल आई लव यू डे है। चलिए फिलहाल इसी पर एक हरियाणवी ट्रैक मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा है अजय हुड्डा की जो ये गाना है ना, वाकई में ही बेमिसाल है। और इनके साथ कविता जोशी,

0: का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपये होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्री

0: मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
1: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई को सपोर्ट कर सके। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसमें एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर सिलेक्ट किया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट एफडीआई आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यता का यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पैराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
7: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश की प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
8: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
7: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

जी गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ आप कनेक्ट है और समय की बात की जाए तो 6:09 हो चुके हैं। जय माता दी। और अब हम बात करने वाले हैं, देखिए हर महीने कोई ना कोई मूवी जरूर रिलीज होती है। कल 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर को जेलर 2 मूवी रिलीज होने वाली है। साथ ही साथ नवंबर की बात की जाए तो रामायण मूवी जिसकी भैया डेट 3 बार चेंज होकर यानी कि 3री बार फाइनल हुई है 5 नवंबर, यानी कि धनतेरस से 1 दिन पहले रामायण मूवी रिलीज़ की जाएगी। जबकि पहले की अगर डेट करूँ तो वो दिवाली के बाद फिक्स हुआ था, फिर उसके बाद 6 नवंबर को चेंज हुआ, अब 6 नवंबर को चेंज हुआ, अब फाइनली कर दिया गया है कि 5 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। और कल जेलर 2 मूवी आप इंजॉय कर सकते हैं, थिएटर में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए मूवी के इंतज़ार हर किसी को होता है कि अपने फैमिली के साथ हम मूवी देखने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ, क्योंकि यही एक समय मिलता है जहाँ हम दोस्तों के साथ फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। इसी के साथ और भी ढेर सारी बातें हैं, फिलहाल एक गाना सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
4: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ। जय माता दी। और समय की बात की जाए तो 6:18 हो चुके हैं, और जब भी फेस्टिवल सीजन शुरू होता है ना भैया, हर चीज की महंगाई ताबड़तोड़ वाली बढ़ जाती है। यानी कि चीनी की महंगाई फिर से बताया जा रहा है कि फिर से बढ़ने वाली है चीनी का जो रेट है। साथ ही साथ बिन मौसम बारिश की वजह से सब्जियां भी, आपको वेजिटेबल्स भी महंगे होते हुए दिखेंगे। और उसी के साथ साथ दिवाली के मौके पर अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं, क्योंकि दिवाली के मौके पर वैसे भी मिठाई खरीदा ही जाता है, हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, अपने रिश्तेदारों में सबको दिया भी जाता है और हैप्पी दिवाली बोलते हैं। तो अगर आप इस दिवाली मिठाई खरीदने वाले हैं और मिठाई खरीदने जाएंगे, तो आपने एक चीज जरूर ध्यान देना है। एक तो आपको, अब तो मिठाई के ऊपर प्राइस तो आपको लिखे लिखे मिलेंगे, साथ ही साथ ये लिखा मिलेगा कि ये जो मिठाई है किस दिन बनी है और किस दिन इसका एक्सपायर हो जाएगा, मतलब उसके बाद आप नहीं खा सकते हो। अगर क्योंकि हमें पता नहीं होता था ना कि, और हम जब भी जाते थे मार्केट से मिठाई ले आते थे और खाते थे तो बीमार पड़ जाते थे। तो आप उस मिठाई को खरीदने से पहले उसका डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर चेकआउट करिएगा और तभी आप अपने घर लेकर आइएगा। क्योंकि अब इस पर वो भी लिखा होगा कि जो ज़्यादा शुगर नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए भी अलग से मिठाइयाँ होंगी, और उस पर हर चीज़ लिखा होगा कि इस मिठाई के अंदर क्या क्या मटेरियल मिलाया गया है, क्या क्या इसके अंदर डाला गया है, हर चीज़ आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा। तो जब भी आप ये मिठाई वगैरह खरीदने जाए तो एक बार चेकआउट ज़रूर करें कि कब किस दिन बनी है या किस दिन एक्सपायरी डेट होगा, और क्या क्या इस मिठाई के अंदर मिलाया गया है, क्या क्या रेमेडी, क्या क्या चीज़ें मिलाकर इस मिठाई को बनाई गई है, तो ये ज़रूर सर्च करिए। और इसी के साथ मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल, और कड़क सवाल भी बहुत ही आसान होने वाला है जो कि आप आसानी से बता दें।

क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और साथ ही साथ आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, समय की बात की जाए तो 6:27 हो चुके हैं और इसी के साथ आरजे रीना आप सभी के लिए कर आ गई है कड़क अपडेट। और कड़क अपडेट ये है कि ज़रा वेदर की बात भी कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बताया जा रहा है कल दिल्ली NCR से लेकर UP और बिहार झारखंड में कल बारिश और आंधी की संभावना भी जताई जा रही है। तो बाकी देखिए भैया, ये होता है बारिश यानी कि बिन मौसम बारिश। इस टाइम कोई मौसम नहीं है बारिश का, लेकिन फिर भी उनको भैया बरसना है, ये इसलिए ना क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि देखिए पेड़ ज़रूर लगाइए, आप अगर एक पेड़ काटते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 2 पेड़ अवश्य लगाएं, अपने घरों में गमले लगाइए ताकि वातावरण भी शुद्ध रहेगा, आपको भी शुद्ध हवाएं मिलेंगी और जितना हो सके उतना पेड़ लगाएंगे तभी हमारी प्राकृतिक भी बची रहेगी। और ये बिन मौसम, जैसे कभी अभी भी मौसम ख़राब हो जाता है ना, तो वो नहीं होएगा, वो तब नहीं होएगा जब आप इसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे तभी। फिलहाल आई नो, मुझे पता है कि इंतज़ार है आप सभी को कि रीना कब कड़क सवाल लेकर आने वाली हैं आप सभी के बीच। तो डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए कड़क सवाल लेकर आने वाली हूँ, बस थोड़ा सा आपने और इंतज़ार करना है, इसके बाद आपके बीच कड़क सवाल, कड़क म्यूज़िक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आई नो, मुझे पता है कि जो भी होगा आसान होगा, आप आसानी से उसका आंसर आप हमारे तक पहुँचा पाएंगे। इसी के साथ एक गाना सुनते हैं, उसके बाद में लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
4: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदिशक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
3: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

जी गुड वेल इवनिंग है आर्जरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और इसी बीच आर्जरीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क सवाल। और कड़क सवाल आज का सच बताओ बड़ा ही आसान वाला है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे लोग आपसे ज्यादा करते हैं। सोचिए और आसानी से आप इसका आंसर हमें पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर आपने आंसर पहुंचाना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी तो है लेकिन दूसरे लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोचेंगे तो आपको आंसर अवश्य मिल जाएगा। और आपको अवश्य जब मिल जाए आंसर तो आप हमारे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज या अपनी वॉइस मैसेज हमें भेज सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर यूं ही निकल जाएगा। चुटकियों के अंदर इसका आंसर निकलने वाला है, यानी कि जो चीज़ आपकी है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते वो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा दूसरे लोग करते हैं। सोचिए और मैसेज भेजिए हमें। फिलहाल के लिए एक और गाना आप सभी के बीच और फिर से एक कड़क अपडेट के साथ कनेक्ट करें।

0: बनके
1: बनके आए है छोटा पैकेट बड़ा धमाल। गुरु रंधावा और नेहा कक्कर की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है मोरनी बनके।

मोरी नी बन के। फिलहाल मुझे पता है भैया बहुत सारे हैं ना जो मैच का इंतजार कर रहे हैं कि आज तो मैच भी आने वाला है। आज चौथा मैच खेला जाएगा T20 का, यानी कि ये मैच भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। और आपको बता दूं कि टॉस हमारी टीम इंडिया ने जीत ली है, और टॉस जीतने के बाद पहला फैसला लिया उन्होंने गेंदबाजी का कि हम तो पहले गेंदबाजी करेंगे भैया, फिर बल्लेबाजी करेंगे। और इसी के साथ साथ देखना ये है कि कौन सी टीम आज धमाल मचाती है, कौन सी टीम आज जीतती है। तो आपको क्या लगता है भैया कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि आज चौथा T20 मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज के साथ, यानी कि भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज, और ये 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। तो आप मैच देखने के दीवाने हैं, अगर मेरी तरह अगर आप दीवाने हैं, आपके अंदर इतना क्रेज है भैया कुछ भी हो जाए मैच तो हमें देखना ही देखना है, तो डेफिनेटली देखिएगा आज चौथा मैच खेला जाएगा। इसी के साथ साथ आज का मैंने कड़क सवाल भी बहुत आसान वाला आप सभी से पूछा। आज का हमारा कड़क सवाल ये था, ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन आपका लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरे लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। मेरे पास मैसेज आ भी चुके हैं, अगर आपके भाई मन में है आंसर इसका तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो खुद से ज्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, सोचिए और मैसेज करिए। चलिए एक और गाना हम आप सभी के बीच सुनवाते हैं, बहुत ही छकाल सवाल।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: हेलो, सोनू निगम की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत गाना आप एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओं। साथ ही साथ अगर समय की बात की जाए तो 6:50 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ। और देखिए, आप सोने की दुकान पर जाते हैं सोना खरीदने के लिए, तो अब अपडेट ये निकाल के आ रही भैया, क्योंकि दुकानदारों को ना थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई पता ये चल रहा है कि वहां पर गया एक आदमी दुकान पर अंगूठी खरीदने, लेकिन उसने अंगूठी अच्छे से देखा, अच्छे से परखा, और जैसी दुकानदार की नजरें झपकी, एकदम छू मंतर हो गया अंगूठी लेकर। सोचिए अब दुकानदार कैसे भाई बोले कि आओ बैठो हमारे दुकान पर, हमारे शॉप पर। तो अब उनको भी पहले ये परखना पड़ेगा कि इंसान किस तरीके के आपके पास आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, क्योंकि फैमिली के साथ आए तो फिर आप अच्छा, हाँ ठीक है भाई ये अच्छे होंगे, लेकिन कोई अकेला आ रहा है और उसके कुछ अलग पर्पज़ से आ रहा है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी नज़रें झपकी और छू मंतर हो के जाएंगे आपके सोने। और आप भी सोना चांदी लेना चाहते भैया तो ले लीजिए, सस्ते रेट हो रहे हैं, अदरवाइज फिर से ये महंगे हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर से शादियों की जो शुरुआत है ना वो फिर से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ आज का हमारा कड़क सवाल भी बहुत आसान था, क्योंकि अगली बारी अब आपके मैसेज की ही है, तो अगर अभी तक आपने मैसेज और राइट आंसर नहीं मिला तो थोड़ा सोच लिए। साथ ही साथ 7 से आज T20 मैच है, 4th T20 मैच खेला जाएगा भारत वर्सेस यानी कि वेस्ट इंडीज के साथ, आप जरूर देख सकते हैं। और आज का हमारा कड़क सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग सबसे ज्यादा करते हैं, क्या हो सकता है वो जो आप खुद कम करते हैं और दूसरे लोग सबसे ज्यादा करते हैं, सोचिए। और हमारा नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करके बताना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे ज्यादा दूसरे लोग आपके नाम क्या आप मतलब जो दूसरे लोग हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ आपसे।
1: बट ड्यू टू हैवी स्नो स्टॉर्म ऑल फ्लाइट्स टू कश्मीर आर कैंसल्ड।

0: गुड वाली इवनिंग है यार जरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं और समय की बात की जाए तो 6:55 हो चुके हैं और अब रीना ने लेने वाली है यहाँ से जाने की इजाजत यानी कि फुर होने वाली है। अपना झोला वोला पहले पैक कर लिया है मैंने कि भैया निकलने में मुझे देर ना हो जाए और घर भी तो पहुंचना है ना जल्दी, पूजा भी तो करनी है ना, पूजा में लेट नहीं हो जाए क्योंकि मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ शो करने के बाद जब मैं जाती हूँ तो बहुत घर में भैया पूजा हो गई होंगी, आप भी पूजा करके आ गए देख लीजिए, मैं ही एक ऐसी आत्मा हूँ जो घर जाकर 10:30 पूजा स्टार्ट करती हूँ
1: उसके बाद डांडिया भी खेलती हूँ
0: आज जाऊंगी कल नहीं गई थी। तो आज का हमारा कड़क सवाल ये था, अच्छा भैया आप आ गए ना, तो मेरा क्वेश्चन ये था पब्लिक से कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं लेकिन दूसरे लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं।
1: जिसका इस्तेमाल आप कम करते हैं
0: जी जी बिल्कुल।

0: लेकिन
1: इस्तेमाल कम करते,
0: क्यों नहीं करते हैं? चलिए देखते हैं हमारे श्रोता के आंसर भेजते एक बार। इसका आंसर होता है नाम, समझे?
1: समझ गया, हम खुद तो अपना नाम कम लेते हैं
0: लेकिन दूसरे इंसान आपको ज्यादा नाम लेकर बुलाते हैं। अरे भाई इधर आ जा, अरे जो भी नाम है वो बुलाते हैं ना आपको।
1: मगर आपके केस में तो उल्टा है ना, आप तो खुद ही बोलती रहती हो आरजे रीना।
0: नहीं, वो रेडियो पर आती हूँ तब बोलती हूँ ताकि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको मेरा नाम पता चल जाए।
1: तो बताया ना आपने।
0: हाँ, तो इसी के साथ ही हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। माय नेम इज प्रिंस, मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। तो प्रिंस जी, आप बन चुके हैं हमारे शो के विनर और आप गोलगप्पे खा सकते हैं बाहर जाके, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है।

0: यानी कि जो है इसका राइट आंसर नाम, जो इस्तेमाल दूसरे लोग सबसे ज्यादा करते हैं। दुर्गेश सैनी जी कनेक्ट हो गए हैं। और देखिए मैंने इसका आंसर भैया लास्ट में रिवील भी कर दिया था, एक बार एकदम मेरे मुंह से स्लिप हो गया था कि नाम होता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए।
1: नहीं, नहीं, समझदार लोगों ने आपको एकदम पहले।
0: और अगले मैसेज की बात की जाए तो रीना जी जय श्री राम गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। वेरी गुड इवनिंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं और आप जानकारी भी बहुत अच्छी लेकर आती हैं। साथ ही साथ इसका राइट आंसर होता है नाम, और ये कुछ लाइनें भी लिखकर भेजते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह दुनिया के किसी भी रिश्ते के महत्व को नहीं समझता। बिल्कुल, क्या बात है जी, बहुत ही प्यारी लाइन लिखते हैं सर, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अगले मैसेज की बात की जाए तो इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। शैयद सारी कली जी, मेराज अंसारी, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? और आपका शो बहुत अच्छा लगता है, गाने बहुत अच्छे प्ले करती हैं आप, सुनकर मजा ही आ जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने मेरा आंसर सुनकर आंसर सही दे दिया है, नाम नाम नाम
1: तेरे नाम
0: पहले था ना, तेरे नाम बीच में आगे का नहीं पता आगे वो बोल दिया ना भैया मैंने, तो पता चले बाहर से कुछ और ही फेंक के मेरे ऊपर पड़ जाएगा वो इसलिए वो शब्द नहीं बोल सकते यहाँ पे, बाकी समझ गए होंगे सब। ये डायलॉग था ना, पहले बचपन में बहुत ज्यादा बोलते थे, जब से तेरे नाम मूवी देखा भैया सबके तेरे नाम ही निकलने लगे थे, लड़कों के तो बहुत ज्यादा मांग बीच के काटते थे। क्या आपने भी कभी करा था ये स्टाइल? हाँ देखा भैया, पता है मुझे, लड़के मान ही नहीं सकते हैं, कॉपी करते हैं ये। बताइए आपका खुद का क्या है जो आप खुद सोचे कि मेरी कॉपी लोग करें? आपका आंसर होता है गुड वाली इवनिंग विकी सागर जी। अरे ये आंसर क्या होता है सर? आंसर तो आपने बताया नहीं, गुड इवनिंग पहुंचाया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे भैया सेम टाइम सेम जगह, करेंगे आपसे ढेर सारी गुफ्तगू। अभी के लिए आप इंतजार करिए और अपना ख्याल रखिए।

0: कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है।
0: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपये होगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।
0: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमईज को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर सिलेक्ट किया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट एफडीआई आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

0: की भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुकों, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जनसमुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने बताया कि ये हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर स्थिर हुआ। आनंद कुमार बेलकुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरला, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजीरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: हैं। फैमिली ज्यादा
3: है। जी मैम,
2: हमारे जो माननीय के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है। लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमें

हमेशा लॉक रखें, डर नहीं समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सके। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। नगर निगम विद्यालयों में विद्यार्थियों को 1,370 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। दिल्ली की विशेष अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से कल नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई। 10 वर्षों की इस नीति का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ, आधुनिक और तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
1: नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान और आधुनिक विनिर्माण समेत 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही महिला उद्यमियों, महिला कर्मचारियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत निवेश, कार्यालय या कार्यस्थल के किराए, नई नियुक्तियों, अनुसंधान प्रमाण, तकनीकी आधुनिकीकरण, ऊर्जा की बचत और कौशल विकास के लिए अलग अलग प्रोत्साहन दिए जाएंगे। साथ ही संसाधनों का दोबारा इस्तेमाल करने और कचरा कम करने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई नीति से निवेश बढ़ाने, उद्योगों को आधुनिक बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। निवेशकों को सहायता देने और मंजूरियों की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल के माध्यम से एकल संपर्क केंद्र को भी विकसित किया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से 1,370 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक संसाधन और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हर तरीके से नगर निगम, दिल्ली सरकार मिलकर के इस मुहिम में लगे हैं कि दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर माहौल मिले और उसका अच्छा विकास हो। वो अपनी शिक्षा में हर उस चीज को पाए जो उसका अधिकार भी है और जिसके कारण से उसका भविष्य उज्जवल हो पाए।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुखर्जी नगर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निशुल्क लाइब्रेरी के लिए उपयुक्त जगह तलाशने, स्ट्रीट लाइट और CCTV व्यवस्था सुधारने तथा बंद पड़े सार्वजनिक शौचालयों को पिंक टॉयलेट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। दिल्ली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उन्हें बधाई देते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा दिल्ली को प्राथमिकता दी है और लगातार सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी में सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को अपनाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिल्ली में 9 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ है और लगभग 85,000 दवों के तहत 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यय वंदना योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसी केंद्र की योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुँचाया जा रहा है।
4: हमारी सरकार आने के बाद हमने जन जन तक प्रधानमंत्री जी की दी हुई

0: हर सौगात को अपनाया और उसका लाभ जनता तक पहुंचाया। आज लगभग 425 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बन चुके हैं, जो कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर के रूप में दिल्ली राज्य के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि लगभग 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम लोग खोलने वाले हैं।
1: मुख्यमंत्री ने दिल्ली की पुरानी समस्याओं में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा दिल्ली को मदद दी है।
0: दिल्ली की जितनी लीगेसी प्रॉब्लम है, यमुना सफाई की हो, कूड़े के पहाड़ की हो, पर्यावरण को बेहतर करने की हो, हमेशा आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली को अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी। देश की राजधानी है दिल्ली, तो इसमें विकास का कोई भी सेगमेंट छूटे ना, ये प्रधानमंत्री जी का हमेशा से सहयोग रहता है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केंद्र के सहयोग से विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित दिल्ली का निर्माण करना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रजनीश शुक्ला।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज कॉकरोच जनता पार्टी CJP नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं और एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस मादक पदार्थ के स्रोत और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अवैध शराब के 1000 से अधिक क्वार्टर बरामद किए हैं। यह अवैध शराब हरियाणा से बिक्री के लिए दिल्ली लाई जा रही थी। इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस की अपराध शाखा ने मंडोली गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 567 किलोग्राम से अधिक पटाखे और अन्य सामग्री बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को आज अपहरण की आशंका के चलते जयपुर में उतारा गया। हालांकि बाद में यह आशंका गलत साबित हुई। इसके बाद जानकारी के अनुसार मुंबई उड़ान सूचना क्षेत्र में उड़ान के दौरान पायलट ने कथित तौर पर स्क्वॉक कोड 7500 दर्ज किया था। यह कोड विमान के अपहरण या उसमें किसी तरह के गैर कानूनी हस्तक्षेप का संकेत देता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के समग्र विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक CT स्कैनर और MRI मशीनें लगाई जा रही हैं। इन आधुनिक मशीनों से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

0: दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राजौरी गार्डन में आंगन मिलन समारोह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देने, उन्हें बेहतर सहयोग उपलब्ध कराने और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 16 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने संदेश में कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। प्रधानमंत्री का संदेश संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह सम्मेलन केवल इतिहास को समझने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह जानने का अवसर भी है कि अतीत का ज्ञान भविष्य को किस तरह दिशा दे सकता है।
2: आज हम सिर्फ इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारे अतीत की समझ भविष्य की संभावनाओं को कैसे रोशन कर सकती है। हम एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं कि जब सभ्यताएं आपस में जुड़ती हैं तो क्या होता है। विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ज्ञान सीमाओं को पार करता है, कला को नए आयाम मिलते हैं और समाज को समझ आता है कि अंतर के बावजूद वे एक जैसी मानवीय विरासत साझा करते हैं। यही बृहत्तर भारत का मूल भाव है।
0: नई दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मा

0: मंदिर का कोई नाम न होने के कारण से लोग इसको दूर से झंडे वाला मंदिर बोलते थे और कालांतर में यह उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये माता भी उसी नाम से प्रसिद्ध हो गई झंडे वाली देवी के नाम से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से कल नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ राजधानी में हल्की बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी। दिल्ली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। नगर निगम विद्यालयों में विद्यार्थियों को 1,370 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। दिल्ली की विशेष अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से कल नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
7: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदिशक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
6: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
8: अपने बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर देख लीजिए इश्क में हारा ऐसा दिखता है। इसके आगे कि अपने शहर मुरादाबाद के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जब अब भी तेरी याद में हैं तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में हैं। खुशी होगी तुम्हें ये जानकर हम तेरे ही शहर मुरादाबाद में।
9: हाँ जी, कैसे हालचाल है? गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है एंड आई रियली होप सब बढ़िया ही होंगे। देखो यार, शाम होते होते ना मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि यार काश कोई शेरो शायरी सुना देता तो नींद थोड़ी अच्छी आ जाती। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि शेरो शायरी सिर्फ नींद के लिए सुनी जाती है, नहीं भाई, ये ना बिल्कुल सुकून देती है। शेरो शायरी जो होती है ना भाई, उसकी वाइब ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा इस बात को जरा थोड़ा सा आज और बढ़ाते हैं, हालांकि नए रूप में लाने की कोशिश की है और कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में अपने साथ। हालांकि इनको आपने पहले भी सुना है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज वो कुछ नया लेकर आए हैं और मेरे साथ तो आई थिंक फर्स्ट टाइम होने वाला है उनको और मेरा कॉन्वर्सेशन, तो आई एम सुपर हैप्पी। और साथ में हमारी हवा हवाएं, आई मीन टू से अखिल भैया भी, जो अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं भाई, मतलब ही इज अ बिजनेस मैन यार, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, वार्म वेलकम करेंगे। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में राघव जी। राघव भाई, बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हाल चाल है आपके?
8: थैंक यू आनंद जी, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर?
9: मैं बढ़िया हूँ सर, एंड डोंट कॉल मी सर, हम सब ऐसे भाई भाई वाले हैं और एक महफिल जमाने आए तो यहाँ पे कोई नहीं, कोई आप नहीं, मतलब एक फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए यार।
10: कोई क्योंकि मैम भी नहीं है, क्योंकि सर ही सर है।
9: हाँ मैम नहीं है, नहीं मेरा सर वैसे सही है। ओके ओके,
8: मैम का तो अभाव ही है जीवन में सर।
9: क्या बात है। तो राघव जी थोड़ा सा अपने बारे में प्रो दीजिए भैया।
8: आई थिंक मुझे पहले भी काफी लोगों ने सुन रखा होगा।
9: एब्सोल्युटली
8: आरजे आनंद तो आप हैं ही, आरजे

0: जी जो है उनके साथ में रहता था, हमारी जुगलबंदी रहती थी पोइट्री की।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मेरा नाम राघव गुप्ता है, शहरबाद से बिलोंग करता हूँ, पेशे से वकील हूँ और आज शाम आपकी खिदमत में।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ यार, आपने बताया आपका प्रोफेशन कुछ और है, वकील, मतलब वकील लोग इस लड़ते हैं शेर व शायरी भी करते हैं, ये मुझे पता नहीं था यार। गलती से कहीं अगर कुछ लिख दिया, लिखने की जगह कुछ दिल की बात लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा।
0: ऐसा है सर, जो दलीलें जज के सामने पेश कर रह जाती है हाँ, वो शायरी के तौर पर कह देते हैं।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा पहले आपका इंटरव्यू ले लूँ, उसके बाद शुरू करेंगे सिलसिला। ये आपको आया कहाँ से, मतलब कि यार मुझे ये शेर व शायरी में भी करना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप लॉ कर रहे हैं आपका तो सारा फोकस वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये वाला कैसे मतलब हुआ, पहले ये आया या पहले लो आया, मेरे को ये जानना है।
0: नहीं नहीं, पहले मैंने लिखना काफी समय से ही शुरू कर दिया था।
1: अच्छा।
0: मतलब 10th क्लास के बाद जब गैप मिलता है आपको, रिजल्ट का जब वेट होता है, तभी मैंने पोएम्स लिखना शुरू कर दी।
1: अरे वाह।
0: लेकिन फिर मैं पहले बीच में रैप सॉन्ग्स भी लिखे और उसके बाद फिर मैं पोइट्री की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि काफी मुझे सुकून देती है।
1: अरे वाह, बहुत
0: ही बढ़िया। और अगर देखा जाए तो कि मेरी मम्मी को पढ़ने की आदत काफी है, वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है।
1: ओ वाह।
0: तो पुरानी किताब वो एकदम छोड़ती नहीं है हिंदी की, तो मुझे वहां थोड़ी आदत लगी,
1: मतलब इंस्पिरेशन मम्मी से मिली है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कह सकते हैं वो पढ़ने पढ़ाने वाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दादा तो उर्दू और हिंदी दोनों जानते थे।
1: अरे वाह क्या बात है।
0: उनको काफी शौक था शायरी गजल सुनने का।
1: अभी आपके तलफ्फुज़ इतने ज्यादा स्ट्रांग है भाई, हम भी हिल रहे हैं आज बैठे बैठे। चलो कुछ नया सीखेंगे। तो राघव भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनका दिल टूट जाता है या थोड़े से जो प्यार शियार करते हैं वो कुछ ज्यादा शेर व शायरी करते हैं, क्या ये सच बात है?
0: देखिए अगर हम गजल की और शायरी की बात करें तो इनिशियली इसकी शुरुआत लड़की की तारीफ करने से हुई थी।
1: ओके
0: ठीक है, किसी आप कन्या की तारीफ कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका की तारीफ, अपने आप की आप तारीफ कर रहे हैं
1: जी,
0: शुरुआत वहां से हुई थी। फिर उसके बाद उसको अलग अलग, आप ये कह सकते हैं अलग जोन में उसको बांट दिया गया।
1: ऑलराइट, कहीं अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट
0: जी
1: कर
0: जी
1: दिया।
0: कहीं सियासत वाली बात कह दी
1: हाँ।
0: कहीं गुरूर वाली बात कह दी आपने, ठीक है, और कहीं परेशानी आपने झलका दी, इंसानी जो एक परेशानी है उसको झलका दिया, तो इस स्तर में बढ़ता गया। तो अब आज के टाइम पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं है कि आप उसको छोड़ सके, ठीक है, जैसे पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, ऐसे ही अब लिखने की अलग अलग शाखाएं, आप जिस मर्जी टॉपिक पर लिख सकते हैं।
1: 100%
0: तो ये डिपेंड करता है लिखने वाले पे, वो किस तरह से किस बात को बयां करता है। बस ये है, एक फाइनल एम हर राइटर का ये रहता है कि वो सामने सुनने वाले तक पहुंच जाए।
1: वेरी गुड यार, एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलो जी, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। बातें चल रही हैं इतनी खूबसूरत आज की शाम, और ये महफिल और भी खूबसूरत होगी क्योंकि राघव जी हमारे बीच में है, अखिल भैया भी है, तो कुछ शेर व शायरी करेंगे, कुछ उनकी दिल की बात सुनेंगे। फिलहाल आप सुनिए ये दिल से जुड़ा गाना, लौट कर आते हैं थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन जी. राघव जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में. आई एम श्योर आपको भी आनंद आ रहा होगा आनंद के साथ.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम के साथ ये महफिल सूट कर रही है. बिल्कुल,
0: चलो बहुत अच्छी बात है. फिलहाल तो सूट कुछ और नहीं कर रहा है, वो जो लैपटॉप लेके भैया ऑफिस में नाच रहे हैं ना भैया, भरतनाट्यम मत करो, हम आज शेर व शायरी सुनेंगे. सो आगे बढ़ते हैं राघव जी. अब जो है मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो ऑफकोर्स आप खाली हाथ तो नहीं आते हो यार मेरे ऑफिस में, कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हो. तो आज की शाम जो है आप क्या लेकर आए हो मेरे लिसनर्स के लिए, हमारे एफएम मुरादाबाद के श्रोताओं के लिए, क्या आप सुनाने वाले हो?
1: जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक बहुत फेमस पोएट है
0: जी,
1: जवाद शेख
0: जी,
1: पाकिस्तान के हैं
0: जी,
1: उनकी कुछ लाइनें मेरे जहन में आ गई थी.
0: अरे वाह.
1: तो मैं अभी आपने जस्ट पूछा तो मैं उनको ही कहता हूँ कि
0: सो राघव भाई की जो बात है ना वो मैं डेफिनेटली पूरी सुनना चाहूंगा और जरूर सुनूंगा. लेकिन उससे पहले ये जो हवा हवा है, इन्होंने कहा भैया मेरा माइक रेडी है तो जरा मेरे को तुम थोड़ा सा बोलने का मौका दो. तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आप कैसे हैं.
2: धन्यवाद आनंद जी, आपने इतना बेहतरीन स्वागत किया है
0: जी.
2: हवा हवाई हमें बोल के बिल्कुल याद दिला दिया है कि एक आप ही हैं जिन्होंने नया नाम रख दिया है.
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज आप कभी गाड़ी में, कभी गाड़ी के बाहर, कभी स्कूटी में, कभी अपने जंक्शन पे, कभी हमारे स्टेशन पे, तो इतने सारे बंदे, एक ही बंदा इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होगा तो उसका नाम तो यही होना चाहिए यार भाई.
2: तुम नाराज हो तो ये दिल उदास है.
0: आय हाय हाय.
2: तुम पास हो तो हर लम्हा खास है.
0: अरे वाह क्या बात है.
2: तुम ही है ये जिंदगी मेरी, तुम बिन हर खुशी बेकार है.
1: वाह
0: वाह वाह वाह, क्या
1: बात है सर.
0: तो ये खुशी किसके लिए बेकार है, भाभी जी के लिए या आपने लिए, आप किसके लिए बोलना चाहते हो?
2: कुछ तो सरप्राइज है, तो तुम तो यहाँ पे भी जो है
0: टांग खींच रहे हो.
2: यहाँ भी
0: देखो ऐसी बात है, जब शेरो शायरी या पोइट्री चलेगी तो भैया उसमें तो पता चलेगा किसके लिए कौन क्या बोल रहा है.
2: दोस्तों और... मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, ये जो जग्गा जासूस है ना ये हमारा आनंद ही है यहाँ पे.
0: नहीं देखो ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ कि अंदर की बातें भी थोड़ी सी बाहर आ जाएं. जब जब बात दिल तक पहुंच जाती है तो जुबा पे भी आ जानी चाहिए. क्यों राघव भैया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और लेखक का तो काम ही यही है.
0: एब्सोल्युटली यार. तो राघव भैया मैं थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहूंगा, आपकी तरफ हम शिरकत करेंगे, कुछ आप भी पेश कीजिए जनाब
1: जी. वो जो लाइन थी,
0: हाँ मुझे लगता है कि शायद आ गई है.
1: हाँ
0: में वापस,
1: बिल्कुल जहन में वापस,
0: प्लीज हम उसका इजहार
1: कहते हैं कि
0: जी
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं.
0: अरे वाह.
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं
0: जी,
1: मगर ऐसा ना कहिए वफा कुछ भी नहीं.
0: अरे वाह.
1: मगर ऐसा ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं. आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर.
0: वाह.
1: आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं.
0: क्या बात है.
1: बहुत कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं.
0: क्या बात है.
1: हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं. अब क्या मैं अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं. मान लेता हूं शख्स में था कुछ भी नहीं, और मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा जवाद, ऐसी मुजोर उदासी की दवा कुछ भी नहीं.
0: अरे वाह.
1: ऐसी मुजोर उदासी की दवा.
0: फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया.
1: ये बहुत मुझे पसंदीदा गजल लगती है जवाद शेख की. और एक आपको आज के टाइम का पता होगा, जो कोर्स चलता है वो सेमेस्टर वाइज चलता है.
0: करेक्ट.
1: ठीक है. और वहां मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं तब नैनीताल में रहता था मास्टर्स डिग्री के लिए, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि शहर पे कोहरे की चादर हो तो कुछ नहीं दिख पाता है. शहर पे कोहरे की चादर हो तो कुछ नहीं दिख पाता है, धूप आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है. आजकल की मोहब्बत के बारे में मैं क्या कहूं, मेरा सेमेस्टर पूरा नहीं होता, इनका प्यार बदल जाता है.
0: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया. और एक्चुअली ये सच्चाई भी है राघव भाई, जो आपने बोला ये सच्चाई से रूबरू कराने वाली बात है.
1: जी मैंने भी कहा तो
0: हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा.
2: और... वो ऐसे ही होता है, सेमेस्टर में कभी कभी बैग भी लग जाती थी मगर तब भी चल रहा है मामला.
1: बैग से याद आया और उसी सेमेस्टर में ब्लॉक भी हो जाते थे. तब मैंने लिखा था कि खिड़की से झांक कर देखो दिख जाएगा आशिक तुम्हारा.
0: अरे
2: क्या बात.
1: खिड़की से झांक कर देखो दिख जाएगा आशिक तुम्हारा, बस आज के लिए अनब्लॉक कर दो, आज जन्मदिन है तुम्हारा.
0: क्या बात है, बहुत ही शानदार. मुझे लग रहा है कि आज राघव जी चुन चुन के आपके लिए शेर व शायरी लेकर आएगा. इस अगर आपके पास भी कुछ अच्छी थॉट है, अच्छी शायरी है, तो डेफिनेटली आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं एफएम मुरादाबाद की ऑफिशियल आईडी पे. एफएम मुरादाबाद 9.6 की ऑफिशियल आईडी है, वहां जाके आपको जो भी लगता है, व्हाट एवर यू वांट टू डू, आप जरूर शेयर करें. तो राघव जी आगे क्या क्या कहती है आपकी शेर व शायरी?
1: आपने ये देखा होगा बहुत से लड़के या बहुत से प्रेमी अपनी प्रेमिका को पसंद करते हैं, तो अगर वो डिनाई करते हैं सामने से, प्रेमिका डिनाई करती है तो पीछे पड़ जाते हैं. लेकिन एक मेरी कोशिश देखिएगा, मैंने लिखा कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो.
0: वाह.
1: मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम जिसके साथ में रहो वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना. वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में रहो।
0: अरे क्या बात,
1: यही चाहूंगा तुम फायदे में रहो।
2: इन्हीं बातों पे एक बात याद आ रही है,
0: स्वागत जी, स्वागत है।
2: मतलब थोड़ा ऐसा है, अटपटा सा है, मगर चलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती। मतलब जो आजकल मोहब्बतें चल रही है ना
1: जी,
2: वो आजकल लाइक वाइक तभी मिलते हैं जब आपके सामने चेहरा बिल्कुल एकदम गोरा हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती,
1: नहीं होती।
2: सच्ची मोहब्बत दिल से होती है। वो जो बिना कहे समझ जाए हर दर्द, वही तो असली हमदर्द होती है।
1: वाह
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। उस हमदर्द को अपने पास रखना थोड़ी देर, नहीं तो मुझे दर्द हो जाएगा आपकी शायरी सुन के। तो एक काम करते हैं गाइस, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आपकी शायरी का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। ये महफिल ऐसी जमती रहेगी, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में महफिल जमा रहे हैं राघव जी। राघव जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरे को दिमाग से आउट हो रहा है
1: जी, मैं राघव गुप्ता लिखता हूँ।
2: अच्छा, गुप्ता जी, हमारे
0: गुप्ता जी,
1: क्या देश के अच्छे नागरिक बनिए।
0: बहुत ही बढ़िया। और गुप्ता जी जब यहाँ पर पधारे हैं तो वो बढ़िया बढ़िया शेरो शायरी से जो है आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो गाड़ियों में अगर आप हैं गाड़ियों में तो वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा लो, कुछ अगला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे उनके चेहरे की स्माइल से लग रहा है कि कुछ तो तगड़ा सुनाने वाले हैं राघव जी।
1: एक बहुत कॉमन चीज आपने देखी होगी, अगर व्हाट्सएप पे हम या फेसबुक पर होते हैं तो सबसे पहले हम किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं, तो डीपी जो डिस्प्ले प्रोफाइल है वो देखते हैं।
0: तो आजकल हालांकि उसका स्क्रीनशॉट लेना अब अलाउड नहीं है, अब आप ले नहीं सकते हो, बंद हो गया, सिर्फ अंधेरा आएगा, पिक्चर नहीं आएगी।
1: लेकिन डीपी अगर लेकिन अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो डीपी दिख जाती है।
0: करेक्ट।
1: तो है कि इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया।
0: क्या बात,
1: इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया। वो जब मेरे साथ था तो सबसे छिपाया, वो आज जिसके साथ है उसे डीपी बना लिया।
0: अरे
2: डीपी अब ये राज खोल ही दो।
0: लेकिन यार राघव जी, जो आपने बात बोली ये एक्चुअली बिल्कुल सच्चाई से रूबरू करा देती है। आपकी सारी बातें, सारी जितनी भी आप बातें बोल रहे हो ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलेटेबल है। ऐसा लग रहा है कि आपने चीजों को सोच सोच के लिखा है। ये आपने खुद ने लिखा है?
1: जी बिल्कुल, मेरा ही लिखा।
0: अरे वाह क्या बात है, हमें कहीं मिल ही नहीं सकता, ओरिजिनल है इसका मतलब।
2: बिल्कुल
0: बहुत ही बढ़िया। अब और क्या कुछ स्पेशल सुनाने वाले हो आप?
1: और मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है।
0: जी
1: मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है जुदा होने के बाद किसी के बिना, जैसे तारे निकल आते हैं आसमान में चांद के बिना।
0: क्या बात,
1: मुझे
0: है?
1: आज उसका एक खत आया है जिसमें लिखा है, राघव मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना।
0: वाह,
1: राघव मैं खुश नहीं हूँ।
0: क्या बात है
2: जी, लिखना भूल गई वो उसमें।
0: यार लेकिन मानना पड़ेगा राघव जी, आपकी बातें और आपके अल्फाज एकदम मतलब दिल को छू जा रहे हैं। गाइस आपको भी मजा आ रहा है ना?
2: बहुत
0: ही बढ़िया। आप
1: मुझे ऐसा लगता है फिर आपने भी कहीं ना कहीं स्टेज पे कुछ ना कुछ इनमें से जो मैंने कहा है वो कहीं ना कहीं आपने
2: इनके साथ
1: फेस किया होगा।
2: अरे इनके साथ तो हर बार फेस करते ही आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब देखिए ऐसा होता है ना, जब आदमी बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो वो चीजें उसके साथ धीरे धीरे चल रही होती है। क्यों राघव जी,
1: बिल्कुल
0: समय के साथ हर किसी के साथ होती है।
1: बिल्कुल सर।
0: और ये जो समय है ना ये दोबारा नहीं आने वाला, और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम में आपको जो चीज मिल रही है ना उसका आनंद उठाओ।
2: आनंद बिल्कुल, जो तुम्हारी
1: और आनंद उठाओ की बात से याद आया कि आपको ना हर चीज के लिए व्याकुल नहीं हो जाना है।
0: ये भी बात
1: जो जीवन में घट रहा है उसके पीछे आपको पढ़ नहीं जाना है, उससे समझौता आपको करना ही होगा, मन को आपको समझाना होगा। ठीक है, और इसीलिए शायद लिसनर्स के सामने हम है जो हमें सुन पा रहे हैं।
2: आनंद जी के मन की बात में थोड़ी सी पढ़ पा रहा हूँ। आनंद जी कहना चाह रहे हैं, रूठना भी जरूरी है मोहब्बत में,
0: अरे वाह,
2: तभी तो मनाने का मजा आता है।
0: अरे वाह,
2: जो बिना कहे समझ जाए दिल की बात, वही तो सच्चा हमसफर कहलाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपके हमसफर से मैं आज ही बात करता हूँ, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप प्लीज कुछ सुनाइए बढ़िया सा। और यार माहौल वैसे इंटरेस्टिंग बना हुआ है, नो डाउट, बहुत अच्छा लग रहा है राघव जी। गाइस अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनली राघव जी से भी जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम आजकल बहुत वायरल हो रहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा एक बार आप बता दें अपना इंस्टाग्राम भी, भाई जरूरी है
1: जी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यूजर नेम है adv.raghavgupta।
0: अच्छा मतलब अपना प्रोफेशन सब कुछ उसमें ऐड कर दिया आपने, शॉर्ट शॉर्ट।
1: मल्टीपल पेजेस नहीं बनाए, मैंने एक ही पेज बनाया।
0: वेरी नाइस यार, वेरी।
1: तो adv.raghavgupta, और अगर आप सर्च करेंगे एडवोकेट राघव गुप्ता से तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊंगा।
0: दैट्स वेरी नाइस।
1: वरना आप आनंद जी को मैसेज भेजेगा, FM पर पढ़कर हमको बताएंगे जरूर।
0: अरे डेफिनेटली बताएंगे, उसके लिए आपको सुनना भी तो पड़ेगा।
1: मैं सुनता हूँ सर, मैं सुनता हूँ सर।
0: अब आप ये मत बोलिए, पड़ोसी भी सुनता है मेरा, इसलिए मैं आपको सुन।
1: ये सच बात है, मैंने आपको अभी ऑफ माइक भी बताया था। मैंने अभी आपको
0: ये एक दो बार और आपने बताया, हम कहीं शादी में, हम मजे की बात पता है क्या गाइस, इनकी बात रोक के कह रहा हूँ मैं, हम जब भी मिलते हैं किसी दावत में मिलते हैं, वैसे तो खाली में नहीं मिलते हैं। ये आई डोंट नो, ये हुआ है हमारे साथ राघव जी एक दो बार।
1: ये इत्तेफाक है कि जब भी मैं आपसे मिला हूँ तो आपने मुझे खाने का सौभाग्य प्राप्त कराया है।
0: इसका मतलब ये कि आज हम खाने का सौभाग्य बिल्कुल आपको प्राप्त कराएंगे। आप आए
2: जो पार्टी है वो आनंद जी जो है, मतलब
0: मैं भी नहीं दे रहा हूँ, वो हम शादी में मिल रहे होते हैं।
1: हमारा बॉन्ड ही ऐसा है ना,
2: दोनों का लिफाफा एक हो जाता है उस समय।
0: नहीं यार वो बात अलग है, नहीं ऐसा नहीं होता, राघव जी का अपना होता है, मेरा अपना होता है, वो बिल्कुल नहीं है। और राघव
1: खाली अपनी अपनी है लिफाफा।
2: देखिए साहब अपना, अपना, कैसे अपना। आप सभी लोग सुन रहे हैं और इस बात को कैसे छुपाया जा रहा है ये आप आज सब जान सकते हैं कि आनंद ने और गुप्ता जी ने दोनों ने कैसे इस बात को एकदम पानी डाल दिया।
0: बिल्कुल भैया, और आप जो है पानी डाल के आग मत बुझाओ, माहौल को गर्म ही रहने दो अभी। सो राघव जी, अभी आपने बताया ना मुझे एक दो शादियों में बताया था कि आपके पड़ोसी भी रेडियो सुनते हैं।
1: बिल्कुल, मैं जहाँ रहता हूँ टाउन हॉल जगह है मुरादाबाद में, तो वहाँ पर ही मेरा निवास है, उसके बराबर में एक परिवार है, तो वो मतलब मॉर्निंग में आठ साढ़े आठ के आसपास, जब मैं 9 बजे करीब निकल रहा होता हूँ घर से ऑफिस के लिए, तब मैं सुनता हूँ कि आपकी आवाज आ रही होती है। तो मैंने एक बार कहा भी है, बराबर में जो पड़ोस में बड़े भैया हैं, तो उनको बताया था मैंने कि ये हमारे मित्र हैं और काफी अच्छा बोलते हैं आरजे आनंद जी, ठीक है। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आपको परिचित हूँ।
0: ऐसा होता है भैया ऐसा, क्योंकि जो लोग सुनते हैं ना, जब आप उनको बताते हैं उनको लगता नहीं है थोड़ा,
1: पर वो डेली आपको सुनते हैं।
0: क्या
1: मॉर्निंग में वो डेली सुनते हैं, आप शाम कुछ एफएम यूज करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है ना, थोड़ा पुल होता है।
0: एब्सोल्युटली, ठीक है। और तो, बंदे को अपडेट चाहिए होती है।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: एकदम
1: बिल्कुल
0: से
1: बिल्कुल।
0: वो क्या होता है ना, न्यूज पेपर खोलने का मन नहीं करता, तो उसने अपना ट्यून कर दिया और अपने काम काज में लग गया।
1: हाँ बिल्कुल, गृह कार्य करते हुए आपको सुन लिया, ये हो रहा है।
0: बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं राघव जी, हमें स्टूडियो से बाहर भगाने की इरादा है क्या?
1: नहीं,
0: मतलब इतनी बढ़िया हिंदी आप बोलोगे तो कल ऐसा ना हो कि बॉस बोले बेटा आनंद तू बाहर, राघव जी तुम अंदर आओ, तुम्हारा जो है बाहर का है, मतलब इतना बढ़िया।
1: आप राघव गुप्ता देख के राघव चड्डा समझे क्या?
0: अरे नहीं यार, राघव चड्डा तो उनकी बात ही मत करो यार। चलो बैक टू पॉइंट यार, बातचीत के साथ साथ जो है
1: पॉलिटिकल टॉक्स,
0: समझदार है आप, समझ गए मेरी बात।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: अरे भाई वो मूवी नहीं है थिएटर में उतरा हूँ मैं मार्केट में फर्स्ट टाइम ही मेरा भजन जैमिंग का जो मैं शो ला रहा हूँ बहुत बड़ा कॉन्सर्ट आ रहा हूँ तो मेरे शोज बैक टू बैक इसके आते रहते हैं और आप जैसे मुझे बताया आपको आरजे हमारे भाई ने कि एक कल एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है तो उसके लिए वो आपको अभी बताएंगे
1: अभी तो डेमो कर रहे हैं
0: हाँ अभी डेमो कर
1: हाँ अभी तो मतलब जो कल आप वहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा सिनेरियो भी पता लगेगा क्या होने वाला है एक्चुअल एंड गिटार पे हमारे साथ भैया मौजूद है प्लीज यार अपने बारे में बता दो थोड़ा क्या नाम है आपका मुरादाबाद में कहाँ से हो आयुष भाई आप बहुत कम बोलते हो या फिर आज ही थोड़ा सा अच्छा ओके आई अंडरस्टैंड ठीक है आयुष भी मुरादाबाद से हो बहुत बढ़िया तो आयुष एंड कांता भाई स्टूडियो में है और आज ये आपके लिए कुछ स्पेशल म्यूजिकल जर्नी जो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं आई मीन जो हमारी बात होगी वो भी म्यूजिक में होगी तो शुरू करें दादा चलो ठीक है तो अभी आप क्या सुनाने वाले हो मुरादाबाद की जनता को तमाम लोग आपकी आवाज सुन
0: ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट भजन है
1: हाँ
0: ये सबने सुना होगा अच्युतम केशवम बहुत ही प्यारा भजन
1: बहुत ही प्यारा
0: मैं इसे करता हूँ शुरुआत
1: प्लीज यार श्योर सो मोस्ट वेलकम और गाइस आप फिल्म में जाइए रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए

0: लभम
1: है माहौली बना दिया। राधे राधे भाई साहब, आपको तो यार आपने तो मतलब कमाल कर दिया, इतना बढ़िया आपने गाया, मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, बस मुरादाबाद की जनता भी आपकी आवाज में डूब गई होगी। बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना अच्छा आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, कहाँ से इतना अच्छा आपको आया?
2: ये मेरा बचपन से था मेरा।
1: अच्छा,
2: ये मेरे ब्लड में है म्यूजिक, लेकिन इसको मैंने खुद से ही परखा, जाना और खुद के मैंने इसको पॉलिश किया, इम्प्रूव किया। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद का ही गुरु मतलब रहा हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है,
1: तो मतलब प्रॉपरली मुरादाबाद से है। दैट्स वेरी नाइस। तो गाइस देखो कितना बढ़िया वो लोग कर रहे हैं, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, सबसे पहले आप दोनों को जय माता दी एंड हैप्पी नवरात्रि तमाम लोग आपको सुन रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो कुछ माता रानी का हो सकता है क्या?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ तो एक दो कुछ हो जाए तो मजा आ जाए, इससे माहौल बन जाएगा। तो कांता भाई हमारे साथ स्टूडियो में है, उनका सोशल मीडिया डेफिनेटली आप जानेंगे, अगर आप उनसे और कनेक्ट होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं, और कल का क्या सीन है ये हम आपको बताएंगे डेफिनेटली, कैसा आप उस इवेंट के अंदर एंटर हो सकते हो, ये सब डेमो है। बाकी पिक्चर के लिए आपको कनेक्ट रहना है, पहले कुछ सुन लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो कांता भाई कुछ माता रानी के ऊपर हो जाए क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं आज। दोस्तों आपको भी ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से शरदीय नवरात्रों की, पूरी एफएम इंटायर फैमिली की ओर से। एंड इस वक्त हमारे साथ कांता भाई एंड आयुष भाई हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, गिटार पे आयुष जी हैं, वो भी बहुत ही अच्छी गिटार बजा रहे हैं। तो कांता भाई क्या सुना रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये अभी एक मिनट ले रहे, तब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज जरूर करें, और कल क्या स्पेशल होने वाला है उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को डेफिनेटली फॉलो करें। हमारा जो ऑफिशियल पेज है वो है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, और जो मेरा अपना इंस्टा हैंडल है वो है रेडियो वाला आनंद के नाम से, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कांता भाई आई थिंक रेडी हो आप? चलो ठीक है, तो एक देवी का कुछ सुन लेते हैं गाइस, नवरात्रि है तो ऐसे में वाइब तो होनी चाहिए ना, जोर से बोलो
2: जय माता दी,
1: सारे बोलो
2: जय माता दी,
1: जय माता दी। चलो शुरू करते हैं।
2: इमेजर

0: सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मेरे पास तो सिर्फ ये तालियां ही हैं और ये दिल आप चुरा के जाने वाले हो आज कांता भाई, मेरा ही नहीं पूरी मुरादाबाद की जनता का, इतना बढ़िया आप गा रहे हो। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपने इतना बढ़िया माहौल तो यहाँ पे बनाई दिया है, और इससे पहले आपने छोटी छोटी जैमिंग्स भी किए हैं, तो कल क्या बेसिकली आप लोग लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप वहाँ परफॉर्म करने वाले हो, तो क्या स्पेशल होने वाला है कल हमारे शो?
1: इसमें स्पेशल ये होगा कि मेरे साथ एक गोपीज बैंड है,
0: ओके,
1: जो दिल्ली बेस्ड है, वो मेरे साथ कोलैब करेगा
0: कल।
1: हाँ कल,
0: ऑल राइट, मतलब परफॉर्मेंस।
1: हाँ लाइव रहेगी,
0: ऑल राइट।
1: कुछ सॉन्ग हम साथ में करेंगे, कुछ मेरा सोलो है,
0: अरे वाह वेरी,
1: है ना, कुछ मेरा सोलो पार्ट है वो करेंगे।
0: हाँ।
1: बाकी जो इसमें सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप भजन, इसमें भजन के साथ हम एक रॉक वाला टच भी डालने वाले हैं।
0: ओके, मतलब जैसे हम जैमिंग,
1: आप लोगों ने बेसिकली सुना है जागरण चौकी,
0: जागरण
1: ये एक अलग चीज है।
0: ओके,
1: इसको हम स्टेज पे एक रॉक तरीके से परफॉर्म करेंगे।
0: अरे वाह वेरी नाइस, तो मतलब एक अलग ही माहौल बनने वाला है स्पिरिचुअलिटी का।
1: हाँ, हाँ, ताकि इससे हर एज का इंसान जुड़ चुके, जेंसी हो या
0: कनेक्ट हो सके।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: वेरी नाइस। कोई मैशअप आप सुनाना चाहें, कोई और जो आपके दिल के बहुत करीब हो भजन, जो आप चाहते हैं कि मुरादाबाद की जनता को यार मैं सुना दूं, थोड़ा सा उनकी क्यूरियोसिटी हम बढ़ा सके, सो यू नो कुछ अगर हो ऐसा आपके पास। हाँ श्री राम जानकी तो माहौल ही बन जाएगा यार, उनकी आवाज आप भी सुन पा रहे होंगे गाइस। देखिए आपको कैसी लग रही है उनकी परफॉर्मेंस, आप बता सकते हो हमें व्हाट्सएप करके।
1: इसको एक एक बढ़ा दो। तो अगेन ये बहुत प्यारा भजन आप सभी के लिए।
0: हाँ मेरी पूरी मुरादाबाद की जनता सुन रही है आपको इस वक्त लाइव, एंड हो सकता है कुछ लोग आपको जानते भी हो, है ना, तो भी हो सकता है। हाँ प्लीज कांता भाई।

0: क्या बात है, बहुत ही वंडरफुल माहौल बना दिया यार. मेरे को लग रहा है कि मैं कैसे कब जाऊंगा, ये कब होगा, मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है इनका. गाइस, ये मेरे में नहीं, आप में भी बढ़ रही होगी, है ना. सो चलो इन शॉर्ट जल्दी से बात कर लेते हैं. उनका अभी एक जैमिंग शो भी होने वाला है आज ही शाम को, तो वो बहुत जल्दी में है. वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भैया, आप आए, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने निकाला. आई नो ये बहुत हेक्टिक टाइम है इस टाइम पे, है ना, बहुत ज्यादा आपको चीजें प्रिपेयर करनी. इनफैक्ट आप दो दिन रहने वाले या वन डे रहने वाले?
1: दोनों.
0: ओके, वो पूरा अहमदाबाद वाली फील आपको गुजरात वाली मुरादाबाद में देने वाला है, करेक्ट. एंड मैं भी वहाँ मिलूंगा, कांता भाई मिलेंगे, हमारी ऑफिशियल टीम वहाँ मिलेगी, एंड आई थिंक आपके और भी लोग साथ में होंगे ना, आपका बैंड एंड सारा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो आप क्या कहना चाहोगे मुरादाबाद की जनता को, यू नो कि वो क्यों आए, आप उनको कुछ करने कहना चाहो?
1: हाँ बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको आकर एक अलग ही एहसास होगा, क्योंकि भक्ति के साथ जब जैमिंग हम लोग देते हैं तो एक तो होता है नॉर्मल आप बैठ के सिर्फ भजन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप खड़े होकर पूरी एनर्जी के साथ आप लोग जय घोष करेंगे और हरे कृष्णा या राधा नाम के साथ हम लोग गाएंगे और इसमें एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ हम लोग भजन करेंगे. तो बस मेरा ये कहना है सभी जनता से यहाँ की कि आप सभी लोग आइए और इसका एड्रेस क्योंकि वो बहुत मेन है.
0: डेफिनेटली बताने वाला हूँ, लेकिन अभी उससे पहले हम एक ना आपसे कुछ सूफी सुनेंगे. देखो भजन तो हमने सुनी ली है, सो यू नो आपकी आवाज में मैंने सुना.
1: जो मेरा मेन जॉनर है वो सूफी है,
0: मेरे को ही पता है. एंड आई थिंक जो गाना मैं अंदर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो आप शायद सुनाने वाले हैं. एंड अब आप जो मुझे बहुत पसंद है आप वही गाओगे, मेरे को पता है. और मैं बाद में बताऊंगा आप जो गाने वाले हो. वो हम सभी का फेवरेट है, जेंजी का बहुत फेवरेट है. जो प्यार व्यार करते हैं उनसे बड़ा कनेक्शन फील कराता है. अब आप समझ चुके होंगे तो अच्छी बात है. तो आप गा दो,
1: मैं बोल दूं पहले? शायद आप कभी कुछ और गा दूं.
0: आप बोलो एक बार, देखते हैं फिर.
1: तेरे दीवानी.
0: हाँ एग्जैक्टली, मैं तो आपको पहली बता रहा था ना, ये मेरी मैनिफेस्टेशन पहली होगी मेरी, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है ना आपने, मेरे को पता है. तो देखो सूफी सॉन्ग की जब भी बात आए और अगर तेरी दीवानी ना आए तो मुझे लगता है मतलब पाप चढ़ेगा अगर मैंने ये सुना. तो गाइस एक बार हो जाए फिर तेरी दीवानी कांता भाई की वॉइस में. एंड बाकी इनकी सोशल मीडिया हैंडल डेफिनेटली जानेंगे. और कल तो हम मिलने ही वाले हैं ऑफकोर्स. तो मेरे बीच में दो लड़कियां और बैठी है जो सिर्फ सुन रही है और मुस्कुरा रही है. नो ताली, नो क्लैप्स, नो हूटिंग्स, आई डोंट नो क्या हो रहा है उनको, मजा नहीं आ रहा. हाँ चलो फिर शुरू करते हैं. रेडी करें भैया, तो आप कहीं मत जाओ गाइस, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाओ प्लीज सर.
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: में आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
4: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपए होगी।
4: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे, टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
5: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर सिलेक्ट किया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
3: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
4: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
4: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है, जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5,50,000 भर्तियां रेलवे में की गई है।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
2: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है। और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनकी हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट चल रही हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
4: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
3: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
5: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
3: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
6: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन, प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते, अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
1: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर

मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी

0: समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल और प्यार भरा सलाम सभी को। पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस समय आराम से, थोड़ा सा कहते हैं ना, जब गाने सुनना होते हैं तो कहीं ना कहीं खो गए होते हैं, तो जरूर बताएं कैसे हैं आप सब। और उम्मीद पूरी करता हूं कि आपकी शाम खूबसूरत हो, चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में कोई प्यारी सी याद हो। मैं हूं आपका अपना अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें सिर्फ फोटो से नहीं दिल से निकलती हैं और सीधे आपके दिल तक पहुंचती हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम तस्वीरों में कैद नहीं कर पाते, लेकिन दिल उन्हें हमेशा संभाल के रखता है। किसी की पहली मुलाकात, किसी की मुस्कान, बारिश में साथ बिताया हुआ वक्त, या फिर किसी अपने का अचानक कह देना अपना ख्याल रखना। तो आज शुरुआत वैसी ही होनी है, तेरी मुस्कान से शुरू मेरी हर शाम हो जाए, तेरा नाम लूं लबों से तो दिल को आराम आ जाए। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, कुछ दूर होकर भी याद आए तो प्यार कहलाए। क्या बात है दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसकी याद चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो आज ही उसे कह दीजिए शो को सुन लो, मैं नाम लेने वाला हूँ। तो मगर अगर ऐसा ना हो पाए तो ये शो ही उन्हीं के नाम कर दीजिए। फोन उठाइए और 9378968968 पर कॉल करें, अपने दिलों की बात भेजिए, बताइए। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा है ये भी हमें आज बताना पड़ेगा साहब। तो चलिए इसी प्यार भरे एहसास के साथ करते हैं शुरुआत और प्यारा सा ट्रैक आप लोगों के लिए, और खूब सारी होंगी बातें सिर्फ 9837896 पर।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। दोस्तों, कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा है, बड़ी गाड़ी है, खूबसूरत घर या महंगे तोहफे? मेरे हिसाब से तो सबसे कीमती वो है वो पल जिसे दोबारा जीने का मन हमेशा करता है। हाँ, वो ही पल जब कहते ना कि काश ये जिंदगी में दोबारा आ जाता, जैसे बचपन में पापा की उंगली पकड़ के चलना, माँ के हाथ का खाना, पुराने दोस्तों के साथ बिना वजह हंसना। मतलब कुछ भी बातें चल रही हैं हमारी और हम खुद ही मन मन मुस्कुराने में लगे पड़े हैं, और किसी खास इंसान से घंटों बात करना। तो आज हमारे पास मोबाइल में हज़ारों तस्वीरें हैं, लेकिन कभी कभी उन तस्वीरों के पीछे जो छिपे हुए एहसास है ना, उनको जीना भूल जाते हैं। चलिए, कोई नहीं, अभी जिएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे कॉलर जो है लाइन पर हैं और पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और शाह गुप्ता।
0: मतलब दोनों साथ में ही हैं, उस्मान जी और शाह गुप्ता जी? क्या बात है, क्या बात है। आपके पीछे जो एफएम की आवाज आ रही है ना, वो हल्की कर लीजिए। कौन सा गाना?
1: सौदागर पिक्चर का गाना सुनना है, हीलू हीलू।
0: उससे पहले कुछ सुना भी तो दीजिए, कोई शायरी सी बढ़िया सी। पूरे हफ्ते क्या किया आपने? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
1: शुक्रिया साहब। इस बाजार में हम कहीं खो जाएंगे, एक दिन गहरी नींद में सो जाएंगे, ये बात फिर मजाक में भी कहना नहीं, तुमसे बिछड़ेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। खिड़की से बाहर ये मंजर बदल रहा है, चुप चुप चांद रातों में पिघल रहा है, तेरी सदा का जादू अभी पलक है, किस तरह तेरी यादों से फिसल रहा है।
0: क्या बात है, क्या बात है। मुझे आज पूरा विश्वास है कि आपने जो खाना है ना, वो अगल बगल वाले का भी खाना खा लिया है। पूरी आवाज श्रोताओं तक तो पहुंची रही है, मगर पूरे मोहल्ले में, मतलब आपका अगर मकान आखिरी होगा ना गली में, तो जो पहला वाला मकान होगा वो भी आज आपकी दिल की बात सुन रहा होगा। बिल्कुल गैर, ऐसी शायरी आज आपने सुना है, जोर लगा के, इतना इतना ध्यान लगा के सबने सुनी है आज।
1: तो श्रोता भी खुश रहते हैं आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे। कुछ पल थे जो गुजर गए, कुछ यादें साथ रह गईं, कुछ बातें अधूरी रहीं, कुछ आंखों में रह गईं। जिंदगी ने बहुत कुछ दिया हमें चलते चलते, पर जो अपने थे दिल के उनकी कमी रह गई। और बताइए उस्मान जी, बाकी सब सही चल रहा है? ज्यादा उफान तो नहीं आ रहा आपके आसपास?
1: आप लोग बहुत बढ़िया।
0: कल ही हमारी, अभी दो दिन पहले ही हमारे एक लिसनर से बात हुई थी। हमारे हैं एक गौरव टेलर जी जो नवीन नगर में हैं, तो हमने उनसे कहा था कि हमारे एक उस्मान जी भी हैं जिन्हें कुर्ता पजामा पहनने का बहुत शौक है, जरूर हम आपके पास एक दिन भेजेंगे। एकदम चहकते हुए आएंगे वो, एकदम खिलखिलाते हुए। तो वो भी कह रहे थे हाँ हम जानते हैं उस्मान जी को। तो हर कोई कहते हैं ना, जब उस्मान जी आ जाते हैं ऑन एयर तो खूब सारी बातें होती हैं, ठहाकों वाली, दिल वाली।
1: मेरे प्रोग्राम आप बहुत बढ़िया तारीफ के लायक, आप प्रस्तुत करते हैं, जो बातें तारीफ करने की है तो जरूर तारीफ की जाती है।
0: धन्यवाद धन्यवाद उस्मान जी। तो आपके आज जो गाना
1: हम तो जरूर कहेंगे सब एक बार।
0: तो चलिए, आज आपकी फरमाइश का गाना प्ले करते हैं। ये इलू इलू की एक लाइन भी गा दीजिए उस्मान जी आज। चलिए ठीक है, ठीक है उस्मान जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे उस्मान जी, जो कहते हैं एकदम जब शायरी सुनाते हैं ना, एकदम खो जाते हैं और ये भूल जाते हैं आसपास हमारी तरह ही कि भैया कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, मैं तो अपनी दिल की बात पहुंचा के रखूंगा। चलिए, इनकी दिल की बात पहुंच गई है, इनका पसंदीदा गाना सुनते हैं। और आपका भी कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग है ना जो आप सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर 9837896896 पर कॉल करें और

एक बार फिर से स्वागत है, 9:52 हो गए हैं आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। महंगे तोहफों से नहीं, एहसासों से रिश्ता बनता है। सच्चा साथ वही है जहां दिल बेझिझक खुलता है, जो आपकी खामोशी को भी थोड़ा समझ सके, उसके साथ जिंदगी का हर सफर अच्छा लगता है। बस आप खूब सारी शायरी हुई है, खूब सारी दिल की बातें हुई हैं। कुछ बातें आज जो है ना, सिर्फ और सिर्फ दिल से दिल की हुई है, उसमें उसे जुहा की जरूरत ही नहीं पड़ी है। आपके हमारी बीच की बातें हैं, आज हमने इतनी सुन ली हैं आपस में ही कि आप कह रहे हैं हाँ, आज कई सारी बात जो है, कुछ बातें जो अपने पास थी आज अखिल के साथ वो बाहर निकली आई हैं। तो इतनी सारी बातों के साथ अब चलिए थोड़ी सी दुनिया की खबरें भी जान लेते हैं। दोस्तों, प्यार और जिंदगी की बातें जो है ना चलेंगी और खूब सारी चलेंगी, मगर इससे पहले एक खबर और है। यूक्रेन में ऊर्जा ढांचा है उस पर हमले हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में ऊर्जा सुविधाओं पर रूसी मिसाइलें और ड्रोन हमलों की रिपोर्ट आई है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों के बाद बड़ी संख्या में लोगों की बिजली प्रभावित हुई है। सर्दियों से पहले ऊर्जा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। तो दोस्तों, बिजली और ऊर्जा सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये अस्पतालों, घरों और रोजमर्रा की जिंदगी का आधार भी है। तो उम्मीद है कि आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है सऊदी अरब और यमन में बढ़ता हुआ तनाव। 14 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में अरमाको के देहरान स्थित कार्यालय परिसर पर हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। हुती समूह ने आगे भी हमलों की धमकी दी है और इस घटनाक्रम से तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। तो इस तरह के जो तनाव का जो असर है ना, केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है। ऊर्जा की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, जो मतलब इंटरनेशनल बिजनेस आप कहें एक तरीके से, तो इन पर भी प्रभाव पड़ता है। और हालांकि वास्तविक और की जो परिस्थितियां हैं वो ये अब निर्भर करती हैं कि आगे इन लोगों के बीच में कैसे, क्या और कौन कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं। और तीसरी जो खबर है वो ये है कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े इस समय जो है ना उम्मीद से अधिक रहे हैं। एक तो रिपोर्ट के अनुसार ये है कि सालाना आधार पर कुल उपभोक्ता महंगाई दर पे 3.7% और खाद्य तथा ऊर्जा को छोड़कर मुख्य महंगाई दर 2.6% रही है। इससे अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बाजारों की उम्मीदों में बदलाव आया है। तो चलिए, ये थी कुछ दुनिया भर की खबरें। इन खबरों के साथ और जैसे जैसे वक्त करीब आ गया है, 10 बजने वाले हैं, एक प्यारा सा ट्रैक आपके लिए प्ले करता हूँ। और आपकी भी अगर कोई बात है तो हम एक लास्ट कॉल लेंगे, अदरवाइज डांडिया खेलेंगे। साहब हाँ, मुझे भी पता, आज सब डांडिया खेलने में, गरबा खेलने में बिजी हैं। गांधी पार्क में और रंगे रास चल रहा है, वहाँ पे हमारे आरजे आनंद वहाँ पे खूब सारा रंग डाल रहे हैं। तो आप अगर वहाँ पर हैं तो उनके साथ डांडिया तो खेल ही सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे प्यारा सा ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं नरेंद्र जी की फरमाइश पर।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और कहते हैं ना, देखते ही देखते हमारी इस खूबसूरत शाम को पता ही नहीं चला कब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। लेकिन शो ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि बातें ख़त्म हो गई। कुछ बातें अपने साथ घर ले जाइएगा। आज हमने प्यार की बात भी की, पुराने यादों को भी याद किया, एक अधूरे अधूरे खत की कहानी भी सुनी, दुनिया की खबरें भी जानी और संगीत के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए। जो ये आखिरी वाला गाना था ना, जो नरेंद्र जी की फरमाइश पे था, ये सच में बहुत दिल के करीब था। अब जाने से पहले जिंदगी के बारे में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हम अक्सर सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, किसी से माफी मांगने के लिए, किसी को धन्यवाद कहने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए या खुद को एक नया मौका देने के लिए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट मौका नहीं देती। कभी कभी शुरुआत छोटे कदम से ही होती है। तो आज किसी अपने से प्यार से बात कीजिए, कल के लिए कोई अच्छा लक्ष्य तय कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपनी तुलना किसी दूसरे की जिंदगी से मत कीजिए। चलने से पहले एक लास्ट शायरी आप लोगों के साथ। हर शाम के बाद एक नई सुबह आती है, हर मुश्किल के आगे नई राह नजर आती है। बस खुद पर भरोसा रखना मेरे दोस्त, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही मंजिल करीब आती है। और प्यार करने वालों के लिए दो लाइनें, रिश्तों को वक्त दीजिए, शिकायतें कम कीजिए, जो दिल के करीब हैं उन्हें महसूस कराइए कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका अपना अखिल, आपसे विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में प्यार हो, सुकून हो और लोग हों, अच्छे लोग हों और मुस्कुराने की हर वजह हो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और ज़िंदगी को सिर्फ गुजारिए मत, खूबसूरती से जीजिए।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: ठीक ऐसे ही तो मिलेंगे फिर एक नई शाम, नई कहानी और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि और ढेर सारा प्यार।

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? अब दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190 श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश की प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
4: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
3: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
1: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदिशक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
0: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
1: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदिशक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
0: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।